0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: फॉरन ना एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिरी जा रहा
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे वही खाएंगे। और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा। हाँ?

हर पराजय की विजय, मैं हर निराशा का निवारण। मेरी करुणा है शाश्वत, मेरी कृपा है सनातन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून, बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपियो जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी। जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
5: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
6: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्यप्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और परस्पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध है।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और 1 सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
7: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331048, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है, नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है, महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है, नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज स्पेशल बिकॉज इट रेस्ट्स अपॉन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस। दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

पटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। बिंदास मॉर्निंग शो में आरजरीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 8:35 हो चुके हैं और आज की तारीख भी बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। और दिन है सोमवार का और आज की तारीख 7 सितंबर, यानी कि आज एकादशी भी है। साथ ही साथ जो मंडे का फास्ट रखते हैं उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं, एकादशी की शुभकामनाएं। और मंडे का भोलेनाथ का जो फास्ट रखते हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि सुबह का जो मौसम बड़ा ही सुहाना, जैसे सुबह उठकर देखो तो लगता है कि भैया अब ठंड की ना शुरुआत हो गई है, हल्की हल्की सी धुंध, लेकिन ये नज़ारा सिर्फ और सिर्फ बरसात का है। और सुबह आपने देखा होगा कि जस्ट 8:30 एकदम बारिश शुरू हुई और फिर धूप भी निकल गई, यानी कि बादल भी और मौसम भी हमारे साथ लुक्का छुपी खेलते हैं। वो पहले डरा देते हैं कि बरसात आ गई, भैया आज कपड़े मत धोना और कोई घर से बाहर मत निकलना। इनफैक्ट जब आप घर से बाहर निकल भी रहे हो तो रेन कोट और छाता अपने साथ जरूर लेकर निकलना, क्योंकि मौसम है, कभी भी दगाबाज हो सकता है, कभी भी बारिश आ सकती है। और वैसे भी आज मंडे है और आज भी मुरादाबाद में बारिश बताई गई है, तो आप सतर्क रहिए। जब भी आप बाहर घर से निकल रहे हैं, आई नो कि ऑफिस के लिए निकल भी गए होंगे बहुत सारे और बहुत सभी तैयारियां कर रहे होंगे कि बस यार जल्दी जल्दी निकलना है, कुछ छूट ना जाए, बस लेट ना हो जाऊं, जल्दी नहा लूं, जल्दी उठ जाऊं, है ना। दिमाग में सुबह का जो टाइम होता है ना, यही खुराफात चलता रहता है। साथ ही साथ मम्मियों की भैया इतनी रेल बन जाती है ना, कभी लंच बनाती है, कभी ब्रेकफास्ट बनाती है, हर चीज पैक करके देती है बच्चों के लिए और जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना बड़ा हैटिक वाला हो जाता है, लेकिन बड़ा अच्छा भी लगता है कि जल्दी जल्दी सारे काम भी हो जाते हैं। और फिर जिनको ऑफिस जाना है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और साथ ही साथ उनको पेरेंट्स छोड़ कर भी आते हैं, तो एक सुबह का जो रूटीन होता है ना फिक्स होता है कि भाई ये काम तो करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक वैसे ही आरजरीना भी आप सभी के साथ बिंदास मॉर्निंग शो में कनेक्ट हो गई हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे कि आज आरजे आनंद आने वाले, लेकिन नहीं, आरजरीना आ गई है आप सभी के बीच। बस वॉल्यूम बढ़ाना है और कनेक्ट रहना है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आखिरकार ये बरसात पता क्यों हो रही है, मैं बताती हूँ। हम सावन के महीने में ना हर रोज भगवान भोले के ऊपर इतने जल अभिषेक करते हैं कि भगवान जी के भैया जुकाम खांसी हो जाता है, उनको तबीयत खराब हो जाती है, तो भगवान जी कहते हैं अच्छा बेटा रुको, तुमने जो सावन के महीने में ना दिया जलाभिषेक कराया मेरे ऊपर डेली सुबह शाम, ये भी नहीं सोचते थे भैया भगवान को थोड़ी ठंड लगेगी, सुबह सब हम जलाभिषेक करते रहते थे, तो भगवान कह रहे कि मुझे जुकाम क्यों है, तुम्हें भी जुकाम खांसी होना चाहिए, जरा इंतजार करो। यही रीजन है कि भैया अब बरसात शुरू हो रही है और अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है। यानी सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में भी बारिश बताई गई है। चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे और आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर, क्योंकि जो सुबह की शुरुआत होती है ना बड़ी ही सुहानी होती है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। बिंदास मॉर्निंग शो में आज जरीना के साथ कनेक्ट है आप। और समय की बात करूं तो 8:00 यानी कि 50 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख 7 सितंबर। और साथ ही साथ आज मुरादाबाद में भैया बच्चों के तो बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकती है बल्ले बल्ले। अरे बिल्कुल, अब देखिए 1 वीक से बारिश लगातार होती जा रही है, कभी बंद हो जा रही है, कभी बारिश हो रही है। मतलब बारिश रुकने का तो मतलब समझ लीजिए कि नाम ही नहीं ले रही है। कहीं कहीं पर तो कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव जगह जगह पर बहुत ज्यादा हो रही है। इसके वजह से क्या हुआ है अपने मुरादाबाद में, आप जानना चाहते हैं? अरे जल्दी मैसेज करके बताओ, लेकिन ये मुझे बताना बहुत जरूरी है क्योंकि मतलब जितना जरूरी हो सके ये अपडेट अभी आप सभी तक पहुंचनी चाहिए। ये है कि आज मुरादाबाद में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनकी आज छुट्टियां घोषित कर दी गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों की छुट्टियां आज है। यानी कि देखिए, इतना ज्यादा बारिश होने की वजह से कहीं कहीं जल इतना ज्यादा भर चुका है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। और साथ ही साथ अगर इसको कोई नहीं मानता है स्कूल वाले कि नहीं हम छुट्टियां नहीं करेंगे, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हम तो आज स्कूल खुलेंगे, क्योंकि कार्रवाई भी की जाएगी इसके लिए, अगर आज स्कूल खुला हुआ मिला तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो अगर आपने स्कूल ओपन भी कर रखा है तो उसको क्लोज कर दीजिए। और साथ ही साथ आज मुरादाबाद के जितने भी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है उनकी छुट्टियां रहने वाली हैं। तो अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अभी तक आप स्कूल नहीं गए तो आज मत जाइए क्योंकि आप सभी की छुट्टियां है। आप एंजॉय करिए, बल्ले बल्ले करिए क्योंकि देखिए जब भी पता चलती है ना भैया, ऊपर से व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आ जाता है कि आज तो स्कूल की छुट्टी है, तो बच्चे की जो खुशी का लेवल होता है ना, नेक्स्ट लेवल वाला हो जाता है। ओए, इतने खुश हो जाते भैया कि समझो पता नहीं दुनिया की पूरी खुशी उनको मिल गई हो, क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ता है उनको और सुबह उठना किसी को पसंद नहीं है। सच बताओ, बहुत रेयर है जो सुबह उठते हैं, लेकिन सच बताओ सुबह का उठना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते हैं तो आपको ताजगी महसूस होती है और सुबह का जो नज़ारा है वो अलग ही होता है। तो इसीलिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर स्कूल आज बंद है। चलिए, फिलहाल एक वॉइस मैसेज है मेरे पास, उसको भी हम सुनवाते हैं, आप सभी तक पहुंचाते हैं, पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि आप सभी तक ये आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है। और ये किनकी वॉइस हो सकती है आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो हम आपको ये वॉइस बहुत जल्द सुनाने वाले हैं और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज एकादशी भी है।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर सदैव बनी रहे, आपको जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, आप बहुत खुश रहें। आज अजय एकादशी है और आज के दिन आपको मालूम है हरि विष्णु की पूजा की जाती है और अभी कृष्ण जन्माष्टमी गई है। आज कोई भी सूखी तुलसी की लकड़ी लीजिए, उस पर रुई लगाइए, मूली बांधिए और श्री कृष्ण भगवान के सामने, शालिग्राम जी के सामने, विष्णु जी के सामने, राम जी के सामने, कृष्ण जी के सामने शाम के टाइम पर दीपक जलाइए। आपको अपार धन की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनती है और लाइफ में सुख वैभव और यश आता है। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एकादशी पे चावल नहीं खाते, लेकिन जरूरतमंद लोगों को आज आप भोजन जरूर करवा सकते हैं। आज आप तुलसी को जल ना दें, लेकिन कोशिश करें कि शाम के टाइम तुलसी पर दीपक जरूर जलाएं, तुलसी की परिक्रमा जरूर करें, अच्छे काम करें और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। संभव हो सके तो गीता के सातवें अध्याय का पाठ जरूर करें। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना। सुनते रहिए मुरादाबाद FM, आप हमेशा खुश रहिए, लक्ष्मी जी की अपार कृपा।
0: थैंक यू सो मच राखी माँ, आप सभी ने आपने मिशन हमारे मुरादाबाद के लिए एक छोटा सा एक प्यारा सा मैसेज आपने भेजा, और आई होप कि आप सभी सुन रहे होंगे। आज जया एक अजया एकादशी है, और अजया एकादशी के घर अगर आपके घर में तुलसी जी की सूखी लकड़िया है तो उसके ऊपर रुई लपेटिए, और शाम के टाइम भगवान कृष्ण के आगे नारायण के आगे ज्योत जलाइए और पूजा करिए, और सच्चे मन से पूजा कहते हैं ना अगर आप करते हैं तो भगवान हरि विष्णु तक आपकी जो आवाज़ है ना वो जरूर पहुँचती है। तो बस आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, और बढ़ते हैं एक गाने की तरफ, क्योंकि ये गाना बच्चों के लिए है, क्योंकि जब भी बच्चों को पता चलती ना भैया स्कूल की छुट्टियां हैं तो उनकी खुशी का लेवल है ना अलग ही होता है। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ बेंगलुरु से राजेश मीना जी कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी, और एक गाना बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेट रह गई गाना।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 9:00 यानी कि 6 मिनट हो चुके हैं। और आप भी कहां ध्यान है जी, मैं बताती हूँ। आप ऑन द वे है, ट्रैफिक में है, तो बस आपने क्या करना है जी, आराम से गाड़ी चलाना है, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही साथ बरसात के मौसम में स्कूटी को ना जरा संभल के आपने चलाना है, वेव में नहीं चलाना है, क्योंकि स्कूटी के जो पहिए होते हैं बहुत ही स्लिप वाले होते हैं, तो इसलिए थोड़ा बचकर आपने चलाना है। और साथ ही साथ मुरादाबाद के टेम्परेचर की बात करूँ तो 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और साथ ही साथ

0: बारिश आने की संभावना। देश विदेश हर जगह येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से हर जगह भैया हर कोई परेशान है, जिसके वजह से आज मुरादाबाद के स्कूल की छुट्टियां भी हैं, यानी कि कक्षा एक से लेकर कक्षा बारहवीं तक। और ये मौसम अभी वन वीक और भी बताया जा रहा है कि एक हफ्ते और भी खराब रहने वाली है। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं और घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं कि पहाड़ों में घूमने जाना है हमें, तो अभी रुक जाइए, कुछ दिन बाद चले जाइएगा घूमने के लिए, क्योंकि बरसात के मौसम में पहाड़ भी थोड़े लूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाद में घूमने की प्लानिंग कीजिए, अभी फिलहाल घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और साथ ही साथ अगर आसपास भी अगर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो अपने साथ छाता रेनकोट जरूर रखें, क्योंकि कुछ नहीं पता कब बारिश आ जाए, क्योंकि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये वन वीक तक बताया जा रहा है कि अभी भी वन वीक तक मौसम ऐसे ही खराब रहने वाला है। टेम्परेचर बताया जा रहा है कि भैया अगर टेम्परेचर होएगा भी तो यानी कि 2800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री के साथ साथ। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर को स्पेशल डे क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। बस आपने ट्यूनिंग करके रखना है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
1: देवाली, देवाली, देवाली, देवाली, देवाली, देवाली, देवाली, देवाली,

आसा भोसले जी की आवाज में, उदित नारायण जी की आवाज में क्या कमाल का आपने गाना सुना। दिल ले गई आए है, दिल ले गई, दिल तो पागल है मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। दिल ले गई आशा भोसले और उदित नारायण जी की आवाज में। और फिलहाल आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं बिंदास मॉर्निंग शो में। समय की बात करूं तो 9:18 हो चुके हैं और आज की तारीख 7 सितंबर। और साथ ही साथ अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री के पन्ने आखिरकार क्या कहते हैं। आज के हिस्ट्री के जो पन्ने हैं बड़े ही कमाल के हैं। अब बड़े ही कमाल के क्यों हैं आखिरकार मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हमें थोड़ा भी पैसे की जरूरत होती है ना, तो या तो UPI या फिर बैंक जाते हैं ना कि पैसे निकाल कर आएंगे तभी तो काम चलेगा, अदरवाइज थोड़ा सा कैसे काम आगे बढ़ पाएगा, दिमाग में यही ख्याल रहता है। लेकिन फिलहाल आपके साथ आपकी आरजे रीना है, तो आपने बिंदास रहना है जी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ आप सभी तक अपडेट पहुँचाने के लिए। आज की तारीख यानी कि 7 सितंबर को इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहते हैं। यानी कि आज ही के दिन 1906 में बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई के प्रमुख व्यापारियों द्वारा की गई थी। साथ ही साथ 1931 में लंदन के दूसरे गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। साथ ही साथ 1947 में आज ही के दिन देश के विभाजन के समय फैली हुई हिंसा के बीच महात्मा गांधी कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना ने गुजरात द्वारका पर आज ही के दिन हमला किया था। और साथ ही साथ 2019 में चंद्रयान 2 का लैंड विक्रम चंद्रमा की सतह से महज यानी कि 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था, तब इसरो इसका मतलब कुछ हिस्सा इसके टूट गई थी। और साथ ही साथ ये था आज के हिस्ट्री के पन्ने और आज का स्पेशल डे क्या है। और साथ ही साथ भैया 30 दिन पूरे हो चुके हैं एक ऐसी मूवी जिसका रिकॉर्ड भैया धुरंधर भी पीछे कर गई है, यानी कि धुरंधर इस मूवी के आगे कुछ भी नहीं है। जब तक ये कहा जा रहा था कि भैया धुरंधर मूवी ने भैया अब तक के इतना ज्यादा रिकॉर्ड बनाया, लेकिन जो ये मूवी अब 30 दिन पूरे कर चुकी है जिसका लागत सिर्फ 20 करोड़ यानी कि था, लेकिन अब वही बात करूं तो वो कितने करोड़ ऊपर कर चुकी है वो आपको भी पता ही होगा। और साथ ही साथ 30वें दिन भी इसका रिकॉर्ड यानी कि भारी भीड़ देखा जा रहा है थिएटर में। अगर आपको पता है कि ऐसी कौन सी मूवी है जो 30वें दिन भी पूरा करने के बाद भी अभी थिएटर में जो उसका रिकॉर्ड है, साथ ही साथ दिन प्रतिदिन जो है मूवी देखने के लिए यानी कि भीड़ कम नहीं हो रही है, साथ ही साथ टिकट्स भी पहले बुक कर दिया जा रहा है ताकि टिकट समय मिल जाए आसानी से। एक ऐसी मूवी ने भैया धमाल मचा रखा है। आखिरकार वो कौन से मूवी है अगर आपको पता है तो आप मुझे बेधड़क बिंदास होकर मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर। फिलहाल कुछ मैसेज है, हमारे पास मैसेज आता है गुलाम जिलानी पासा से। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। साथ ही साथ कुलदीप जी दिल्ली से कनेक्ट होते हैं गुड मॉर्निंग के साथ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज आपको सुबह सुबह सुनकर मजा आ गया, थैंक यू सो मच सर। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं, उसके बाद हम कनेक्ट होने वाले हैं आप सभी के साथ। फिलहाल आपने यही कहेंगे कि रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। समय की बात करूं तो 9:21 हो चुके हैं। आई नो आपका सभी का ब्रेकफास्ट हो भी गया हो और अभी नहीं भी हुआ, क्योंकि आज देखिए स्कूल की छुट्टियां भी है तो बच्चे थोड़ा लेट ही उठेंगे। अदरवाइज जिनको पता नहीं था कि भैया आज स्कूल की छुट्टी है वो जल्दी उठ के भैया स्नान करके वो रेडी है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं उसके बाद कनेक्ट।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

ज्वाली मॉर्निंग है, बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है। और समय की बात करूं तो 9:30 हो चुके हैं, यानी कि 9:30 हो चुके हैं। और आपका ध्यान कितने है जी? ओहो, मैं क्या आज प्रीटी प्रीटी मौसम है उस तरफ आपका ध्यान है ना? कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है श्रोताओं। और आज की तारीख भी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास है, क्योंकि आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर को एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास डे मनाया जाता है। आपने कभी सोचा है कि जिस हवा में हर पल सांस लेते हैं, वही हवा अगर प्रदूषित हो जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ सकता है? इसीलिए हर साल यानी कि 7 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ऑफ ब्लू स्टिक, यानी कि स्वस्थ हवा और नीले आसमान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 में इस दिन की घोषणा की थी, साथ ही साथ पहली बार 2020 में मनाया गया था ये डे। आखिरकार ये डे क्यों मनाया जाता है? हमारे दिमाग में भी एक ख्याल आता है ना, इसका उद्देश्य है कि लोगों को वायु प्रदूषण को खतरों के प्रति जागरूक करना और स्वच्छ हवा के लिए मिलकर कदम उठाने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि प्रदूषित हवा सिर्फ पर्यावरण को नहीं बल्कि हमारे फेफड़ों, दिल और पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो इस आज से अपने संकल्प लेना है, कचरा नहीं जलाएंगे, आवश्यकता अनुसार वाहन का इस्तेमाल कम करेंगे, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता है क्योंकि भैया हर किसी को अपना अलग अलग गाड़ी चाहिए, अलग अलग कार चाहिए, अलग अलग बाइक चाहिए। कार है तो बाइक भी चाहिए और बाइक है तो स्कूटी भी चाहिए, थोड़ी दूर जाने के लिए तो स्कूटी होना ही है, इसकी तो भैया कम नहीं हो सकती। पेड़ जितना हो सके लगाए, पेड़ ना काटे, क्योंकि देखिए हम अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, वही तो रीजन है जिसका हम भुगत रहे हैं। सिर्फ नेचर के साथ हमने खिलवाड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से बिन मौसम बारिश आ जाती है, बिन मौसम। पहले के टाइम में ये कहा जाता था कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी खत्म होने के बाद हल्की हल्की सर ठंड शुरू हो जाती थी और नवरात्रों तक भरी भरकम वाली ठंड पड़ने लग जाती थी, लेकिन अब ये क्या होता है भैया, दिसंबर जनवरी में जाकर ठंड महसूस होती है, उससे पहले तो ठंड का पता ही नहीं चलता है कि ठंड है या नहीं है। साथ ही साथ पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, रेलवे की लाइनें निकाल रहे हैं, ये नेचर के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि ये तो आप किताबों में ही पढ़ेंगे ना, उसमें भी लिखा है कि नेचर के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो उसका भुगतान तो आपने भुगतना ही पड़ेगा, वही रीज़न है जो हम सब आप भुगत रहे हैं। इसीलिए पेड़ जितना हो सके कम काटे और जितना हो सके पेड़ आप लगाएं, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो देखिए हवा भी आपको शुद्ध मिलेगी, आप भी स्वस्थ हवा में सांस ले पाएंगे और दूसरों को भी स्वच्छ हवा के लिए जागरूक कर पाएंगे, क्योंकि साफ हवा सिर्फ हमारी जरूरत नहीं है, हमारा अधिकार भी है। तो चलिए इसी के बाद हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने धुरंधर को भी भैया पीछे छोड़ दिया है, यानी कि धुरंधर भी अब उसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि धुरंधर से भी ज़्यादा कमाई कर ली है। फिलहाल एक गाना सुनेंगे बहुत ही शानदार वाला, उसके साथ बात करेंगे मूवी की, और मूवी के साथ साथ बात करने वाले हैं, कड़क म्यूजिक भी लेकर आप सभी के साथ आने वाले हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
5: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूं तो 9:00 यानी कि 41 मिनट हो चुके हैं और आज जरीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है श्रोताओं। और साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं उस मूवी की, जिस मूवी को देखने के लिए बड़े बुजुर्ग बच्चे हर कोई भैया मूवी देखने जा रहा है, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी को कैंसर हो, यानी कि हर कोई इस मूवी को देखने के लिए बेतावला हो रहा है। मतलब 30 दिन होने के बाद भी मूवी यानी कि भैया टिकट्स कम पड़ जा रहे हैं, इतने टिकट्स बुक किया जा रहा है। और साथ ही साथ यानी कि 5,000 से ज़्यादा ये शो यानी कि चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जबकि ये कहा जा रहा था कि अगर ये मूवी नहीं चलेगी तो 1 वीक के अंदर इस मूवी को हम हटा देंगे, लेकिन

0: लेकिन वहीं अगर मैं हनुमान अंश मूवी की बात करूं तो 16.50 करोड़ भैया ब्लॉकबस्टर पर कमा चुकी है ये मूवी, यानी कि 30 दिन होने के बाद भी थिएटर से भैया भीड़ इतना ज़्यादा है कि कुछ नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे मूवी बननी चाहिए। इस मूवी को देखिए फैमिली मेंबर आराम से देख सकते हैं, बड़े बुजुर्ग आराम से जाकर देख भी सकते हैं। बहुत कहते थे कि भैया ऐसे ऐसे मूवी नहीं चलने वाली है, लेकिन देख लो हालात, देखो भैया इस मूवी को देखने के लिए भैया टिकट एडवांस में बुक किया जा रहा है कि भाई इस मूवी को हम ना देखेंगे ज़रूर। और मेरा मानिए तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख कर आइए, कि आपको ये देखने के बाद नीम करौली जो बाबा थे उनकी कहानी रियलिटी आपको पता चलेगी कि आखिरकार ये जो मूवी है कैसी है। यानी कि 1905 में इनका जन्म हुआ और इनका जो नाम था पहले वो कुछ और नाम था, लक्ष्मी नाम था इनका। साथ ही साथ जब ये कहते हैं कि जब घर से बाहर निकल जाते हैं महात्मा साधु बन जाते हैं तो जैसे घर को त्याग देते हैं वैसे ही जो घर वाला नाम होता है उसको भी त्यागना पड़ता है और नाम दूसरा रखा जाता है, तब जाकर इनका नीम करौली बाबा नाम रखा गया था। सो इस मूवी को ज़रूर देखिए और सपोर्ट जितना हो सके भैया उतना करिए, क्योंकि ऐसी ऐसी मूवी बननी चाहिए। अगर आप देखिए अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसका पार्ट दूसरा भी बहुत ही जल्द रिलीज़ हो जाएगा तो आप इंजॉय कर पाएंगे। फिलहाल एक और गाना और इसी के साथ में लेकर आने वाली एक कड़क म्यूजिक आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

हेलो जी, गर्द वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूं तो 9:50 हो चुके हैं और इसी बीच मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए कड़क म्यूजिक, जिसको पहचानने के लिए भैया की आखिरकार जो म्यूजिक प्ले करूंगी गाने का नाम क्या है, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती आपने जलाना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? आई नो, मुझे पता है कि आप रेडी हैं। तो फिलहाल इस म्यूजिक को सुनेंगे और आपने मैसेज करके बताना है सिर्फ और सिर्फ गाने का नाम बताना है और कुछ नहीं। चलिए।

जलीली सोचे भैया कि आखिरकार जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ आखिरकार गाने का क्या नाम है। थोड़ा सा बस सोचना है आपने, आपको आइडिया अपने आप मिल जाएगा कि जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का क्या नाम है। वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ मैं।

चलिए जी, इतना ही इनफ है। आपने पहचान लिया होगा कि आखिर का जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है। आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर, और बन सकते हैं बिंदास मॉर्निंग शो के विनर।

चलिए जी, सोचिए और जल्दी जल्दी मैसेज करिए, और इसी के साथ फिर मैं लूंगी यहाँ से जाने की इजाजत। क्योंकि अगर मैं समय की बात करूँ तो 9:52 हो चुके हैं, और फिर देखिए समय हमें इजाजत नहीं देती है कि भैया तुम ज्यादा देर तक गपशप करो, इसीलिए आपने मैसेज करना है आराम से। देखिए जरूरी नहीं, अगर आप मैसेज नहीं कर सकते तो वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, इतना भी जरूरी नहीं भैया कि हाथों को कष्ट दे, बल्कि जुबान को ही कष्ट दे लीजिए आप, है ना, क्योंकि आपकी आवाज में बड़ी मधुर है, बहुत ही प्यारी है, इसलिए जुबान को कष्ट दीजिए, हाथों को थोड़ा संभाल के रखिए और मैसेज करते रहिए, क्योंकि रात भर चैटिंग करके हाथों में उंगलियों में दर्द हो जाता है ना, इसलिए।

पास राइट आंसर भी आ चुके हैं, लेकिन आपके पास एक और लास्ट मौका है, सोच सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9823789 6 की आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है। लास्ट चांस है, आपने आराम से सोचिए और मैसेज करिए।

0: चलिए जी जल्दी सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896889।
1: ना मैं मित्र पादर हूँ।

बात है जी, पंचतारा वाला गाना सुन लिया आपने, बल्ले बल्ले जी। दिलजीत सिंह की आवाज में बहुत ही शानदार वाला गाना। और समय की बात करूँ तो 10 बज चुके हैं, यानी कि और आज की तारीख है 7 सितंबर, और साथ ही साथ अजय एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे कि किन्होंने हमारे पास राइट आंसर पहुंचाया है, क्योंकि आज का म्यूजिक बहुत ही शानदार, आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले राइट आंसर हमारे पास किनका आता है। रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसी हो आप? बहुत अच्छे हैं, आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और इन्होंने राइट आंसर पहुंचाया है डोलरे डोलरे डोलरे, क्या बात है जी। तो आप बनती है बिंदास मॉर्निंग शो के विनर। और भी मैसेज देख लेते भैया, किनका क्या मैसेज आया है। और रवि सैनी जी है लाइन पार से कनेक्ट होते हैं, और इनका कहना है कि भोले का भजन। आए हाय क्या बात है, भोले का भजन तो अब नहीं बजेगा सर, आपने सुबह भजन सुनना चाहिए था। बिंदास मॉर्निंग शो में रीना जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, कभी बहन जैसी कभी पागल जैसी लगती है, तेरी हर बात दिल के करीब लगती है, दोस्ती तो बहुत लोगों से है मेरी, पर तू उनमें सबसे अलग लगती है। अरे क्या बात है जी, मेरे प्रिय आरजे रीना जी। इन्होंने ये मेरे पिया वाला तो नहीं है सर, ये गलत आंसर हो गया आपका। अगले अगर मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजेस पलवलील जी, और ये लिखते हैं गुस्से और गुरूर में कही गई बातें अक्सर कुछ रिश्तों को यादों में बदल देती है। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे।

जी सॉन्ग तो सुनवा देंगे, लेकिन जो हमने आपसे राइट म्यूजिक पूछा है उसका भी तो आंसर आपने पहुंचाना पड़ेगा ना, तभी तो आप गाना सुन पाएंगे। कितनी लंबी है कहानी मेरे यार दी, पहले आप गाना पहुंचाइए, पहले राइट आंसर पहुंचाइए, तभी हम आपके पास गाना आपका प्ले करेंगे। कनेक्ट होते हरिओम महेश्वरी लाइन पर मुरादाबाद।

0: श्री राम। रीना जी ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं धर्मेंद्र कश्यप लाइन पर के कुंदनपुर धक्का से। आप इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं कि मुझे खुशी नहीं पता कि मैं अब राम गंगा पहुंच गया हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपको इतनी खुशी हो रही है कि आप गाड़ी चलाते चलाते राम गंगा पहुंच गए हैं और आपको प्रोग्राम इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच जी। और ये आगे लिखा आपकी आपका आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया दिन बन जाता है। थैंक यू सो मच जी। और लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच जी। और ये गाना बोलते हैं भूमरो भूमरो शाम रंग भूमरो। फिलहाल तो ये भूमरो नहीं है जी, डोला डोला आपने गाना पूछा है, मैंने आपसे अभी ये प्यारे प्यारे शायरी लिखी थी ना, उनका नाम है मोहसिन अंसारी बनारस से जी। अब तो अब मैंने बता दिया गाना भी प्ले हो रहा है तभी आप राइट आंसर पहुंचा रहे हैं। डोला री डोला आप कोई फायदा नहीं है जी आपका राइट आंसर पहुंचाने का। चलिए बाय बाय टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे हम आपको आज ही मिलने वाले शाम को इवनिंग मस्ती शो में। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को क्योंकि आज अजया एकादशी है। साथ ही साथ भैया जिन्होंने सावन का यानी कि सावन के सोमवार खत्म होने के बाद जो भी 16 सोमवार के फास्ट रखने वाले हैं वो आज से रख सकते हैं, उनको भी ढेरों ढेरों ढेरों सारी शुभकामनाएं। और भैया देखिए कुछ पूछ लो तो उसके मैसेज बहुत कम आते हैं, लेकिन गाने के लिए अभी से मैसेज के जो भरमार है ना इतने जरा भवंडर फूट चुके हैं भैया, इतने मैसेज आ चुके हैं कि क्या बताएं। खुशी मैडम हमारा गाना प्ले कर देना, खुशी मैडम हमारा गाना प्ले कर देना। अरे जब गाने के साथ साथ जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी तो राइट आंसर पहुंचाया करिए, तभी तो गाने सुनाने का अलग ही मजा आता है ना, है ना। तो इसीलिए कुछ पूछा जाए उसका भी आंसर पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। चलिए बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। बाय।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: दोस्तों नमस्कार आदाब सर श्री अकाल स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए दोस्तों मंडे की सुबह है, मौसम भी बहुत ही खूबसूरत हो गया है, फाइनली धूप निकल गई है, सबको भी सब्री से इंतजार था और सभी प्रार्थना भी कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, तो फाइनली बारिश रुक गई है, धूप निकल चुकी है और मंडे की सुबह एक नई एनर्जी नई पॉजिटिविटी के साथ खुशी हाजिर हो गई है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। दोस्तों शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और करेंगे बहुत सारी बातें एंड अपने मुरादाबाद शहर में क्या चल रहा है वो अपडेट भी आपको मिलने वाली है और आज पूरे वर्ल्ड में क्या सेलिब्रेट किया जाता है एंड कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और आज अजय एकादशी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हरि विष्णु आपके जीवन में सुख समृद्धि एंड खुशियों की बौछार करें और आप सब हमेशा अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो, हम तो यही कामना करते हैं आप सभी के लिए। और सुनवाते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक आज की सुबह, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं एवरीवन। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896। आज तारीख है 7 सितंबर की और समय हुआ है 10:14 राइट नाउ। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी।
1: मैंने बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 10:26।

दोस्तों, मैंने आपसे अभी जैसे कहा था कि एवरी डे कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है, और आज क्या कुछ स्पेशल है वो खुशी आपको बताने वाली है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और श्रोताओं, आज 7 सितंबर को पावन अजय एकादशी आज मनाई जा रही है और एक ऐसा दिन जिसे सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की आराधना और आत्मशुद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जिसमें है सत्य की ताकत, वचन निभाने का साहस और भगवान की कृपा पर अटूट विश्वास। तो दोस्तों, चलिए पहुंचते हैं उस युग में जहां सत्य के लिए एक राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी की। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने सत्य और वचन के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उन्होंने जो वचन दिया गया उसे पूरा करने के लिए अपना राजपाट, धन संपत्ति सब कुछ दान कर दिया। लेकिन प्रसिद्धियां यही नहीं रुकी, वचन निभाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और स्वयं उन्हें एक चंडाल के दास के रूप में शमशान घाट पर काम करना पड़ा। सोचिए श्रोताओं, जिस राजा के महल में कभी वैभव था, आज वही राजा शमशान घाट पर मुर्दों का वसूल कर रहा था। लेकिन हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, राजा हरिश्चंद्र जी ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन अपने जीवन के इन दुखों से वे अत्यंत व्यथित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस कठिन परीक्षा का अंत कैसे होगा। तभी वहाँ महर्षि गौतम का आगमन हुआ। राजा हरिश्चंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने जीवन की पूरी वृथा सुनाई। महर्षि गौतम जी ने उन्हें सत्यापन दी और कहा, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत श्रद्धा और विधि विधान से करो, भगवान विष्णु की आराधना करो और पूर्ण विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करो। महर्षि ने बताया कि अजय एकादशी का व्रत मनुष्य के पापों का नाश करने वाला और जीवन के कष्टों को दूर करने वाला माना गया है। राजा हरिश्चंद्र जी ने ऋषि के बताए अनुसार अजय एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी श्रद्धा से उपवास किया। और फिर उनके जीवन में आया एक टर्निंग पॉइंट। व्रत के प्रभाव और भगवान की कृपा से राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन के दुख दूर होने लगे। उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस मिला और अनंत उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। तो श्रोताओं, इस कथा का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि व्रत करने से संकट दूर होते हैं, बल्कि ये कथा हमें याद दिलाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान सत्य, विश्वास और अपने वचन के रास्ते पर अडिग रहे तो अंधेरी रात के बाद भी सुबह जरूर आती है। अजय एकादशी हमें सिखाती है कि फीद रखिए, सत्य का साथ दीजिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। इसी सुंदर विश्वास के साथ आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। मैं आपके साथ आपकी आरजी खुशी। अभी मिलते हैं खूबसूरत गीत के उस पार और बताएंगे अपने मुरादाबाद शहर में क्या कुछ चल रहा है। और हाँ श्रोताओ, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों आज की सुबह बहुत खास है एंड उन बात आज की मॉर्निंग इसलिए खास है क्योंकि आज बात उन लोगों के नाम है जो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी और पीस के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज के समय में क्राइम और सिक्योरिटी की चुनौतियां सिर्फ एक शहर या देश तक सीमित नहीं है। ऐसे में अलग अलग देशों की पुलिस और

एजेंसी के बीच कोऑपरेशन कितना जरूरी है, लेकिन आज मैं इस दिन को सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद उन पुलिसकर्मियों के सम्मान से मैं जोड़ना चाहती हूँ जिन्हें हम रोज देखते हैं, कभी चौराहों पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के रूप में, कभी किसी इमरजेंसी में हमारी मदद करते हुए, कभी किसी परेशान इंसान की FIR दर्ज करते हुए, तो कभी रात के सन्नाटे में हमारी सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करते हुए। हम शायद उन्हें कुछ मिनटों के लिए देखते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी कई घरों कई कई घंटों की होती है दोस्तों। और त्योहार हो, बारिश हो, गर्मी हो, जब हम अपने घरों में सुरक्षित होते हैं तब कोई पुलिसकर्मी अपनी यूनिफॉर्म में सड़क पर खड़ा होकर हमारी सुरक्षा निश्चिंत कर रहे होते हैं। और सच कहूँ तो श्रोताओं, किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी सिर्फ इन्फॉर्मेशन यूनिफॉर्म पहनने की ड्यूटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन पर आइए हम भी एक छोटा सा थैंक यू कहें उन सभी पुलिसकर्मियों को जो हमारी सुरक्षा के लिए अपना समय, आराम और कई बार अपने परिवार से दूर रहने का सेक्रीफाइस करते हैं। सलाम है उस वर्दी को जो सिर्फ पहचान नहीं जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। और आपसे एक छोटी सी बात, अगली बार जब किसी ट्रैफिक पुलिस पर्सनल को आप बारिश या तेज धूप में ड्यूटी करते देखें तो सिर्फ उनकी तरफ देखकर निकल मत जाइएगा, दिल से एक बार ज़रूर थैंक यू, आप हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि दोस्तों, सम्मान के लिए हमेशा बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटा सा थैंक यू भी बहुत मायने रखता है। मैं आपके साथ आपकी आरजे खुशी और आज की ये छोटी सी बात उन सभी पुलिसकर्मियों के नाम जो हमारी जिंदगी को थोड़ा और सेफ बनाने के लिए हर दिन अपना फर्ज निभा रहे हैं। सलाम आपकी ड्यूटी को, सलाम आपके साहस को और सलाम उस वर्दी को। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आपके लगातार आ रहे हैं तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं और ये सबसे पहले हमें मैसेज मिला है सिरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी का नमस्कार पहुँचाते हैं आज की सुबह, आपको भी नमस्कार सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आता है निसार सलमानी जी का, नौशाद सलमानी जी का।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी।
1: सारा दिन यूं ही जब मैं तेरे कोल ना होऊं।
0: श्रोताओं, अभी वक्त हुआ है 10:51 और जरा एक पल के लिए आसमान की तरफ देखिए। वो खुला हुआ नीला आसमान, हवा का वो हल्का सा झोंका, पेड़ों की पत्तियों की वो सरसराहट कितनी खूबसूरत लगती है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस हवा में हम हर पल सांस ले रहे हैं क्या वो उतनी ही साफ है जितनी हमें दिखाई देती है। इसी सवाल को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर साल 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2019 में इस दिवस को मनाने का संकल्प लिया था और पहली बार 7 सितंबर 2020 को ये दिवस मनाया गया। लेकिन श्रोताओं, ये सिर्फ कैलेंडर में दर्ज एक डे नहीं है, ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हवा की साफ हवा सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं, हमारा हक भी है। हम अक्सर कहते हैं ना, आज मौसम कितना खूबसूरत है, लेकिन उस खूबसूरती को बनाए रखना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमारी ही जिम्मेदारी है। और कूड़ा जलाना हो, वाहन से निकलने वाला धुआं हो, बिना ज़रूरत गाड़ियों का इस्तेमाल हो या पेड़ों की लगातार कटाई, इन छोटी बड़ी चीज़ों का असर हमारी हवा पर पड़ता है। तो क्यों ना आज से हम कुछ छोटी छोटी चेंज करें। दोस्तों, जहाँ संभव हो छोटी दूरी के लिए पैदल चलें या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें, कूड़ा बिल्कुल ना जलाएं और अपने आसपास पेड़ पौधों को बचाएं और नए पौधे लगाएं। और सबसे ज़रूरी, दूसरों को भी इन बातों के लिए अवेयर करें, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, पेड़ सिर्फ पेड़ ना जो है पेड़ जो होते हैं वो सिर्फ हमें छाया नहीं देते हैं, ये हमारी सांसों की रखवाली करते हैं। और आज आपसे एक प्यारा सा वादा मुझे चाहिए, जब भी आप कोई पेड़ देखें उसे सिर्फ एक पेड़ मत समझिए, सोचिए ये पेड़ किसी की सांसों में शामिल है। एंड आइए मिलकर ऐसी हवा, खूबसूरत वातावरण बनाएं। उसके लिए आपको क्या करना होगा एवरीवन, पेड़ लगाने होंगे ना, और आने वाली पीढ़ियों को भी बेफिक्र होकर सांसों से भर सकें, क्योंकि नीला आसमान हमारी पहचान है और साफ हवा हमारी जिम्मेदारी। तो श्रोताओं, आज 7 सितंबर को सिर्फ इस दिवस को सेलिब्रेट मत कीजिएगा, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, एक पेड़ बचाइए, कूड़ा मत जलाइए, धुआं कम कीजिए और साफ हवा के इस मैसेज को आगे बढ़ाइए। मैं आपकी अपनी आरजी खुशी और मेरी आज की छोटी सी अपील, सांसें हमारी हैं तो हवा को साफ रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है ना। और दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे लगाइए और उनकी अच्छे से देखभाल कीजिए। और हाँ, छोटे बच्चों को भी इनके बारे में बताइए। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एंड यहाँ पर कुछ खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ, क्योंकि आपके मैसेजों के बिना ना ये कार्यक्रम मुझे लगता है अधूरा सा। इसीलिए जब आपके मैसेज यहाँ पर आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये कार्यक्रम और भी खूबसूरत हो जाता है। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और हाँ, मुझे मैसेज जरूर पहुंचाइएगा आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। आदाब खुशी जी, कैसी हैं आप? आपको भी आदाब सब, मैं ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे ही होंगे। और ये कहते हैं कि हम आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दुल्ला अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, बहुत अच्छे हैं। काफी समय के बाद आज आपने मैसेज किया है। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं पुलिस और मुजरिम फिल्म से एक गीत, मैं बिल्कुल सुनवाऊंगी आपको सर, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है रानी नांगल से रिहाना जी का गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइएगा कैसे हालचाल है आपके और आज का मौसम अच्छा है ना? नेक्स्ट मैसेज हमारे पास पाकिस्तान कराची से आया है राशिद नाथ जी का, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको भी। तो चलिए दोस्तों कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे, आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद,

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। वक्त हुआ है 11:07 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और दोस्तों, मुरादाबाद में पिछले 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार को थोड़ा थाम दिया है। बारिश को देखते हुए डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंशा जी ने आज सोमवार 7 सितंबर कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड की स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यानी बच्चों के लिए आज है एक रेन डे छुट्टी। और वहीं लगातार 24 घंटे से ज़्यादा बारिश के कारण बुद्ध बाजार, रामगंगा बिहार, दीनदयाल नगर समेत शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। और दोस्तों, डीएम साहब खुद ग्राउंड पर पहुंचे और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चौक नालों की सफाई करें और 24 घंटे के भीतर जल निकासी व्यवस्था

सुचारू की जाए तो मुरादाबाद वालों, बारिश का मौसम भले ही सुहाना लग रहा है लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले एंड जल भराव वाले रास्तों से बचें और वाहन चलाते समय स्पीड को रखें कंट्रोल में। एंड मुरादाबाद की हर जरूरी खबर के साथ आपका अपना एफएम मुरादाबाद 89.6 साथ में है। और दोस्तों, और भी इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी खुशी, और यहाँ पर कुछ और संदेश आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, उम्मीद है आपका और आप और एफएम की पूरी टीम बढ़िया होगी एंड आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमेशा एक अलग ही एनर्जी और अपनापन महसूस होता है। शो की प्रेजेंटेशन बहुत शानदार है और पूरी टीम की मेहनत भी साफ दिखाई देती है। कार्यक्रम से जुड़े सभी प्यारे श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं। आसिफ फ्रॉम इटली से, एंड सो इटली में रहकर भी हमारा शो सुनते हैं एवरी डे, हर एक शो में पार्टिसिपेट करते हैं।

थैंक यू सो मच, आपने इतना खूबसूरत संदेश आज की सुबह में पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर ने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, बिल्कुल ये सुनवाएंगे हम, बहुत प्यारा सा गाना है। मैंने रब से तुझे मांग लिया, ये ट्रैक सुनना चाहते हैं। अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है। नमस्कार मैम, धर्मेंद्र कश्यप जी का लाइन पार कुंदनपुर ढक्का से, और मैम आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ इस टाइम, रामनगर मैं हूँ। ओ हो, क्या बात है, रामनगर उत्तराखंड में आप हैं और वहाँ से आप हमारा शो सुन रहे हैं, थैंक यू। बारिश हो रही है। अच्छा, एक हरियाणवी गाना सुनना चाहते हैं सर, शो मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको प्ले करने की। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। हाय, गुड मॉर्निंग मैम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरा नाम है सलमान खत्री जी का मैसेज हमारे पास आया है। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं किरतपुर तहसील नजीबाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हाय स्वीट हार्ट, कैसे हो आप, आपकी दोस्त अफरोज फातिमा। एंड मैम आज की सुबह मुझे एक प्यारा सा गाना सुनना है, प्लीज सुनवा दीजिएगा। श्योर डियर। एंड साथ में इनकी दोस्त भी हैं लाइबा, और इनकी सिस्टर है नजमा, शबनम जी हैं रामपुर से, और ये चॉकलेट फ्लावर्स मैंने आपके लिए भेजे हैं, प्लीज़ संभाल के रख लीजिएगा। ठीक है, संभाल कर रख लेंगे, थैंक यू। आपने जो फ्लावर्स भेजे हैं, चॉकलेट भेजी हैं, वो सब हम संभाल के रखेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसके बाद अभी लौट कर आएंगे। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है, तो बस आप बने रहिए खुशी के साथ, और हाँ मुस्कुराना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है।

0: Hey, you're tuned to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
5: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुल लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
4: तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाउ आर यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी

और दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कुछ खूबसूरत संदेश भी आए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, इंटरनेशनल पुलिस डे के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ मुरादाबाद मैं जाऊं की ओर से समस्त पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को हार्दिक बधाइयां एवं सम्मान। दिन रात समाज की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जन सेवा के लिए अपना समर्पण एवं साहस वास्तव में सराहनीय है। आपकी सेवा हमारा सम्मान। आप सभी को इंटरनेशनल पुलिस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं रविशंकर सिंह, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ मुरादाबाद मिड टाउन से। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना ब्यूटीफुल मैसेज आज की सुबह में पहुंचाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप एंड गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आज अजय एकादशी की आपको और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कहती हैं कि मैम आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप आ रही है। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं हीरो होंडा, ओहो कहाँ जाना चाहती हैं आज आप? हाँ एंड इन्होंने एक बड़ा प्यारा सा मैसेज लिखा है, एकादशी का पावन दिन खुशियाँ आपके द्वार लाए, हरि विष्णु का आशीर्वाद हर पल आपके संग आए, चेहरे पर यूं ही बनी रहे प्यारी सी मुस्कान, खुशी मैम आपके जीवन में बरसे सुख समृद्धि और सम्मान। हरि वाह, थैंक यू मैम। ओहो हमारा शो सुनते सुनते नाश्ता भी कर रहे हैं, चलिए नाश्ते का आनंद उठाइए, लुफ्त उठाइए और सुनिए का कुछ खूबसूरत गीत। मैं लौट कर आती हूँ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं आप भी अपने संदेश हमें पहुँचाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

हाँ जी दोस्तों, इतने प्यार से बुलाएंगे तो खुशी कैसे नहीं आएगी। हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी, और अभी सुना ये आपने अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी अवारा पंचू से। और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर भेजी थी सलमान अख्तर जी ने। अपना मैसेज पहुंचाया था आज की सुबह, एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं किरतपुर बिजनौर के रहने वाले हैं, और हमें कहते हैं कि हम कार्यक्रम 3 वर्षों से सुन रहे हैं, 3 साल इनको हो गए हैं, एंड कॉलिंग शो में भी जुड़ते हैं। हाँ जी, आई रिमेम्बर, मुझे याद आया। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, माय नेम इज शंकर लाल यादव। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है प्रियांशी का, और ये मैसेज हमें पहुँचाती है विकास नगर से। हाउ आर यू खुशी मैम? आई एम गुड डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग सीमा अंसारी जी का। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में, बिल्कुल सुनवाएंगे। एंड दोस्तों, अभी मैं लौट कर आऊँगी ना, तो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ, और वो सीरियल हमारी सभी यू नो फीमेल्स जितनी भी मुझे सुन रही हैं, समय राइट नाउ सुन रहे हैं, उनको वो सीरियल सबसे ज़्यादा पसंद था, और बहुत पॉपुलर, बहुत हिट यू नो वो शो रहा है। तो मैं बस लौट कर आऊँगी तो बताऊँगी कौन सा वो सीरियल है, वो आपको गेस करना है ना। और आज क्या कुछ स्पेशल है वो भी अभी मैं आपको आकर बताने वाली हूँ। एंड तब तक ये गाना सुनो, और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है अफरोज़ फातिमा जी ने।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
6: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
5: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद, 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर FM मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉर्गेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

दोस्तों ये सुना आपने हरियाणवी ट्रैक और हमारे बहुत सारे श्रोता इस समय झूम भी रहे थे क्योंकि गाना इतना प्यारा है और इस खूबसूरत ट्रैक को गाया था राजू पंजाबी जी ने, साथ में सुशीला ठाकुर की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और इस ट्रैक की रिक्वेस्ट में भेजी थी धर्मेंद्र कश्यप जी ने। और दोस्तों अब वक्त है एक ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग सा म्यूजिक मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ और आपको पहचानना है कि कौन सी टीवी सीरियल का म्यूजिक है। आपको उस टीवी सीरियल का नाम बताना है जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था एंड अभी भी लोग देखते हैं उसको, तो आप मुझे बताइएगा जो मैं ये म्यूजिक यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, आप बताइएगा ये कौन सी टीवी सीरियल का म्यूजिक है। बहुत सिंपल सा आपको काम करना है।

हाँ जी, इस शॉर्ट मैंने यहाँ पर ट्रैक प्ले किया है, आपको बताना है कि कौन सी टीवी सीरियल का सॉन्ग है। इतना सिंपल सा आपको आज की सुबह मैंने टैक्स दिया है। फटाफट से अपना मैसेज पहुँचाएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और मैं इंतजार कर रही हूँ, देखते हैं आज हमारे शो की कौन बनते हैं लकी सुपर स्टार। एंड बेसब्री से हमें इंतजार है, जल्दी से अपने मैसेज पहुंचाइएगा। एक बार फिर से सुनवा देती हूँ चलो, और सिंपल सा कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो बताने में सही जवाब, आप पहचान पाएं। क्योंकि जो हमारी फीमेल्स हैं ना, जो इस वक्त सुन रही हैं, वो ना सीरियल की बहुत दीवानी होती हैं, है ना। और वो एक बार को ना खाना स्किप कर सकती हैं, लेकिन अपना फेवरेट सीरियल कभी स्किप नहीं करती हैं। और मैं आपको सुनवा देती हूँ, फिर आप ध्यान से सुनिएगा।

हाँ जी, यही आपको ट्रैक पहचाना है कि कौन सी टीवी सीरियल का ट्रैक है, एंड अपने नाम के साथ अपना सही जवाब पहुंचाइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक शानदार से गाना ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: बिल्कुल दोस्तों, खुशी आ चुकी है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। ये है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन और फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला। दोस्तों, मंडे की सुबह है और नई सुबह, नई शुरुआत, नई एनर्जी। और आज की हमारी भी ना थोड़ी स्टाइलिश, थोड़ी सी ना फिल्मी और पूरी तरह रशिंग है आज की मॉर्निंग। क्योंकि दोस्तों, आज मैंने आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक सॉन्ग मैंने यहाँ पर प्ले किया था और आपको बताना था। एक पॉपुलर बहुत ज़्यादा यू नो टीवी सीरियल हुआ था और ये जो ट्रैक मैंने प्ले किया था कौन से टीवी सीरियल का था आपको उसका नाम बताना था। और हमें सही जवाब पहुंचाती हैं आज की सुबह अफरोज फातिमा जी। ये सॉन्ग था साथ निभाना साथिया सीरियल का। एग्जैक्टली राइट, आपके लिए जोरदार तालियां, आज हम क्लैपिंग करते हैं अपने रियल हैंड से। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक है आपको, बधाइयां जी। आप बनती हैं हमारे शो के लकी सुपरस्टार। नेक्स्ट आंसर यहां पर हमें पहुंचाया था ललिता जी ने, बट इनका जवाब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एंड मुझे लगता है अफरोज, आप ना टीवी सीरियल देखने की बहुत ज़्यादा दीवानी है ना, तभी आपने जल्दी से गेस कर लिया। और आज मैंने ये ट्रैक क्यों प्ले किया था मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, इसका रीजन भी। क्योंकि आज बात हो रही है उस अभिनेता की जिसने छोटे पर्दे पर अपने एक किरदार से ऐसी पहचान बनाई, लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा जिगर मोदी के नाम से पहचानने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल अभिनेता विशाल सिंह की। विशाल सिंह जी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और साल 2007 में टीवी शो कुछ इस तरह से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद कसम से, किस देश में है मेरा दिल और कभी कभी प्यार, कभी कभी यार जैसे शोज में नजर आए। लेकिन साल 2010 में आया वो शो जिसने उनकी करियर को एक नई दिशा दी, साथ निभाना साथिया। इस शो में जिगर मोदी का किरदार निभाकर विशाल सिंह घर घर के घर घर में पॉपुलर हो गए और उनका अंदाज, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनका किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया। और सिर्फ टीवी तक ही नहीं, विशाल सिंह ने अपने फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शाहरुख खान जी की फिल्म ओम शांति ओम में उन्हें केमियो किया, वही ट्रैफिक भी नजर आए। और लेकिन फिर कहानी में आया एक नया ट्विस्ट, बेहतर और एक नए करियर अपॉर्चुनिटी की तलाश में विशाल सिंह ने मुंबई छोड़कर लॉस एंजल्स का रुख किया, यानी टीवी की दुनिया से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक का सफर। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ एक्टर बनने की नहीं है, कहानी है खुद को बदलने, बदलते वक्त के साथ बदलने की, रिक्स लेने की और नए मौके तलाशने की। और शायद यही बात हमें भी याद रखनी चाहिए, जहां आपकी कहानी खत्म होती दिखे, हो सकता है वहीं से आपकी अगली कहानी शुरू हो रही हो। और आज विशाल सिंह जी का बर्थडे है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, सबके चहेते जिगर मोदी जी जो राशि के साथ में नजर आए थे और बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस किरदार को निभाया। तो दोस्तों, फाइनली अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आई होप आपने आज शो एंजॉय किया होगा और आपको मजा भी आया होगा। मैं अभी चलती हूँ, लेकिन हाँ, आपसे मिलूंगी सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आप भी कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे रीना। दोस्तों सोचिए, अगर हमारी थाली में हरी सब्जियां, दालें और दूध जैसी चीजें गायब हो जाए तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और बीमारियां हमें घेर लेगी, है ना? लेकिन अगर हमारी थाली में रंग बिरंगी हो, हरी सब्जी, पीली दाल, लाल टमाटर और सफेद दूध से भरी हुई, तो सेहत भी खिल उठेगी और जिंदगी भी। तो आज सेहत से ही लाभ कई में हम बात करेंगे पोषण की, यानी स्वस्थ जीवन की असली चाबी। इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे इस कड़ी के एक बहुत नित्य साथी सेहतिया जी। सेहतिया जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से।
6: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, और मुझे उम्मीद है हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपकी यही बात अच्छी लगती है कि आप हर बार एक नई थीम लेकर आती हैं हमारे श्रोताओं को, और इस बार तो सबसे जरूरी पोषण। अगर हम पोषण अच्छा लेना शुरू कर दें तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी और हम ऐसे ही काम कर सकते हैं।
5: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने सोचा जब पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 में मनाया जा रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे अपने श्रोताओं को बताने से?
6: आरजे जी, यही तो रेडियो की खूबी है कि आप अपने श्रोताओं को हर जानकारी हमेशा जोड़ कर रखते हैं। आप अपने श्रोताओं को हर जरूरी जानकारी से हमेशा जोड़ कर रखते हैं। पोषण की बात चल रही है तो मुझे अपने गांव की घटना याद आ रही है। हमारे गांव में एक नन्ही सी बच्ची है, त्रिशा, घर की इकलौती और सबकी लाडली। प्यार इतना ज्यादा था कि घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते थे, मगर उसके माता पिता और उसके रिश्तेदार हर रोज उसे चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे के और पैकेट वाले खाना ला लाकर खिलाते थे। सोचिए, मासूम बच्ची जब खुश होकर खाती थी तो किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा, लेकिन अचानक से ही उस बच्ची के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और हालत ये हो गई कि लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार घबरा गया, डॉक्टर के पास उसको लेकर गए। कई दिनों तक इलाज चला, डॉक्टर ने साफ कह दिया, इस बार बाहर का जंक फूड बिल्कुल मत देना वरना हालत और भी बिगड़ सकती है। देखा आपने, थोड़ा सा स्वाद, थोड़ी सी लापरवाही और बच्चे की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है।
5: हाँ, हम अपने श्रोताओं को ये गलती नहीं करने देंगे।
6: जी चलिए, बिना देरी के अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की बात करते हैं, और इसकी थीम है सही आहार बेहतर जीवन, यानी ईट राइट फॉर बेटर लाइफ।
5: तो आप हमारे श्रोताओं को सही बताइए कि सही आहार का मतलब आखिर है क्या, और ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाता है?
6: सच कहूँ रीना जी, तो पोषण का विषय हर परिवार के लिए उतना ही जरूरी है जितना घर की नींव। बिना सही पोषण के कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता।
5: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि ये राष्ट्रीय सप्ताह क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई?
6: देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में हर साल 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और तब से लगातार इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है और सही और संतुलित खान पान और पोषण से ही स्वस्थ जीवन संभव है। और इस साल सन 2025 का थीम है ईट राइट फॉर बेटर लाइफ। इसका मतलब है कि अगर हम सही खान पान अपनाएंगे तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेंगे।
1: वाह बहुत बढ़िया। लेकिन सेहतिया जी जब हम पोषण की बात करते हैं तो अक्सर सुनते हैं कि भारत में बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, क्या आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
6: जी आरजी रीना जी बिल्कुल, भारत में कुपोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 35.5% बच्चे अवरुद्ध यानी कम लंबाई के हैं और 19.3% बच्चे यानी उनका वजन कम है और 32.1% बच्चे अंडरवेट हैं। यही नहीं अमीनिया यानी खून की कमी भी सबसे बड़ी समस्या है। 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों में 67%, 5 बच्चों में 59% किशोरियों और लगभग 57% महिला अमीनिया से पीड़ित हैं।
1: ओहो ये तो सचमुच चिंता की बात है। तो क्या इसका असर सिर्फ शरीर पर होता है या फिर पढ़ाई लिखाई और काम काज पर भी पड़ता है?
6: बिल्कुल आर्जेरीना बिल्कुल असर पड़ता है। कुपोषण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। वो जल्द ही बीमार पड़ते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग, आगे चलकर वो समाज और देश की प्रगति में भी पूरा योगदान नहीं दे पाते। एक कुपोषित बच्चा बड़ा होकर भी एक कमजोर रहता है और अक्सर बीमार रहता है।
1: ठीक है अब ये बताइए कि सही पोषण का मतलब क्या है, हमारी थाली में आखिर क्या क्या होना चाहिए?
6: बहुत ही अच्छा सवाल आरजी रीना जी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसके लिए गाइडलाइंस दी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी थाली संतुलित होनी चाहिए। इसमें 3 बड़े हिस्से जरूरी हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल रोटी आलू और अनाज जो हमें ऊर्जा देते हैं।
1: सेहतिया भैया प्रोटीन का भी और विटामिन का भी तो बताइए।
6: हाँ हाँ अर्जी रीना बताता हूँ। एक तो तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है तो श्रोताओं, दूसरा प्रोटीन जैसे दाल अंडा दूध मछली और मांस जो शरीर की मरम्मत और विकास में काम आते हैं, और तीसरा विटामिन और मिनरल्स जो फल और सब्जियों से मिलता है जो हमें बीमारियों से बचाते हैं।
1: ये सब तो काफी अच्छी जानकारी है पर सेहतिया जी लोग सोचते हैं तेल घी से मोटापा और हृदय की बीमारी होती है। खैर हमारा मन तो अटपटा चटपटा खाने से मानता ही नहीं है।
6: हाँ भाई ये तो सबसे बड़ी समस्या है पर कभी कभार तो चल जाता है। हमारी रोजमर्रा की थाली में थोड़ी मात्रा में तेल घी भी हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। नमक 6 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और सबसे जरूरी रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: तो क्या इसका मतलब है कि हर इंसान को दिन भर में लगभग कितनी कैलोरी लेनी चाहिए?
6: बहुत ही अच्छा सवाल आरजे रीना जी। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 2000 से 2500 कैलोरी की जरूरत होती है लेकिन उम्र लिंग और काम के अनुसार बदलता है।
1: अच्छा सेहतिया जी इतना सब कुछ बताया तो ये भी हो सकता है कोई सही मात्रा में ना ले पोषण तो सभी अंगों का कितना भाग होना चाहिए?
6: प्रोटीन लगभग 50 ग्राम रोज चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कुल ऊर्जा का 55 से 60% होना चाहिए और वसा यानी फैट 30% से ज्यादा नहीं। साथ ही 25 से 30 ग्राम फाइबर रोज लेना जरूरी है जो हमें फल सब्जियां और साबुत अनाज से मिलता है।
1: वाह अब ये सब के लिए बड़ी उपयोगी जानकारी है लेकिन क्या सिर्फ संतुलित आहार से ही सब ठीक हो सकता है? ठीक हो जाएगा, सरकार भी तो कई कार्यक्रम चला रही है।
6: बिल्कुल सरकार कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चला रही है जैसे एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB। इसका लक्ष्य है बच्चों किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया कम करना। इसके लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं और समय समय पर कीड़ों की दवा दी जाती है और जागरूकता फैलाई जाती है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस यानी NDD इसमें स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को साल में 2 बार अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है उनके पेट में कीड़े ना पनपे।
1: और वो माँ करके एक प्रोग्राम था वो?
6: अरे हाँ हाँ भाई वो भी बता रहा हूँ, माँ का स्नेह माँ कार्यक्रम। इसका मकसद है कि हर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पीना शुरू करें और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। लैक्टेशन मैनेजमेंट सेक्टर्स LMCS यह बीमारी या समय 18 से पहले जन्मे बच्चों के लिए माँ का दूध सुरक्षित रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पोषण पुनर्वास केंद्र यानी NRCS ये ऐसे बच्चों के लिए है जो गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। यह उन्हें इलाज और पोषण यहाँ उन्हें इलाज और पोषण दोनों दिए जाते हैं।
7: सेहतिया भैया, आप एक और भूल रहे हैं, विटामिन ए वाला एक प्रोग्राम था ना।
6: अरे हाँ भाई हाँ, वहाँ भी पहुँच रहा हूँ। और आखिर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन 5 साल से छोटे बच्चों को हर 6 महीने पर विटामिन ए की खुराक दी जाती है।
7: वाह सेहतिया जी, आपने तो सारी जानकारी एक साथ दे दी। लेकिन हमारे गांव में लोग अक्सर कहते हैं कि फल और सब्जियां महंगी है, तो क्या पोषण सिर्फ अमीरों के लिए है?
6: आरजे रीना जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोषण हर किसी के लिए है। हमारी लोकल और मौसमी चीजें जैसे चना, मूंगफली, दालें, गुड़, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये सब बहुत पौष्टिक होते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है। जरूरी है कि हम इन्हें रोज अपनी थाली में शामिल करें।
7: बहुत बढ़िया सेहतिया जी, हमारे गांव और मोहल्ले में लोग पोषण को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्यों ना आप आज हमारे श्रोताओं को कुछ आम मिथकों की सच्चाई बता दीजिए।
6: जी बिल्कुल आरजेरीना, ये तो जरूरी है। चलिए कुछ बड़े मिथक की परत खोलते हैं।
7: सबसे पहले तो यही सुना है, गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खाना खाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो।
6: देखिए ये पूरी तरह गलत फहमी है। गर्भवती महिलाओं को ज्यादा नहीं बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन चाहिए। अगर वह सिर्फ तली भुनी चीजें या सिर्फ चावल रोटी खाएंगी तो माँ और बच्चा दोनों कमजोर रहेंगे। थाली में हरी सब्जियाँ, दालें, दूध, फल और अनाज सब होना चाहिए।
7: ठीक है, अब दूसरा मिथक, लोग कहते हैं बच्चों को 6 महीने से ऊपर ही ऊपर का दूध या खाना देना चाहिए।
6: अरे नहीं आरजे रीना जी, WHO और भारत सरकार दोनों की गाइडलाइन साफ कहती है कि बच्चे के जन्म के पहले 6 महीने तक बच्चों को सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए। यही उसका सबसे और पर्याप्त पोषण है। ना पानी, ना शहद, ना ऊपर का दूध, सिर्फ माँ का दूध।
7: अब सुनिए तीसरा, लड़कों को दूध, घी और फल ज्यादा देना चाहिए, लड़कियों को उतना ही जरूरी नहीं।
6: यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही लैंगिक भेदभाव और बच्चों की सेहत बिगाड़ता है। सच्चाई ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर का पोषण मिलना चाहिए। किसी को कमजोर रखने का मतलब पूरे परिवार और समाज को कमजोर करना है।
7: बहुत सही, लेकिन एक और मिथक है, मीठा और जंक फूड बच्चों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस दांत खराब करता है।
6: नहीं आरजे रीना जी, ये तो सबसे खतरनाक सोच है। लगातार मीठा और जंक फूड बच्चों को मोटापा, डायबिटीज और पेट की बीमारियां देता है। सिर्फ दांत ही नहीं, पूरा शरीर बीमार हो जाता है।
7: अब अगला मिथक, पानी या दाल में डाला गया आयरन फॉलिक एसिड पाउडर दवा है और इसे साइड इफेक्ट होगा।
6: बिल्कुल गलत, यही सुरक्षित पोषण सुधार तकनीक है। खाना खाने का स्वाद नहीं बिगड़ता और शरीर को जरूरी आयरन मिलता है। इससे बच्चे और महिलाओं में अमीनिया कम होता है।
7: ठीक है, एक और सुना है, खून की कमी सिर्फ औरतों को होती है, पुरुषों को नहीं।
6: गलत फहमी, ये भी गलत फहमी है। अनीमिया पुरुषों में भी होता है, बस दर महिलाओं और बच्चों में ज्यादा। खून की कमी किसी को भी कमजोर बना सकती है।
7: और आखिरी मिथक, नाश्ता छोड़ने से वजन कम होता है।
6: ये तो सबसे बड़ा झूठ है रीना जी। नाश्ता छोड़ने से शरीर थका थका रहता है और दिन भर इंसान ज्यादा खा लेता है। यह सच्चाई है कि नाश्ता करने से वजन नियंत्रण रहता है और सेहत अच्छी रहती है।
7: वाह सेहतिया जी, आपने तो आज पोषण से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुझे लगता है हमारे श्रोता अब और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। अब अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के मौके पर?
6: आरजे रीना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सही पोषण ही असली धन है। अगर हम अपने बच्चे और परिवार को संतुलित आहार देंगे तो बीमारियां कम होंगी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। इसलिए सब लोग इस सप्ताह यह संकल्प लें कि हम अपनी थाली को रंग बिरंगी और संतुलित बनाएंगे। तो चलिए हम अपनी शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
7: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
6: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
7: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
6: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
7: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे।
6: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
7: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तो तभी भारत समृद्ध बनेगा।
6: सेहत सही तो लाभ कई।
7: वाह सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही काम की बात बताई। दोस्तों आप सभी को पता है कि 1 सितंबर से लेकर यानी कि 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है यानी कि पोषण। हमें अपने डाइट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो शामिल करने चाहिए जिससे हमें यानी कि एनर्जी मिले और हमारे बाल भी सही रहे और हमारे स्किन भी सही रहे। कहते कि हेल्दी खाना ही आपको हेल्दी रखता है। तो आज मेरे साथ कनेक्ट है डॉक्टर किरण मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए।
8: मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, महिला चिकित्सालय में और मुरादाबाद में, और हमारा SNCU का वो है मेनली। तो हम यूनिट्स को देखते हैं, 28 दिन तक के बच्चे सारे हमारे पास ही आते हैं, और साथ में लैक्टेशन यूनिट भी है हमारा। तो उसमें हमारा मदर का भी हमारा पूरा वो होता है, KMC का भी हमारा यूनिट है जिसमें कि हम बच्चों को गर्म करना और कैसे उनको गर्माई दे करके लो बर्थ वेट को हमारे को सही करना है।
7: ओके मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक आखिरकार मनाया क्यों जाता है? ये
8: हमारे पास पोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से सरकार भी ये प्रयास करती है कि इस तरह के वीक्स अगर वो बनाते हैं तो हर जना सेम टाइम पर पे उस चीज को पोटेंशिएट कर देता है, उस बात को, उस हमारा जो भी हम एक थीम को लेकर के चलेंगे। तो पोषण वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत है क्योंकि भुखमरी भी काफी है,
9: बिल्कुल,
8: और गरीब लोग भी काफी हैं, है ना। एंड दूसरा अमीर भी हैं तो दे डोंट नो द स्टाइल ऑफ ईटिंग, तो वो फिर ज्यादा वो मीडिया और उसके हिसाब से जैसे जो चीजें ज्यादा पब्लिसाइज हो रही हैं उस पे चले जाते हैं। तो मतलब ओबेसिटी भी कुपोषण है, ओवरवेट होना भी
9: बिल्कुल
8: कुपोषण है, और अंडरवेट होना भी कुपोषण
9: है।
8: तो वी कैन नॉट से कि कोई अमीर है तो वो वेल न्यूट्रिश्ड है ना, वेल नरिश्ड है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा हम देखें तो वो बच्चे ओवरवेट हैं क्योंकि उनका जो मोड ऑफ ईटिंग है एंड चॉइस ऑफ ईटिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस वजह से कुपोषण दोनों हर लेवल पे हर जगह पे हमारे को मिल रहा है।
9: तो मैम जो छोटे बच्चे हैं उनको अपने डाइट में रेगुलर डाइट में ऐसा क्या शामिल करना चाहिए जिनसे उनको एनर्जी मिले, और डाइट में अपने क्या क्या ऐसी चीजें जो शामिल करे वो?
8: देखिये जो भी हम जिस भी लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो वहाँ का लोकल फूड है वो हमारे लिए बेस्ट डाइजेस्टिबल है। जो फ्रूट है वो क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से है क्योंकि वो महंगा है इसलिए वो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। जो सीजनल फ्रूट होगा, भले ही वो अमरूद हो, वो केला हो, है ना, या जिस सीजन में जो चीज हो रही है, एप्पल है तो एप्पल का हमें लेना है। सीजनल फ्रूट अगर हम लेंगे तो उसमें हमारे को सारे विटामिन एंड जितना भी उसका मिनरल्स अगर मिलने हैं वही मिलेंगे। सेम चीज हमारे पास वेजिटेबल्स के लिए है, जितनी फ्रेश होंगी एंड कितनी टाइमली हम उसको यूज कर लेंगे। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मंडी से गई, वहां से मतलब खेत से आया तो मंडी पे आया,
9: हाँ जी,
8: ठीक है, फिर मंडी से वो मार्केट में आया, मार्केट से हमारे फ्रिज में गया, फिर हम धीरे धीरे ओवर अ वीक हमने से खाया, तो जितना वो स्टेल होता चला जाएगा, पुराना होता चला जाएगा, उतना उसके जो मिनरल्स एंड जो उसकी पौष्टिकता है वो चीज कम होती चली जाती है। इसलिए हमारे को हर चीज कोशिश करनी है कि फ्रेश खाएं, जो भी हम खाएं जैसे हमारे सिस्टम में है, रोटी सब्जी दाल चावल, फिर हम दाल लें या नॉन वेज लें, प्रोटीन्स हमें उसी से मिलता है, ठीक है, दूध दही फल एंड सैलड, ये अगर हमारे न्यूट्रिशन जैसे हमारा ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन है जो हमारी थाली बनती है, तो वो सबसे अच्छा फूड है, चीपेस्ट भी है एंड बैलेंस्ड भी है। जितना हम अलग अलग चीजों में जाते हैं, जितना ये फास्ट फूड्स आ गए, ठीक है, विच इज कॉल्ड जंक फूड, तो वो वाकई में जंक है बिकॉज उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है, और उसमें हमारा अमाउंट ऑफ फैट एंड चीज ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो पब्लिसाइज इतना हो गया है मीडिया, उसमें एडवर्टीजमेंट्स वगैरह और उसकी वजह से ना, तो बच्चे उसकी तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट हमारे को उनको इस चीज को एजुकेट करना चाहिए, सरकार ने तो अपनी तरफ से अच्छा कर रखा है क्योंकि साइंस जब से भी स्टार्ट होती है फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर हमेशा न्यूट्रिशन एंड डाइट पे ही होता है, तो दैट इज एन अवेयरनेस जो कि बच्चे को अपने स्कूल में ही मिल रही है, टीचर से ही मिल जा रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और उसमें वो समझ में आता है उनको कि क्या क्या चीजें उनको किस तरह से मिल रही है, बैलेंस डाइट क्या है, वो सारा स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। अब इस वीक में हमने उसको और पोटेंशिएट कर दिया, हमने और अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन कर दिया, तो उन्हें मीडिया में भी सुनने को मिल गया,
9: हाँ जी,
8: जो कि एक मीडिया की तरफ से कोई मैसेज आता है तो बच्चे काफी अटेंटिव
9: हैं,
8: मोर ऑन द मीडिया, और एज के हिसाब से हम लोग रिलेटिवली काफी कम उसको यूज करते हैं, तो ये एक मैसेज हमारा बड़ा अच्छा सा जाता है उससे।
9: तो मैम, जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्तनपान करवाती हैं, उनके लिए डाइट कितना जरूरी है और अपने डाइट में ऐसा क्या शामिल करें ताकि बच्चों को भी पोषण मिले और उनको भी पोषण मिले?
8: जैसे पूरी प्रेगनेंसी रही तो सब वो जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को मिला वो मदर से ही मिला।
9: हाँ जी हाँ जी।
8: अब डिलीवरी के बाद भी उसको मदर से ही मिलना है, तो इस वजह से मदर अब डबल तो खा नहीं सकती।
9: बिल्कुल।
8: इससे हमारे को कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनसे हमें सप्लीमेंट करना होता है, उसमें हमारे को ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं।
9: हाँ जी।
8: है ना, मिल्क आ जाता है, जो चीज वो इजिली ले ले, कंज्यूम कर ले, और उसको हमें ध्यान देना है कि उसकी डाइट में प्रोटीन्स भी अच्छी हो। दो बार मुंह से डाल दें, दलिया दें, ठीक है, क्योंकि दलिया में हमारा फाइबर्स भी आ जाता है, और जिसमें फाइबर आएगा साथ में विटामिन भी आ जाते हैं।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
8: ठीक है, साथ में हम फ्रूट्स दे सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हों, एंड ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, जैसे बोले। बस हमें इतना ध्यान रहना पड़ता है कि जो सिजेरियन वाले हैं, क्योंकि उनमें हीलिंग होनी है अभी जितने टाके हैं, तो उसमें जो फैटी चीजें हैं, ऑयली चीजें हैं, घी का इस्तेमाल थोड़ा संभल के कर लें, बाकी और चीजें ले सकते हैं।
9: और ऐसी क्या चीज है जो उनको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए?
8: कोई चीज ऐसी नहीं है नहीं लेनी चाहिए। ये जो हमारे सिस्टम में बना हुआ है परहेज फॉर 3 मंथ्स, और कितनी मदर आज तक भी ऐसी आती हैं जो कि सिर्फ मूंग की दाल खा रही हैं 3 महीने, विच इज इम्पॉसिबल। कोई जना 3 महीने मूंग की दाल लगातार खाए तो वो खा ही नहीं सकता, है ना।
9: बिल्कुल।
8: अल्टीमेटली दे अवॉइड ईटिंग इट। और हमारा जो बच्चादानी है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट इज बिल्कुल डिफरेंट, है ना। तो बच्चा डिलीवर हो गया, बच्चादानी अपनी जगह पे आ गई, नसें बंद हो गई 42 डेज में, है ना। तो हमारा 6 वीक्स का जो है, उस बीच अगर हमें परहेज करना है तो हम ठंडे का कर लें। आप ऐसे मान लो कि नसें खुली हैं, अगर उनको करना भी है तो ठंडी वाली चीजें, बर्फ की चीजें, कोई भी ऐसी चीज है फ्रिज व्रिज की रखी भी, उसका परहेज कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फूड में दे कैन ईट एवरीथिंग, सब कुछ डाइजेस्ट होता है। इसे कोई ऐसा परहेज नहीं है कि हमारे को सिर्फ मूंग मसूर ही खानी है 3 महीने के लिए, कुछ करनी है नहीं। उससे क्या है, मतलब मदर का तो न्यूट्रिशन हमने खराब कर ही करी थी, उसका दूध भी नहीं अच्छा उतरेगा।
9: अच्छा अच्छा।
8: जितनी अच्छी डाइट उसकी होगी उतना ही हेल्दी उसका मिल्क भी होगा।

0: बहुत हैवी वाली चीजें उनको ना दे, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स तो आई जाती हैं उनको विद टाइम।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको हमने जैसे खिचड़ी के फॉर्म में दे दिया, उसी में हमने वेजिटेबल्स भी मिला दी, ठीक है। हमने रोटी या कुछ बोती तो हमने उनको दे दिया दाल में, क्योंकि प्रोटीन्स की कमी होती है मेनली एज के साथ। रोटी तो वो खा ही लेते हैं पर प्रोटीन्स का इतना वो ध्यान नहीं रखते, सब्जी अपना मन के हिसाब से खा ली। एंड ओल्ड एज एक बड़ी ही डेलिकेट एज है एज अ चाइल्ड विद ईगो, मतलब अपना चाहते भी हैं अटेंशन, देना भी पड़ता है, नहीं दे पाए तो नाराज भी हो जाते हैं पर बच्चे को थोड़ा डर होता है।
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: और उनसे हम डरते हैं है ना, ये डिफरेंस होता है।
1: बिल्कुल जी।
0: तो इसलिए इट इज अ वेरी नाइस थिंग कि हमारे को उनको प्यार से भी रखना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है, डांट भी खानी पड़ती है पर यह है कि मतलब उस हिसाब से उनको बस उनकी उन्हें एक अफेक्शन मिल जाए, उन्हें टाइम मिल जाए हमारा।
1: तो मैम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि मोटापे और कुपोषण से बचने के लिए हमें क्या करना है?
0: देखिए, मोटापा हटाने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे को खाना बंद कर देना है, ठीक है। डाइट प्लान चल रहे हैं, बिल्कुल भूखे रहते हैं वो, या तो आप उस चीज को बिल्कुल ही किसी डाइटिशियन के अंडर ही करें, ठीक है। मेन थिंग इज जो हम खा रहे हैं, हमारी लाइफ इतनी स्टैग्नेंट हो गई है, ठीक है ना। तो हर चीज तो अब आप सोचिए, बाहर निकलो तो खेलने की जगह नहीं है।
1: हाँ बिल्कुल, है ना।
0: देयर आर नो फील्ड्स, तो बच्चे खेले तो कहाँ खेले, छत पे खेलते हैं या घर पे खेलते हैं, मोबाइल पे खेलने
1: जाते हैं, छत पे भी खेलने से मना करते हैं।
0: हाँ, वही वहाँ भी गिर जाते हैं बच्चे। भी एज ना अटेंडेंट हमेशा चाहिए उन्हें देखने के लिए। बाहर रोड में नहीं खेल सकते, ट्रैफिक इतना है, बाहर कहीं दूर जाएं तो बच्चे चोरी हो जाते हैं।
1: हाँ,
0: है ना। तो पेरेंट्स वैसे भी डर के मारे भेजना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमारा मेन थिंग ये है कि एक्टिविटी कोई हो जाए, मतलब जो हम खा रहे हैं वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट। खाना सब कुछ है, साथ में हमारे को उसको बर्न आउट कर देना है। तो बच्चे कोई साइकिलिंग कर लें, डांस कर लें एक घंटे का, है ना, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर लें जिसमें कि उनको पसीना आए, ठीक है, और वो कंटिन्यूस हो। एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, और अगर पॉसिबल है तो जिम कर लें। एनीथिंग, मतलब एक्सरसाइज करनी है, जरूरी नहीं हम जिम जाए तभी हमारी एक्सरसाइज होगी, घर पे भी कर सकते हैं, या अपना खेल लें कुछ एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी हो जिसमें कि हमारी वो एनर्जी बर्न हो, है ना, तभी वो हटेगी। नहीं खाने से हमारा बीएमआर कम हो जाता है और वो दोबारा वेट गेन करता है।
1: अच्छा अच्छा, मतलब डबल वेट गेन करता है वो।
0: मतलब बीएमआर क्या करता है, बीएमआर इज हमारे बर्निंग ऑफ द कैलोरीज वी आर ईटिंग। तो उसमें हमने क्या करा, जब हमने अपनी कैलोरीज कम कर दी, 1000 से भी कम कर दी, अब हमारी बॉडी में बीएमआर भी कम हो जाएगा अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बीएमआर कम हो गया मतलब अब हमारी रिक्वायरमेंट कम हो गई, हम जितना खा रहे हैं उतना भी बर्न आउट होकर के कंज्यूम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अबव दैट जो हमने खाया वो फिर हमारा वेट गेन नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इट इज नेसेसरी कि खाना हम पूरा खाएं जितनी हमारी डाइट बनती है, 1500-2000 कैलोरीज तक का, ठीक है, और उसके बाद उसको हम बर्न आउट भी करें। एल्डर्स हैं, वॉक कर लें,
1: बिल्कुल,
0: ठीक है, और बच्चे हैं तो डांस कर लें, साइकिलिंग कर लें, एक्टिविटी कर लें, खेलकूद करें, मतलब अच्छा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी।
1: एक छोटा सा मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे?
0: खाना तो हमें बैलेंस्ड ही खाना है, एंड जो हमारे ट्रेडिशनल फूड है दैट इज द बेस्ट, दैट इंक्लूड्स रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और सारा हमारा सैलेड, यही बैलेंस्ड है।
1: थैंक यू मैम।
2: आप सुन रहे थे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष कार्यक्रम। याद रखिए, सही पोषण बेहतर जीवन। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे और सेहतिया जी को अनुमति।
3: नमस्कार, नमस्कार।

0: सभी श्रोताओं का हमारी सेहत की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड में स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊँ पोषण शब्द सुनते तो हैं, हम समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया है मतलब पोषण पूरा हो गया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी हैं, जो हमें बताएंगे कि सेहत भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद। आज की चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि बीमारी अस्पताल में नहीं रसोई में शुरू होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है।
0: वाह क्या बात कही आपने, लेकिन सच बताऊं कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये कैसे हो सकता है?
1: यही तो पोषण की असली तस्वीर है और यह समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में भी 59% से ज्यादा एनीमिया है और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52%। इसका मतलब यह है कि हमारे भोजन में कहीं ना कहीं बहुत कमी है।
0: तो क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल पा रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे। पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास, बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है।
0: तो सबसे आसान भाषा में बताइए पोषण आखिर होता क्या है?
1: पोषण का मतलब यह है कि पोषण का सही मतलब है संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत पूरा करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
0: ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा आसान करके समझाइए।
1: देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषण तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन, खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत जरूरी होते हैं।
0: मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। स्वास्थ्य आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है, पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हो और खाने में विविधता हो।
0: गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छे पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी दे जाता है।
0: तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है?
1: कार्बोहाइड्रेट से, साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कुछ ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से तो आता है।
0: और प्रोटीन?
1: प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है, दाल, चना, दूध, अंडा, ये सब अच्छे स्रोत है। शाकाहारी भोजन से भी पूरी प्रोटीन मिल सकता है।
0: बसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं।
1: जरूरी नहीं है, शरीर को कुछ वसा चाहिए लेकिन सही वसा सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला भोजन और ट्रांस फैट नुकसान कर सकते हैं।
0: आजकल गांव में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है, क्या इसका संबंध भोजन से है?
1: बिल्कुल इसका बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि ज्यादा नमक, चीनी, प्रोसेस फूड, प्रोसेस भोजन कहा जाता है, ये इनकी बड़ी वजह है। नमक दिन में 5 ग्राम से कम होना चाहिए। ज्यादा नमक दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है।
0: फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है?
1: वैसे तो आमतौर पर हर व्यक्ति को रोज लगभग कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं।
0: बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है?
1: जीवन के पहले 1000 दिन गर्भ अवस्था से लेकर बच्चों के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही समय दिमाग और शरीर का विकास करने के लिए सबसे फायदेमंद और सबसे तेज बनाता है दिमाग।
0: तो शिशु को क्या खिलाना चाहिए?
1: पहले कुछ महीने केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन जैसे कि खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल। नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए इसमें।
0: गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है।
1: असल में अधिकतर मामलों में ऊर्जा की कमी होती है, यानी बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खा रहा होता है। दाल रोटी भी सही मात्रा में अगर बच्चे को मिले तो वह स्वस्थ रह सकता है।
0: और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खिलाना चाहिए, ये बात सही है?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित है और विटामिन से भरपूर है। ऐसी मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर देते।
0: सरकार इस दिशा में क्या कर रही है?
1: जैसे कि आपने सुना होगा, 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों में हिंगनापन, कुपोषण, अनीमिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम, ये सब चलते रहते हैं।
0: सुना है तकनीकी भी इस्तेमाल हो रही है?
1: जी बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज की होती है, इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंच पाती है।
0: महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए?
1: अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा होना चाहिए। तेल सीमित मात्रा में लें, तला हुआ ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स कम करें।
0: आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं।
1: जी हाँ, यही तो भविष्य की बीमारी का कारण बनेंगे। बच्चे की आदतें पूरी जिंदगी चलती हैं, इसलिए घर का खाना सबसे बड़ा निवेश है।
0: सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम कर सकता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है।
0: सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सके?
1: हाँ आरजे खुशी जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आरती की ही नहीं बल्कि हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है।
0: जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल। आरती एक छोटे से गांव में रहती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में तो मानो कितनी तेज थी, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए, बस यही काफी है।
0: यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था।
1: बिल्कुल, आरती सुबह चाय और बची हुई रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी तो कभी सिर्फ चावल। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि वह ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं।
0: और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ?
1: इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आरती जल्दी थकने लगी, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे, लेकिन घर वाले कहते कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है।
0: ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है।
1: हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती को शादी हो गई, शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसके शरीर में पहले से ही खून की कमी थी जिससे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं।
0: क्या उसने जांच नहीं करवाई?
1: पहले तो नहीं करवाई, उसे लगता था कि सब ठीक है, लेकिन गर्भ व्यवस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन खेत में काम करते करते वे बेहोश तक हो गई थी। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, वहाँ जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर अनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो माँ और बच्चे को खतरा हो सकता है।
0: यह सुनकर तो परिवार घबरा गया होगा ना?
1: हाँ, पहली बार में उन्हें समझ ही नहीं आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषण आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच भी बताई।
0: क्या आरती ने सलाह मानी?
1: शुरू में मुश्किल हुई, उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने समझाया कि यह सामान्य है और दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया।
0: मतलब पूरा परिवार सीखने लगा।
1: जी हाँ, घर में पहली बार रोज हरी सब्जी बनने लगी, गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ, आरती को आराम करने दिया जाने लगा।
0: फिर प्रसव के समय क्या हुआ?
1: नियमित देखभाल और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर भी हो सकते थे।
0: यानी सही समय पर पोषण ने दो जिंदगियां बचा दी।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, आरती खुद अब गांव में महिलाओं को समझाती है तो कहती है, मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और ये गलती ना करे।
0: वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है।
1: हाँ, आज आरती अपने बच्चों को समय पे स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है।
0: तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है?
1: सीख तो बहुत साफ है, कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी होती है। सही भोजन, समय पर जांच, सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है।
0: दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये छोटी छोटी रोज आदतों से बनता है।
1: और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है।
0: धन्यवाद सिहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दी गई।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी।
0: तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
1: विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराएं, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम कीजिए और रोज सक्रिय रहिए।
0: दोस्तों, हम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे, साफ सफाई अपनाएंगे, नियमित जांच करवाएंगे और संतुलित आहार अपनाएंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तभी देश मजबूत होगा।
0: इसी संदेश के साथ आपकी आरजे आपसे अलविदा लेती है, पर जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वस्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सके,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही
0: लाभ कई, धन्यवाद, सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
5: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुल लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
4: तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद, हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद शहर का। और दोस्तों आज सोच बदलो का टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इस सोच बदलो के टॉपिक में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हमारे साथी हैं जो हमारा साथ देंगे इस कार्यक्रम में। दोस्तों आज का टॉपिक है शायद हर घर की सच्चाई जो बन चुका है, वो एक ऐसा टॉपिक जिसपे आज के समय में बात करना बहुत जरूरी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट घर में सब लोग एक साथ होते हैं लेकिन फिर भी हम किसी की बात नहीं सुनते, किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में होता है मोबाइल। यस, आज पूरा का पूरा मुद्दा होने वाला है मोबाइल फोन और ये बहुत जरूरी डिस्कशन बन चुका है। तो मैंने सोचा सोच बदलो प्रोग्राम में इस पर बात करने के लिए मैं अकेला क्यों। तो आज हमारे साथ हैं आरजे रीना, आरजे कुमकुम और एक हमारी खास मेहमान शैली जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हाल चाल है आप लोगों के?
1: थैंक यू आनंद। सच कहूँ तो आजकल कई घरों में लोग एक दूसरे के पास बैठते जरूर है लेकिन कनेक्ट मोबाइल से रहते हैं, परिवार से नहीं।
2: बिल्कुल सही कहा। पहले लोग खाना खाते समय एक दूसरे से बात करते थे लेकिन आजकल तो सब मोबाइल में ही देखते हुए बैठे रहते।
3: रीना जी और कुमकुम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि बच्चों से लेकर बड़े तक सब धीरे धीरे मोबाइल के इतने आदि हो गए कि घर की हंसी और बातचीत कम हो जा रही है।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइज। बिल्कुल, तो दोस्तों आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, दिल थाम के बैठिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सोच बदलो। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं वेलकम बैक एक बार फिर से। दोस्तों जरा सोचिए, एक परिवार हॉल में बैठा है, पापा मोबाइल में रील्स देख रहे हैं और मम्मी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। क्या यही परिवार है?
1: पहले लोग दिन भर बातें शेयर करते थे, आज क्या हुआ, कैसा दिन रहा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, ठीक है, क्योंकि ध्यान मोबाइल में होता है।
0: बिल्कुल सही कहा।
2: बिल्कुल सही रीना जी। और यही धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है और घर के लोग साथ रहकर भी अकेले महसूस करने लगते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा आपने कुमकुम जी। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल रिश्तों को कमजोर कर देता है, बस ये है।
0: सही कहा शैली जी आपने, टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन फैमिली टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सच बताऊं श्रोताओं, ऐसा मेरे साथ या शैली जी के रीना कुमकुम के साथ नहीं है, हर घर की कहानी हो गया है शैली जी। और मुझे लगता है कि सच बताऊं तो मोबाइल के हम इतने आदी हो गए हैं कि आजकल हम वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। शैली जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगी?
3: और कई बार पेरेंट्स खुद मोबाइल में इतने डूबे और बिजी होते हैं कि बच्चों को कैसे वो सिखाएंगे कि उन्हें क्या करना है, जब वो खुद ही इतना बिजी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और रीना तुम्हें क्या लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम सच में अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी, जैसे खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, फैमिली टाइम फिक्स करना, बच्चों से खुलकर बातें करना, सुबह और रात कुछ समय बिना फोन के बिताना।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी एक्सपेंसिव मोबाइल फोन की नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के समय और प्यार की होती है।
3: बिल्कुल सही कहा। और जब परिवार में बातचीत बढ़ती है तभी प्यार बढ़ता है, समझ बढ़ती है और सच में सोच बदलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है मोबाइल की दुनिया में रिश्ते में जैसे मानो कहीं खो से जा रहे हैं, पास बैठकर भी लोग दूर हो गए हैं। मतलब एक टाइम था जब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद करते थे, एक समय था जब लोगों को एक दूसरे की चिट्ठियों का इंतजार होता था, वहीं आज एक सेकंड के अंदर व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज करते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ऐसा लगता है जैसे हमारे पास सब कुछ आ गया है। लेकिन उसका जो मजा था ना वो एक अलग ही था। अगर मैं शैली जी सबसे हटके बात करूं आप लोगों से गाइज, तो अभी जो ये व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया और उससे पहले जो चिट्ठियों का ट्रेंड था उसमें क्या था शैली जी, कितना मजा आता था उसमें?
3: उसमें बहुत मजा आता था, उसमें हम वेट करते थे।
0: करेक्ट। और हम भेजने के लिए भी हमें बहुत प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ती थी।
3: अब तो क्या है कि मतलब एक बेचैनी रहती थी, वो हमने आज मम्मी को लेटर भेजा है या पापा हमारे बाहर है उन्हें लेटर भेजा है तो रिप्लाई क्या आएगा, कब रिप्लाई आएगा। और जो वो रिप्लाई पर तो उन्हें सजो के रखते थे। आज भी लोग पोस्ट कार्ड को सजो के रखे हुए हैं, लेटर बॉक्स जो आज भी हम देखते तो हमें खुशी से महसूस होती है।
0: तो मुझे लगता है कि देखिए सोच बदलने की जरूरत तो यहाँ पर है कि लेटर का ट्रेंड भले ही खत्म हो गया है, व्हाट्सएप का ट्रेंड आ गया है। आई नो व्हाट्सएप अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी हमारे और आपके फायदे के लिए बनी है, अच्छी बात है, हम लोग कनेक्टेड हैं। बट कहीं ना कहीं सोच ये बदलना है कि हम जब परिवार के साथ होते हैं, स्पेसिफिक टाइम बिता रहे होते हैं, परिवार को जो टाइम दे रहे होते हैं, उसमें एक दूसरे से बात करना कितना जरूरी है। शैली जी आपको क्या लगता है?
3: परिवार में एक दूसरे से बात करना, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन परेशान है।
0: करेक्ट।
3: किसके मन में क्या बात, आजकल लोग आप सोचो कि मतलब काउंसलिंग करा रहे हैं लोग। इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि आपके पास घर में भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपनी बात कह पाए। पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है,
0: क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी
3: है। तो बिजी होने के बाद भी हमारे पेरेंट्स भी बिजी होते थे, मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर, लेकिन फिर भी हम लोग शाम का खाना बैठ के खा रहे हैं। तो कोई बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उसे पूछा भी क्या प्रॉब्लम है, बेटा आज क्या हुआ ऐसा जो आप खाना नहीं खा रहे हो, या आज आप उदास क्यों है।
0: सही कहा आपने।
4: वो कहते हैं ना दोस्तों कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं दिल से होता है। जब लास्ट में शाम के टाइम हम पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाते थे तो चार बातें हुआ करती थी, लोगों को समझा जाता था, एक दूसरे को समझा जाता था, अपने ड्रीम्स के बारे में बात की जाती थी। अब लोग अपने मोबाइल फोन में ही इतना घुस गए हैं कि सारी चीजें उसी में देखते हैं।
3: और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग में होता था ना कि इंतजार, पहले इंतजार करते थे हम रिप्लाई का, आज वो इंतजार खत्म हो गया है तो पेशेंस लेवल भी कम हो गया है
1: जी। और आज बात ना ईगो पे आ जाती है कि अगर आपको मैसेज कर रहा है तो आप क्या मतलब करते हैं इंसान कि यार अभी नहीं रिप्लाई देंगे, हम थोड़ी देर बाद रिप्लाई देंगे इसको।
3: बिल्कुल, पहले कम बातें होती थी, रिश्ते ज्यादा लंबे टिकते थे।
1: बिल्कुल,
3: अब बातें ज्यादा होती हैं,
1: रिश्ते कम टिकते हैं।
0: क्या बात है। चलिए दोस्तों ये बातें चलती रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे।
5: हेलो 9821026212 BPL, अरे 9820026235 मैक्स टच।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का एफएम मुरादाबाद पे प्रोग्राम है सोच बदलो। और सोच बदलो का हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल फोन जो है रिश्तों को कहीं ना कहीं कमजोर करता जा रहा है, खत्म करता जा रहा है। मम्मी घर में होती है, पापा घर में होते हैं, हम सब घर में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाश्ते के लिए एक टाइम था जब मम्मियां 100 गालियां देकर उठाती थी शैली जी। और आज का टाइम है कि मम्मी सिर्फ एक छोटा सा मैसेज कर देती है, नाश्ता रेडी है टेबल पे, ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना।
1: हाँ,
0: तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं हमें हमारे घर के पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है।
1: हाँ बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता रेडी है, पहले सब लोग जब टेबल पे आ जाते थे तभी नाश्ता लगता था।
0: Correct.
1: अब सबके कमरों में ही पहुंचा देगा
0: था।
1: और बेटा हम तुम्हारा रूम में, मतलब आप रेस्ट करो, मैं वहीं पहुंचा रही हूँ। क्यों वहीं भाई, सब साथ में बैठ के नाश्ता।
2: और पहले टाइम का भी फिक्स होता था।
1: हाँ
2: अब भूख नहीं है, अभी नहीं खा रही, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अब तो ये हो गया है।
1: अब नाश्ता हो रहा है 11 बजे 2 बजे, आप खाना कैसे खा लोगे।
2: इनफैक्ट हम उठ ही लेट रहे हैं,
0: मतलब दिनचर्या भी कहने के मोबाइल की वजह से, क्योंकि लोग
1: तो
0: लेट नाइट आ
1: रही होंगे। पहले की लेडीज घर में खाना बनाने के बाद कढ़ाई सिलाई बुनाई सारे काम कर लेती थी। अब लेडीज को खाना बनाने के बाद टाइम ही नहीं है,
2: टाइम ही नहीं है बिल्कुल,
1: क्योंकि वो सुबह का नाश्ता लेट, फिर दोपहर का खाना लेट, और चीजें लेट। पहले लोग ऑफिस चले गए, हम लोग की मम्मियों को हमने स्वेटर बुनते देखा है, मैंने तो आज तक एक स्वेटर नहीं बुन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं है।
2: टाइम तो तब हो ना कि हम समय पर सोए, समय पर उठे, अब उठते ही इतने लेट हैं। पहले टाइम के पंचुअल हुआ करते थे, अब हम टाइम को समझते नहीं है।
0: टाइम को इसलिए नहीं समझते,
1: पंचुअल भी अगर ना बोलो तो हम टाइम की वैल्यू
0: समझते थे। एग्जैक्टली,
3: टाइम की वैल्यू उतनी नहीं की जाती जैसे पहले की जाती थी,
1: और जो टाइम की वैल्यू आज भी करते ना वो सक्सेस है।
0: ये तो बात बिल्कुल सही कही है, तो मतलब सोच बदलने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं, जरूरत है सही चीज को मेंटेन करने की, है ना। अगर आप सही तरीके से चीजों को मैनेज करोगे तो मुझे लगता है बेहतर चीजें हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, हर चीज फोन में ही मत ढूंढो।
1: बिल्कुल,
0: अगर आप घर पे हो, परिवार के साथ हो, रिलेटिव के यहाँ जा रहे हो, तो उनसे बात करो।
1: आप सोचो आजकल चैट जीपीटी जो आया है वो इतना पॉपुलर क्यों है,
0: लोग उससे बात कर रहे हैं,
1: क्योंकि लोगों के पास व्यूज ही नहीं रह गए हैं। आप लोगों को पहले, अगर कोई अगर नॉन प्रोफेशन बंदा है जिन्होंने कभी माइक हाथ में नहीं थामाया, अगर आप किसी को दे दोगे ना, वो बोल नहीं पाएगा, उसके पास शब्द ही नहीं होंगे, डिक्शनरी कम हो गई है, क्योंकि आपने इतनी बातचीत कम हो, आप एवरीथिंग के लिए आप डिपेंड हो गए हो सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, इस पे और उस पे, तो फिर क्या ही होगा, आपके अपने पर्सनल व्यूज ही नहीं रह गए, आप अपने माइंड का यूज ही नहीं कर रहे हो, जहाँ यूज कर रहे हो आप कहाँ कर रहे हो ये तो पता ही है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, तो मुझे लगता है कि देखिए दिक्कतें टेक्नोलॉजी से नहीं है, दिक्कतें मोबाइल चलाने से नहीं है, दिक्कतें सिर्फ बात करने से है, क्योंकि हमें लगता है कि हर चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होनी चाहिए, इजीली होनी चाहिए, हम इस इजी के चक्कर में मोबाइलों में इतना घुस गए हैं। आजकल आप देखो ना, घर बैठे बैठे हम चाहते हैं हर चीज आ जाए। आजकल दूध लेने का एक बहाना होता था कि हम सुबह दूध लेने जाएंगे, आजकल ये दूध लेने भी नहीं जाते, क्यों, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है।
1: पहले चलो ठीक है, कुछ चीजों के लिए तो निकलना ही पड़ता था, अब तो बिल्कुल नहीं निकलना है, कि हमने अपने आप को इतना डिपेंड कर लिया है। हम लोग पैदल स्कूल जाते थे,
0: सोचो
1: आजकल बच्चे को हम बैग लेकर के बस तक भी पहुंचाने जाएंगे,
2: छोड़ने जाते हैं,
1: और उनका बैग उठा के बस से भी घर पे लाएंगे।
0: सही कहा आपने, तो दोस्तों मतलब कुल मिला के ये है कि बात आलस की तो नहीं कर रहे हैं, आज हम बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो परिवार, हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ा कारण है, उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन इसलिए क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मोबाइल पे ही दिखाते हैं, हम परिवार के साथ होते हुए भी ऐसा महसूस करते हैं कि हम फैमिली के साथ नहीं है। अगर सोचो हम चार लोग यहाँ पे अगर अपने अपने मोबाइल में लग जाए तो कौन एक दूसरे से बात करेगा,
2: कोई भी
0: सोचने की बात है, और ना हम एक दूसरे को जान पाएंगे ना समझ पाएंगे।
1: आजकल जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हो गए उनका मजा किरकिरा क्यों हो गया है, क्योंकि वहां जाके लोग वहां की खूबसूरती नहीं देखते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस पे जाइए, वहां की

0: कहानी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये क्यों? वो ये कोशिश कर रहे हैं कि या कौन सा व्यू हम देख लें, यहाँ पे हमारा फोटो सबसे बेस्ट,
1: फोटो वीडियो
2: कैप्चर करो उसको ही।
0: खाने के टेबल पे खाना रखा है लेकिन आपको उसको टेस्ट नहीं पता है कि आपने आज ठीक था। बाद में अगर एक डिश, चार डिश में से एक डिश आपने ऐसी टेस्ट के लिए, वो खाना अच्छा नहीं था, बाकी की चार आपने स्वाद ले ही नहीं पाए।
1: क्यों? हमारा ध्यान तो फोन में होता है, पहले हम फोटो खींचते हैं, स्नैप भेजते हैं और फिर वही टाइम हो जाता है, चलो चलो ठीक है।
0: टाइम में एक ऐसे आता था हिंदी में, ज्ञान के अभिशाप और चमत्कार
3: जी,
0: तो मतलब वो हर मतलब जब भी देखो वो एक सबसे रखा ही होता था क्वेश्चन पेपर में वो, तो उस टाइम पे मुझे वो इतना नहीं समझ आता था, मगर आज मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है, मोबाइल अच्छी चीज है, हम लोग को बहुत अच्छी चीजें मिली हुई है कि हम लोग को बहुत कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं ये मैटर करता है।
1: बिल्कुल,
0: किस चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज पे दे रहे हैं या निगेटिव चीज पे दे रहे हैं, पॉजिटिव भी है इसमें निगेटिव भी है।
2: सही कहा आपने। तो दोस्तों आप सुनते रहिए ऐसे ही सोच बदलो प्रोग्राम, और अभी हम लौट कर आते हैं एक छोटे से गाने के बाद।

0: इस गाने के बाद वेलकम बैक है शैली। जाते जाते रीना कुमकुम, आप लोग क्या कहना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी से, जो लोग घर में बैठ के बातें कम मोबाइल ज्यादा चलाते हैं उन लोगों?
1: मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए हर घर में जितने भी मेंबर्स है ना, हर घर में सभी के पास फोन है। तो पहली बात पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास फोन है तो जो बच्चे हैं जो 12th तक अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोन ना दे। अगर आप उनको फोन नहीं देंगे तो वो देखिए और भी आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। हमें तो ये पता है ना कि हमने बच्चों को फोन दे दिया, वो पढ़ ही रहा होगा, लेकिन आप देखने नहीं जा रहे कि उस कमरे में वो पढ़ रहा है या वीडियो देख रहा है, क्या कर रहा है। तो अगर आप फोन दे भी रहे तो उस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चा कब क्या किस टाइम क्या कर रहा है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, फोन नहीं देना चाहिए। लेकिन कई टाइम ना हमें टीचर्स ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं कि बच्चों को काम होता है फोन से, इसलिए पेरेंट्स उनकी सुविधा के लिए देते हैं, पर वो ना फोन
1: यूटिलाइज हमें अच्छे तरीके से करना
2: सुविधा
1: चाहिए।
2: के लिए दिए जाते हैं क्योंकि उन सुविधाओं से हम आगे बढ़ सके, अपने अपने करियर के लिए सोच सके, अपने फ्यूचर के बारे में आगे देख सकें कि हमारा पढ़ाई में और चीजों में क्या क्या कर सकते हैं। पर वो डिपेंड इतने हो जाते हैं उस फोन पे, उसके आदि बन जाते हैं एक तरह से।
3: मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि जब भी वो बच्चों के सामने मोबाइल देखें या खुद भी देखें तो मोटिवेशनल चीजें ज्यादा देखें, जिससे उन्हें कुछ लगे कि हाँ मम्मा या पापा हमें ये चीजें देख दी है, तो उनके दिमाग पे भी वही छाप पड़ जाती है।
4: बिल्कुल,
3: तो वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे लगे कि हाँ ये चीज ठीक है।
4: और बच्चों को भी टाइम दीजिए, आप खुद नहीं फोन में रहेंगे बच्चे। अब आजकल मैम ये होता है कि बच्चे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन आप काम में बिजी होते हैं या फिर फोन चला रहे हो या फिर मासी का फोन आ गया, तो भैया तो समझो बेटा।
3: तो सबसे ज्यादा यंगस्टर को काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है इस समय, सबसे ज्यादा स्ट्रेस। लोग काउंसलिंग ले रहे हैं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, कि मुझे उनके पास बात करने के लिए लोग नहीं है। साइड चल गई है, आइए बात करिए।
1: बिल्कुल, अब इंसान वहाँ टाइम दे रहा है लेकिन अपने फैमिली को कम।
2: मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, ड्रामास देखते हैं या कोई भी ड्रामा आप देखते हो कंट्री के बाहर का, उसमें ना एक टाइम दिया जाता है कि नो मोबाइल टाइम, फैमिली का टाइम जो रहता है उस मोबाइल को ना एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी होना चाहिए, आप सबको अपनी फैमिली में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए, क्या सब फैमिली एक साथ रहेगी, मोबाइल को एक बॉक्स में रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं यहाँ से जाने की विदा।
0: बिल्कुल, इजाजत लेंगे, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच जब बदलेगी जब हम उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी शुरुआत मुझे और आपको ही करनी है श्रोताओं। तो मोबाइल एक अच्छी चीज है हमारी फैसिलिटी के लिए, इस गवर्नमेंट ने बनाई है, टेक्नोलॉजी का अच्छा फायदा आपको जरूर मिलेगा और मिल भी रहा होगा आई एम श्योर। बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि अपने रिश्तों को भूल जाए, अपने परिवार को भूल जाए, परिवार को एक क्वालिटी टाइम दीजिए। और फैमिली से भी कहना चाहता हूँ, स्पेशली अगर आप मुझे सुन रही हैं, वर्किंग लेडी हैं, आप वुमेन वर्किंग वुमेन हैं, तो डेफिनेटली अच्छी बात है, आप जो भी कर रही करती रहिए, ऑल द वे बेस्ट। बट उसके साथ ही साथ अगर आप घर जा रही हैं तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के साथ जरूर बिताएं, उससे पूछें आज उसने स्कूल में क्या किया, उसके स्कूल में कैसा रहा उसका टाइम, उसने किसके साथ टाइम बिताया। अगर आप फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के साथ स्पेशल टाइम डेफिनेटली सेलिब्रेट करें और एक वीकेंड में ऐसा दिन जरूर निकालें जिसमें नो मोबाइल, एटलीस्ट एक घंटा ही सही, बट वो आप जरूर करें, कहीं बाहर जाएं, एक्टिविटीज करें, फन करें, बट मोबाइल को थोड़ा सा तवज्जो कम दें, मतलब जब आपको लगता है स्पेशली परिवार के लिए टाइम है। तो ये चीज आप कीजिए, सोच अपने आप बदलेगी, बाकी कोशिशें आपको करनी पड़ेंगी। हम भी आपके लिए कोशिश करते रहते हैं प्रोग्राम के जरिए कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएं और आपको जगाएं। बाकी के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनते रहिए, है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। फिर से बोलेंगे रेडियो
2: बजाते रहो,
3: गुनगुनाते रहो।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बाय।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में
8: आरजे रीना भी है।
7: हाँ जी, हम हाजिर हैं आपका फेवरेट शो लेकर महिला मंच, जहाँ पर बात होती है महिलाओं के बारे में, घर परिवार के बारे में, फैमिलीज के बारे में।
8: करेक्ट।
7: तो अच्छा अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ, अब हमने घर परिवार की बात छेड़ी ही है तो बताते हैं कि आजकल न्यू जनरेशन है, रिलेशन बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, फासले घरों में नहीं अब दिल में बनते जा रहे हैं।
8: बिल्कुल सही कहा तुमने
7: रीना जी। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के समय जब मैं घर के आंगन में बैठकर अपने बीते पलों को याद करती हूँ ना, तो मन मतलब खुश हो जाता है, उन पुरानी यादों में लौट जाता है। घर के आंगन में बैठकर अपने बीते पलों को याद करती हूँ ना, तो मन मतलब खुश हो जाता है, उन पुरानी यादों में लौट जाता है, जब रिश्तों में एक अलग ही मिठास हुआ करती थी। तब घर छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े हुआ करते थे। तब उस समय भी ना सुविधाएं बहुत कम थी लेकिन अपनों के लिए समय बहुत था।
8: ये सही कहा तुमने, उस टाइम चाहे सुविधाएं कम थी लेकिन अपनों के लिए समय बहुत ज्यादा था। हर इंसान एक दूसरे की मदद करता था उस समय, लेकिन अब फोन आ गया है, हर कोई फोन में बिजी रहता है, भले ही कमरे बड़े हो गए हैं लेकिन
7: दिलों में जगह कम हो गई है।
8: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने।
7: और पता है क्या होता है ना रीना, जैसे हम लोग पहले के टाइम में, मैं बताती हूँ तुम्हें, जब कोई फोन नहीं था, कोई ऐसा इंटरनेट का सिस्टम नहीं था उस टाइम पे, था लेकिन बहुत कम थे,
8: मतलब वही टेलीफोन वाला जो कनेक्ट होते थे।
7: और एक वो वाला टेलीफोन की याद है आपको, जिसमें एक रुपए डाल के बात किया करते
8: थे। एक रुपए डाल के बात किया करते, मिनट के हिसाब से होता था, जैसे मिनट खत्म भैया अधूरी बात रह जाती थी,
7: आधा हेलो कुछ बोलते बोलते।
8: तुम्हें पता है क्रेज बहुत होता था यार, जो हमने अब की बार बात नहीं करी ना, पक्का पिछली बार जो हम बात करेंगे ना तो उस बात को पहले रखेंगे, नोट करके रख लेते
7: वो
8: थे।
7: हम पहले नोट करते कि हमें क्या से शुरू करना है, क्या बोलना है, तो टाइम बहुत ही खूबसूरत था।
8: और अब तो पता ही नहीं चलता है कि कितने दो घंटे चार घंटे निकाल दो, इंसान बोर होने लगता है, काट दे फोन
7: ऐसा होता है,
8: बहाना मारना पड़ता है, अच्छा चल यार किसी का ना कॉल आ रहा है,
7: मुझे काम है, मैं अभी फोन रखती हूँ।
8: हाँ।
7: और पता है तुम्हें रीना, पहले के टाइम में लाइक क्या होता था मैं आपको बताती हूँ, जैसे अभी आपने बात की कि समय के बारे में, तो पहले ना इंसानों के हाथ में वॉच नहीं होती, पहले लोगों के हाथ में ज्यादा वॉच नहीं होती थी लेकिन टाइम सबके पास होता था। आजकल घड़ी सबके पास है, मोबाइल सबके पास है लेकिन वक्त किसी के पास नहीं है।
8: अरे पहले के इंसान ना आसमान को देखते थे और टाइम बता देते थे,
7: धूप को गेस करके ना,
8: और पहले के टाइम में ना यही होता था,
7: वॉच
8: इंसान गैस कर लेता था, अच्छा अब धूप यहाँ आ चुकी है तो पक्का 3 बज चुके हैं, अब 5 बज चुके हैं, अब 7 होने वाली है, ये होता था। और अब हर किसी के हाथ में वॉच है, फोन है, मतलब घड़ी भी बहुत रेयरी बांधते हैं अब, सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ
7: शॉप के लिए घड़ी बांधते हैं, लेकिन टाइमिंग तो
8: टाइम तो फोन से ही देखते हैं।
7: और लेकिन पता है रीना तुम्हें, पहले के टाइम में, और मैं आपको बताती हूँ 90s की अगर बात करें हम, तो 90s के समय में ना जब छुट्टियां हुआ करती थी, जैसे अभी छुट्टियां चल रही हैं, समर सीजन है, तो हम लोग नानी के घर जाने के लिए इतना एक्साइटमेंट रहता था हमारे मन में बहुत ज्यादा, और घर जाकर नानी के वो कहानियां सुनना, नानी टेस्टी खाना बनाती थी बहुत ज्यादा हमारे लिए, स्पेशली बच्चों के लिए कि कब आ रहे हो, और बहुत ही खूबसूरत एकदम मतलब गोल्डन समय था उस टाइम का। आजकल बच्चों को बोलो कि नानी के घर जाओगे, नहीं आपको आप जाइए, हमें बस फोन दी जाइएगा। आज की जनरेशन के बच्चे ऐसे हो गए हैं।
8: लेकिन पता है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की के बीच का जो रिश्ता आज समाज के सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक है, यह सिर्फ माता पिता और बच्चों की बात नहीं है बल्कि दादा दादी, नाना नानी, बहू बेटी, भाई बहन और पूरे परिवार की कहानी है।
7: और कहते हैं ना कि हर पीढ़ी को लगता है कि अलग अलग पीढ़ी उससे अलग है।
8: हाँ।
7: शायद हमारे माता पिता ने भी हमारे बारे में यही सोचा होगा।

0: बारे में यही सोचते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बदलाव की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है।
1: हाँ, आज का बच्चा दुनिया को मोबाइल स्क्रीन पर देख रहा है और उसके दोस्त सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के किसी भी कोने तक पहुँच सकती है। उसके सपने बड़े हैं, सोच अलग है और सवाल भी बहुत अलग है।
0: लेकिन क्या ये गलत है?
1: नहीं, हर दौर की अपनी पहचान होती है। जिस तरह हमारे समय में रेडियो, पत्र और परिवार की बैठकों का महत्व था, उसी तरह आज डिजिटल दुनिया है, नई पीढ़ी का हिस्सा है। समस्या तकनीकी नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब तकनीकी रिश्ते की जगह लेने लगती है।
0: तो रीना, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। और
1: अरे सुनाओ, मुझे तो, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब, मतलब कहानी जब मैं सुनती हूँ ना, मुझे अपनी नानी की याद आती है, अपनी दादी की याद आती है।
0: तो तुम मुझे नानी बनाना चाह रही हो?
1: अरे नहीं नहीं, मतलब एक कहानी के नाम से सुनाता
0: है ना, नानी का चेहरा ही सामने आता है।
1: हाँ, क्योंकि जब रात को नींद नहीं आती थी तो वो कहानी सुनाया करती थी।
0: एग्जैक्टली।
1: तो चलो सुनाओ, मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ।
0: हाँ, तो एक बुजुर्ग माँ रोज शाम को अपने बेटे का इंतजार करती थी। बेटा घर तो आता था लेकिन आते ही मोबाइल में व्यस्त हो जाता था। माँ कई बार बात शुरू करती लेकिन बेटा कह देता, अभी नहीं माँ, थोड़ा काम है। एक दिन एक माँ ने बेटे से पूछा, बेटा क्या मैं भी तुम्हारा मोबाइल देख, क्योंकि अब तुम सबसे ज्यादा समय उसी के साथ बिताते हो। ये सुनकर बेटा कुछ पल के लिए चुपचाप हो गया। यही कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, शायद हमारे आसपास ऐसे कई घरों की है जहाँ लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं रहते।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। नई पीढ़ी को अक्सर शिकायत होती है कि उन्हें समझा नहीं जाता, लेकिन अब वही पीढ़ी लगता है कि बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते हैं। सच यह है कि दोनों ही पक्ष कहीं न कहीं दुखी है और दोनों ही प्यार चाहते हैं। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब विचार अलग होते हैं। रिश्ते तब कमजोर होते हैं जब हम यह मान लेते हैं कि सामने वाला हमें समझ ही नहीं सकता है। और पता है खुशी, आजकल ना ये सब जो हम सोचते हैं कि हमें कोई समझ नहीं पाता है, समय नहीं दे पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोन है जो हमें इंसानों के पास तो रखता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम फोन में बिजी रहते, किसी को टाइम नहीं दे पाते।
0: बिल्कुल, तुम कह तो सही रही हो। एक माँ अपनी बेटी से कहती है, हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। बेटी जवाब देती है, माँ आपका समय अलग था और मेरा समय अलग है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की बात सुन ले तो शायद कोई विवाद ही नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आज बच्चों को आदेश से ज्यादा संवाद की जरूरत है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि घर उनकी बात सुनता है। वही बच्चों को भी यह समझना होगा कि माता पिता की रोक टोक कई बार प्यार और चिंता का दूसरा नाम होता है।
0: यहाँ महिलाओं की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। माँ घर का वह पुल होती है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। एक माँ चाहे तो दादी और पोती के बीच की दूरी कम कर सकती है, एक बहू चाहे तो परिवार में संवाद का माहौल बना सकती है।
1: क्या बात है, बहुत ही बड़ी बात कही है तुमने। तो हम अक्सर बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार और अच्छे भविष्य देने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें रिश्तों की अहमियत सिखाते हैं?
0: क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि दादी नानी की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि जीवन का अनुभव है?
1: क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि घर के बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि परिवार की जड़ें होती हैं?
0: और क्या हम खुद नई पीढ़ी की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए रीना, रिश्ता एक पौधों की तरह होता है। उन्हें रोज थोड़ा समय, थोड़ा प्यार, थोड़ा धैर्य चाहिए। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करेंगे तो वे सूख जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें संभालेंगे तो वे जीवन भर छाया देंगे।
1: जैसे एक पेड़ हमें सिर्फ फल देता है, बदले में कुछ नहीं लेता है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी जैसी बन जाए या नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी जैसी, जरूरत इस बात की है कि दोनों एक दूसरे को स्वीकार करें, क्योंकि परिवार वह जगह नहीं है जहां सबकी सोच एक जैसी हो। परिवार वह जगह है जहां अलग अलग सोच रखने वाले लोग भी एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं।
0: आज महिला मंच के माध्यम से हम छोटा सा संकल्प लें, हम अपने बच्चों को सुनेंगे,
1: हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे,
0: हम मोबाइल से थोड़ा समय निकालकर अपनों के साथ बैठेंगे।

0: क्योंकि आखिर में जन की सबसे बड़ी कमाई अपने लोग होते हैं।
1: और जब उम्र ढलने लगती है तब बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा बनता है।
0: याद रखें श्रोताओं, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, समय बदलता रहेगा, लेकिन प्यार, सम्मान और संवाद ऐसे दीपक हैं जो हर दौर में रिश्तों को रोशन करते रहेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और मुझे लगता है कि देखो खुशी, हम अक्सर यही सोचते हैं ना और यही कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, लेकिन हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन जब वो हमें कुछ बोल देते हैं ना तो हमारे अंदर ना एक अलग सी गुस्सा आ जाता है ना कि यार क्यों बोला। मतलब हमें अपने तरीके से बातें करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप माँ बाप की बातें मानते हो तो बड़े खुश रहते हो, है ना।
0: एग्जैक्टली, पेरेंट्स ना हमें हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमें उस समय पे थोड़ा सा लगता है कि पीछे क्यों बोला, लेकिन हमें उसकी वैल्यू की अहमियत हमें बाद में समझ आती
1: है। बिल्कुल,
0: आप सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी जो इस समय सुन रहे हैं, अपने बड़ों को टाइम दें, रिस्पेक्ट करें एंड उनसे ढेर सारा प्यार करें। जब आप ऑफिस से शाम को घर आए तो उनका हालचाल जरूर पूछें, क्योंकि वो सुबह से आपका इंतजार करते हैं कि कब शाम होगी, कब बच्चे वापस घर आएंगे। आप ज्यादा नहीं थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आप पूरे दिन बिजी रहते हैं, माना आप थके हारे आते हैं, लेकिन जब आप भी अपने को अपनों के साथ बैठते हैं, कुछ उनके दिल का हाल जानते हैं, कुछ अपने दिल का हाल बताते हैं, तो कितना सुकून मिलता है ना। और साथियों, आज के टाइम में अगर कोई आपका अपना आपके लिए इतना बेचैन है, इतना समय निकालता है, इतना आपको वैल्यू देता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल के जो रिश्ते हैं ना वो सेल्फिश हो गए हैं, और जो सच्चे रिश्ते हैं, जो अपने हैं, उनको आप संभाल कर रखो।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि जब भी किसी चीज की जरूरत होती है ना तो बैंक बैलेंस नहीं देखा जाता बल्कि अपने देखे जाते हैं। और इसी के साथ हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ और अच्छी और ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं कि संस्कार बहुत मायने रखते हैं। बाय बाय श्रोताओं।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
2: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
1: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आयना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
1: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के तीन महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्यिक कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
5: इससे बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
6: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का हो उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहाँ से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
7: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, इनको स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेटेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है। ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है। और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन है या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले चार दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
8: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने दो मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के छह जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के दो गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
9: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 टूरंट कम के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरना सबालिंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरना सबालिंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-2331-7481-2371-7161 और 2331-4444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरना सबालिंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
11: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
10: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070 5552।
12: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
13: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
12: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
13: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
12: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
14: हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अब पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और मेरे साथ में है प्यारी सी आरजे रीना। जी हां, आपको पता ही है एवरीवन कि हम एवरीडे आपके लिए लेकर आते हैं आपका खास कार्यक्रम महिला मंच। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस पर चर्चा तो बहुत होती है लेकिन बदलाव की जरूरत आज भी उतनी ही है। दहेज प्रथा। शादी दो लोगों की जीवन की नई शुरुआत होती है लेकिन अगर इस शुरुआत से पहले ही सामान, पैसे और गाड़ी की मांग सामने आ जाए तो क्या रिश्ता सच में बराबरी का रह जाता है? शादी कोई सौदा नहीं, ये दो लोगों का साथ है, दो परिवारों का जुड़ना है। इसीलिए रिश्ता शुरू होने से पहले मांगों की नहीं समझ और सम्मान की बात चाहिए।
15: बिल्कुल सही कही तुमने, क्योंकि सम्मान की बात होती है तो वहाँ मांग की बात नहीं होती है। और बात करेंगे दहेज की मांग आखिरकार क्यों होती है। कभी आपने सोचा है कि शादी के समय आखिर इतनी सारी मांगे क्यों जुड़ जाती है? कहीं कार चाहिए, कहीं महंगे गहने, कहीं फर्नीचर और कहीं नगद पैसे। शुरुआत में शायद एक छोटी सी मांग होती है लेकिन धीरे धीरे वह उम्मीद और फिर दबाव बन जाती है। खासकर लड़की माता पिता सोचते हैं कि कहीं उसकी बेटी को शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, रिश्ते की मांग और रिश्ते की नींव अगर मांगने पर रखी जाए तो क्या वह नींव मजबूत रह पाएगी? क्या अपनी सोच बदलनी होगी? और शादी को आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि जीवन भर साथ समझना होगा। और मुझे लगता है कि जहाँ रिश्ते में मांग हो वो रिश्ता कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि आज आपसे मांगा जा रहा है, कल को शादी होने के बाद आपके ऊपर और दबाव डाला जाएगा, आपकी बेटी के ऊपर और दबाव डाला जाएगा कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है कि जहाँ पर ये मांगे आती वहाँ रिश्ता खत्म करो। दुनिया में बहुत लड़के हैं यार, और आजकल मुझे लगता है कि लड़कियां कंधे से कंधे मिला के चल रही है, उनके माता पिता उनके पैसे पढ़ाई में इतने पैसे लगा रहे हैं, तो वो भी सोचो। और दहेज प्रथा मुझे लगता है कि जड़ से खत्म कर देनी चाहिए।
14: बिल्कुल, ये बैन होना चाहिए। और रीना बताएं, सरकारी नौकरी और दहेज, जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनकी भी बहुत सारी डिमांड्स होती है, हम सबको नहीं इन्वॉल्व करेंगे,
15: उनकी तो और भी ज्यादा डिमांड होती है। पता नहीं कौन से 30 मार खान से वो पढ़कर आते हैं, कहाँ से पढ़कर आते हैं जो उनके अंदर भी सोच भी वैसी आ जाती है। मतलब कह रहे हैं ना, जितने शिक्षित हो रहे हैं लोग उतनी ज्यादा मांगे बढ़ती जा रही है।
14: अक्सर सुनने को भी मिलता है कि लड़का सरकारी नौकरी में है इसीलिए मांग तो होगी ही, लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं, क्या सरकारी नौकरी किसी इंसान की कीमत तय करती है? सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मेहनत और उपलब्धि है और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन शादी के बदले किसी परिवार से कार या लाखों रुपए मांगना मान नहीं बल्कि दबाव बन सकता है। सवाल ये होना चाहिए कि लड़का और लड़की एक दूसरे को कितना समझते हैं, उनके विचार कैसे हैं और वे जिंदगी साथ कैसे बिताएंगे। नौकरी अच्छी हो सकती है लेकिन अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है।
15: क्यों ना? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, इंसानियत अच्छा होना चाहिए बस।
14: देखो, अगर इंसान के पास बहुत पैसा हो और वो इंसान हमें ना समझे
15: तो क्या फायदा,
14: उस रिश्ते में फिर इंसान नहीं रह पाएगा।
15: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आजकल इंसान पता है क्या देखता है, कोई भी हो पैसे वाले के घर शादी होना चाहिए। ये नहीं पता कि भाई जिस पैसे, देखो हर किसी को हम नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे हैं जो दहेज के बिल्कुल खिलाफ लेते ही शादी में पैसे, और बहुत ऐसे होते हैं नहीं भैया हमें तो पूरा खजाना ही दे दो। मतलब लगता है कुबेर जी को ही दान में दे देना चाहिए उनको तो।
14: बेटी तो वो देते ही देते हैं, साथ में वो इतनी डिमांड्स भी लोग करते हैं। पर रीना, मुझे ऐसा लगता है, देखो जो अपने जिगर का टुकड़ा देता है अपनी बेटी को पाल पोस कर बचपन से बड़ा कर वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे घर में करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा और क्या दान हो सकता है जिसने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया।
15: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन बहुत से नहीं समझते है ना, मुझे लगता है कि देखिए आज आप किसी की बेटी के लिए मतलब अपने घर में शादी करके ला रहे हैं, उस दहेज ले रहे हैं, लेकिन क्या पता आपके घर में भी लड़की होए और आपकी आपसे बोला जाए डबल यानी कि दहेज दो, तो आप उस टाइम सोचेंगे कि मैंने शायद गलत करा था दहेज लेके। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा तो देखो भरना पड़ेगा आपको। तो खुशी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कार चाहिए या साथ चाहिए?
14: देखो कार तो मैं खुद भी पैसे कमा कर ले सकती हूँ, बट तुम्हारा साथ मुझे चाहिए क्योंकि वो मिलना बहुत मुश्किल है।
15: ये तो बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन आज मुझे हमें दुनिया को बताना है ना कि कार नहीं साथ ढूंढो, क्योंकि आज के समय में साथ किसी का पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है श्रोताओं। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शादी की बातचीत में कभी कभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि क्या क्या मिलेगा, कार होगी या नहीं, इतने गहने होंगे या नहीं। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कभी इस सवाल को बदल कर देखिए, पूछिए क्या दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मुश्किल समय में साथ खड़े होंगे, क्या लड़की अपने सपने पूरे कर पाएगी, क्योंकि कार सड़क पर साथ चल सकती है लेकिन जिंदगी के रास्ते पर साथ चलने के लिए समझदारी चाहिए। इसीलिए शादी में चीजें कम और समझ ज्यादा हो तो ये रिश्ता कहीं ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कार चाहिए दहेज में तो सावित्री जैसी पत्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी, अगर सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो कार नहीं, समझ होनी चाहिए आप सी में, ताकि वो यमराज जब आपकी प्राण लेकर जाना तो उसके पीछे पीछे जाकर लेकर अपने पति का प्राण लेकर आ जाए।
14: बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि देखिए अगर आपको सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो उसके लिए आपको डिमांड्स नहीं, अच्छी लड़की देखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार, अच्छा नेचर, क्योंकि हमेशा ना इंसान अच्छा होता है तो हर चीज हम खरीद सकते हैं।
15: हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप उसका साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर
14: करता है जिंदगी में। तो अभी ना हम
15: आगे बढ़ेंगे अपने शो में,
14: लेकिन एक पहले गाना तो सुन ले यार, बहुत बातें हमने कर ली है, एक म्यूजिकल ब्रेक होना भी जरूरी है, उसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है म्यूजिक के बिना।
15: ये गाना सुनेंगे सासू जी तूने
14: कदर न जानी।
15: ये गाना सुनने वाले श्रोताओं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत और हम लौट कर आ चुके हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और मेरे साथ में रीना जी भी हैं यहाँ पर। और दोस्तों माता पिता का दबाव, बेटी की शादी हर माता पिता के लिए खुशी का पल होता है, लेकिन जब सामने से लगातार मांगे आने लगती है तो ये खुशी चिंता में बदल सकती है। कई माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए, लेकिन दोस्तों बेटी की शादी की खुशी उसके माता पिता की आर्थिक मजबूरी पर नहीं टिकी होनी चाहिए। माता पिता ने बेटी को प्यार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिए, ये किसी भी महंगे सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। बेटी की विदाई मुस्कुराती हुए होनी चाहिए, कर्ज के बोझ के साथ नहीं।
1: ये तो बिल्कुल 100% तुमने सही कही है, कर्ज के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से मिडिल क्लास फैमिली में कर्ज भी लेना पड़ता है यार, तो वो इसलिए लेना पड़ता है ना कि दहेज की मांगे होती है। जब दहेज की मांगे ही नहीं होंगी तो कर्ज भी मुझे लगता है कि नहीं लेना
0: नहीं लेना पड़ेगा। या आई एग्री विद यू रीना।
1: हाँ तो देखिए श्रोताओं, बहुत से घरों में लड़कियों को बोझ माना जाता है। बेटी कोई बोझ नहीं, हम अक्सर कहते हैं बेटी को अच्छे घर में भेजना है, लेकिन अच्छा घर आखिर किसे कहेंगे? वह घर जहाँ बहुत सम्मान हो या वह घर जहाँ बेटी को सम्मान मिले? मेरे हिसाब से अच्छा घर वही है जहाँ बेटी को अपनेपन का एहसास मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसे बराबरी का अधिकार मिले। बेटी कोई जिम्मेदारी नहीं जिसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, वह परिवार का हिस्सा है, एक इंसान है अपने सपने और अपनी पहचान के साथ। इसीलिए उसकी शादी में सबसे जरूरी बात दहेज की ना करे, अच्छे रिश्ते की करे।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लड़की की जिम्मेदारी दहेज प्रथा को खत्म करने की बात होती है। तो हम अक्सर सिर्फ लड़के वालों की तरफ देखते हैं, लेकिन बदलाव की सबसे

0: पर जो पैसे मिलते हैं, जो सामान मिलते हैं, उस पर कितने दिन तक राज कर पाओगे? एक महीना, दो महीना, उसके बाद फिर से वैसा ही। तो क्यों ना हम अपने बलबूते पर आगे बढ़े। जो भी सामान खरीदना है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचकर जो भी आप काम करेंगे ना, तो देखिए आपके पास लक्ष्मी कैसे भागती भागती आएगी। लेकिन मन में जब वही पाप भरा होगा तो लक्ष्मी भी नहीं टिकती है वहां पर। इस चीज को जरूर सोचे। और मुझे ना ये लगता है कि लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब लड़कों की सुनी जा सकती है तो लड़कियों की क्यों नहीं सुनी जा सकती है। मुझे लगता है कि उनकी बातें भी सुननी बहुत जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में शादी से पहले लगातार मांगे रखी जा रही हो तो लड़की और उसका परिवार उस पर खुलकर बात कर सकते हैं। शादी जिंदगी का बड़ा फैसला है और इसमें आपकी सहमति, आपकी खुशी और आपका मान सबसे जरूरी है। सिर्फ इसलिए किसी बात को स्वीकार करना जरूरी नहीं। अब रिश्ता तय हो गया है या लोग क्या कहेंगे, सही रिश्ता वही है जहाँ दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान करे और दोनों की खुशी को महत्व दे। ये बिल्कुल सच है। कभी कभी रिश्ता तय हो जाने के बाद ये कहा जाता है, बहुत से हमने न्यूज भी देखी है जहाँ पर बारात मतलब लड़की के घर पर चले जाते हैं और वहाँ से वापस ले जाते हैं।
1: बारात वापस
0: या फिर ये होता है कि बारात की पूरी तैयारी हो जाती है और लड़के वाले से कॉल आता है कि इतने लाख पैसे अभी पहुँचाओ तब हम आएंगे आपके घर, वरना शादी कैंसिल। ऐसे भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है जब ऐसे ऐसी बातें आती हैं तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचिए जब आपकी बेटी ही नहीं रहेगी तो इज्जत का क्या करिएगा। इसीलिए भाई मुझे लगता है कि जब आप शादी तय होती है वहाँ पर अच्छे से बातें हो जाना चाहिए। और जहाँ पर मांग हो, मुझे लगता है कि मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि वहाँ शादी कैंसिल कर देना चाहिए।
1: मुझे लगता है रीना, देखिए शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है। अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए। क्योंकि
0: एक बात और, जितना पैसा हम दहेज में लगाते हैं अगर उतना ही पैसा बेटियों को पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगेंगे तो मुझे लगता है कि जब वो भी अपने पैर पर खड़ी रहेगी और लड़का भी अपना पैर पे
1: तो वही मैं
0: तो वहाँ दहेज की बात ही नहीं आई।
1: हाँ, तो वही मैं कहना चाह रही तुमसे कि अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए। क्योंकि एक महंगा सामान कुछ समय बाद पुराना हो सकता है लेकिन शिक्षा जिंदगी भर साथ रहती है। बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दीजिए, उसे फैसले लेने का आत्मविश्वास दीजिए, उसे ये एहसास दिए कि शादी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसकी पूरी पहचान नहीं। जब बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो दहेज जैसी सोच के खिलाफ उनकी आवाज भी मजबूत होगी।
0: ये तो बिल्कुल बात सही कही है तुमने। और एक और बात जो आज के समय में ना मतलब एक दूसरे को देखा देख बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो है दिखावे की शादी। आजकल
1: मैंने अगर 50 लाख की शादी की है तो यार मैं 60 लाख की शादी करूंगा।
0: हाँ, ये रहता है आज के टाइम में। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज देखते हैं बड़ा वेन्यू, महंगे कपड़े, शानदार सजावट और लाखों का खर्चा। खुशी मनाना गलत नहीं है लेकिन जब दिखावे के लिए परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने लगे तो हमें रुककर सोचना चाहिए। शादी कुछ घंटों का समारोह है लेकिन वैवाहिक जीवन सालों का सफर, इसलिए शादी में दिखावा कम और समझदारी ज्यादा हो। आखिरकार जिंदगी की खूबसूरती वेडिंग डेकोरेशन से नहीं रिश्तों की समझदारी से बनती है।
1: दहेज और आत्मसम्मान। देखिए दोस्तों, दहेज की मांग सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं होती, कई बार ये परिवार के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। सोचिए कोई परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कहीं रिश्ता ना टूट जाए। क्या ऐसा रिश्ता सच में मजबूत हो सकता है? रिश्ते में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर शुरुआत ही दबाव से हो तो आगे चलकर समर्थ और बराबरी कैसे आएगी? इसीलिए दहेज के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करना है। तो दोस्तों अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आएंगे और भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करने लगे। तो बने रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: और क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और इसी के साथ अर्जेंटीना फिर से आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है महिला मंच शो में। और अब बात करने वाले हैं कि हर किसी के जुबान पे एक ही बात होता है, लोग कहेंगे, है ना। हमारे समाज में एक वाक्य बहुत कुछ बदल देता है, लोग क्या कहेंगे। कई बार इसी डर से परिवार ऐसी मांगे भी मान लेते हैं जिन्हें वे खुशी से नहीं मजबूरी से पूरा करते हैं। लेकिन जिंदगी आपको और आपकी बेटी को जीनी है, समाज को नहीं। कुछ लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन कोई फैसला जिंदगी भर परेशानी बन जाए तो उसका असर परिवार को ही झेलना पड़ता है। इसलिए फैसले समाज के दबाव से नहीं, समझदारी और अपनी क्षमता को देख कर लेनी चाहिए ताकि आपको आगे पछतावा ना होए।
1: बराबरी का रिश्ता, रीना आजकल बराबरी बहुत देखते हैं लोग। अगर मैं इतना कमाता हूँ तो उसका स्टैंडर्ड भी इतना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन शादी का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है? साथ, साथ। और साथ तभी खूबसूरत होता है जब उसमें बराबरी हो। और एक परिवार अपनी बेटी को प्यार और सम्मान के साथ रहा है तो दूसरे परिवार की जिम्मेदारी भी है कि वह उसे उसी सम्मान के साथ स्वीकार करे। शादी में किसी एक को छोटा या बड़ा समझने की जरूरत नहीं, दोनों परिवार बराबर हैं, दोनों बच्चे बराबर हैं और दोनों की खुशियां बराबर हैं। तो मुझे लगता है रीना कि दहेज की जगह अगर बराबरी आ जाए कितने ही रिश्ते ज्यादा मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं ना। अगर रिश्ते यहाँ पे एकता हो, है ना, कि देखिए वो लड़की भी मेरी मतलब इक्वल है और मैं भी, दोनों को एक समान देखा जाए। ये नहीं कि वो गरीब घर से आई है, मिडिल फैमिली से आई है, मैं रिच फैमिली से हूँ तो उसकी वैल्यू कम करते हैं कि ये तो मिडिल फैमिली से लड़की है, मिडिल क्लास लड़की है, इसकी क्या रिस्पेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक दूसरे से रिश्ते में बनते हैं, एक दूसरे से रिश्ता होता है, तो वहाँ पर आपको एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट, बराबर सम्मान, प्यार देना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये तो है। ये चीजें अगर दुनिया में सबकी सोच ऐसी हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी ही नहीं आएगी किसी की भी जिंदगी में। कई बार दहेज की शुरुआत बहुत छोटी मांग से होती है, बस इतना ही और चाहिए। लेकिन यही छोटी सी मांग आगे चलकर बड़ी अपेक्षाओं का रूप ले सकती है। और जब परिवार एक मांग पूरी करता है तो अगली मांग के लिए रास्ता खुल जाता है। इसीलिए शुरुआत में ही अपनी सीमाएं और अपनी सोच स्पष्ट रखना जरूरी है। शादी में उपहार देना अगर खुशी और अपनी इच्छा से हो तो अलग बात है, लेकिन मांग और दबाव बिल्कुल अलग चीजें हैं। फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या उपहार भी दहेज होता है खुशी?
1: नहीं, दहेज और उपहार दोनों में डिफरेंस है। दहेज हम देने की इच्छा नहीं होती, दहेज जबरदस्ती दिया जाता है,
0: वो ना मांगा जाता है।
1: मांगा जाता है, लेकिन अगर बात करें उपहार की तो उपहार हम अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं,
0: अपनी बेटी के लिए देते हैं।
1: हाँ, तो दोस्तों आजकल बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्टडी कर रही हैं, हर फील्ड में वो हर क्षेत्र में किसी कंधा मिलाकर चल रही हैं, बराबरी कर रही हैं। और आज की बेटियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और अपने सपने पूरे कर रही हैं। ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा ये है कि उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसे ये भरोसा मिले कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आत्मनिर्भर बेटी सिर्फ अपनी जिंदगी मजबूत नहीं करती बल्कि पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। इसीलिए बेटियों के भविष्य में निवेश कीजिए, उनकी पढ़ाई, स्किल्स और कॉन्फिडेंस में, यही असली संपत्ति है।
0: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। रिश्ते की असली कीमत, अगर कोई रिश्ता सिर्फ वह वजह से टूट जाए कि सामने वाला परिवार कार या पैसा नहीं दे सकता, तो शायद हमें उस रिश्ते की असली कीमत पर विचार करना चाहिए। रिश्तों की कीमत बैंक बैलेंस से नहीं, व्यवहार से तय होनी चाहिए। जीवन साथी ऐसा हो जो बीमारी में साथ दे, मुश्किल समय में साथ पकड़े और आपकी खुशियों में भी दिल से खुश हो। ऐसी चीजें किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती, इसीलिए शादी में सबसे पहले इंसान देखे, सम्मान नहीं देखा जाता है। श्रोताओं, देखिए सम्मान तो आप जितनी मर्जी खरीद लेंगे, लेकिन है जब उसमें प्यारी समझ ही नहीं होगा, एक दूसरे का साथ ही नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा ऐसी दहेज का। इस पे सोचिएगा जरूर आप। मैं अर्जुन रीना बोल रही हूँ आप सभी से, और मुझे मैसेज करके भी आपने बताना है, नंबर है 9837896896 पर, कि दहेज के प्रति आपका क्या राय है। क्योंकि देखिए हमारे साथ साथ मुझे लगता है कि आपकी भी राय हमारे लिए बहुत, मतलब ऐसा कुछ तो लगेगा कि हम आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आपका
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और देखिए, मंडे की दोपहर है, खूबसूरत सा दिन मंडे का, और समय हुआ है 3:04 स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ। तारीख है आज 7 सितंबर की, और हमारे साथ हमारे फर्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं। आपके अपने फेवरेट शो में, शो का नाम मैं आपको बताती हूँ, हेलो फरमाइश। ये फोन इन कार्यक्रम है जहाँ पर आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी गाना सुन सकते हैं, इस खूबसूरत दोपहर को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो फिर सोच क्या रहे हैं आप, जल्दी से कॉल लगाइए। आप हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फर्स्ट कॉलर, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार मैडम जी।
0: जी बताइएगा अपना नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: जी बढ़िया है मैडम जी, आपका मुरादाबाद रेडियो एफएम सुन रहे हैं। हेलो फरमाइश
0: जी, बताइएगा परिवार में सब कैसे हैं, आपके यहाँ पर मौसम कैसा है आपकी साइड?
1: जी मौसम धूप खिल रही है बहन जी, कल तो बरसात है।
0: अच्छा, मौसम क्लीन है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइएगा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैडम जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, कनक साहू का।
0: अच्छा, कनक साहू का बर्थडे है आज, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की आपकी डॉटर को।
1: जी मैडम जी।
0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है?
1: उनको एक गाना डेडिकेट रहेगा, पिक्चर का नाम है अनाड़ी। और गाने के बोले, छोटी सी प्यारी सी नन्नी सी आई कोई परी।
0: अरे वाह, कितने साल की हो गई आपकी डॉटर?
1: ये 5 साल की हो गई है।
0: अच्छा, 5 ईयर्स की हो गई, ओके। चलिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: मैं लेना चाहता हूँ, जो हमारे भैया बच्चों के नाम है उनके नाम भी लेना चाहता हूँ।
0: जी जी जी बताइए, बताइएगा
1: जी। मिलन साहू है, राति साहू है, रवि साहू है, और पायल साहू है, गौरव साहू है, शिवान साहू है, कनक साहू है। ये गाना इन सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है सर, थैंक यू, आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपके पसंद के गाना, एंजॉय कीजिएगा आप सब। तो एवरीवन, सुनते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक उदित नारायण जी की बड़ी प्यारी सी आवाज में, प्यारा सा गाना। और मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी अनाड़ी से, एंड उदित नारायण जी की बहुत खूबसूरत सी आवाज, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। और सच कहूं तो कुछ गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, सीधा दिल में उतर जाते हैं। क्योंकि जब किसी घर में एक नन्ही बेटी जन्म लेती है, ना सिर्फ एक बच्ची नहीं आती है,

0: अपनी साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। उसकी पहली किलकारी से घर का सन्नाटा खिलखिला उठता है। उसकी छोटी छोटी उंगलियां पूरे परिवार की उंगली थाम लेती हैं और उसकी एक मुस्कान दिन भर की सारी थकान भुला देती है। बेटियां घर की सिर्फ रौनक नहीं होती हैं, बेटियां घर का सुकून, प्यार और सबसे खूबसूरत एहसास होती हैं। और जब पापा जी कभी काम से बाहर जाते हैं और शाम को जब वो घर आते हैं ना, और जब अपनी प्यारी सी बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं ना, तो दोस्तों सारी थकान सारी टेंशन दूर हो जाती है और अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है। जैसे अभी आप सब एक साथ बैठे हैं और फिर मुरादाबाद सुन रहे हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं अभी। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार, नाम बताइएगा
1: जी। रामपुर तेसवा में कटरा से मोहम्मद रिहान बोल रहा हूँ, कैसी है मैम?
0: जी मैं ठीक हूँ रिहान जी, आप बताइएगा कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है खुशी मैम। आजकल ये चल रहा है जैसे आप बारिश, 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वो थोड़ा सोच समझ के निकले और ज्यादा पानी, जहाँ जहाँ तक पानी है और वहाँ थोड़ा बच के निकले।
0: हाँ बिल्कुल। और आज का मौसम कैसा है आपकी साइड का?
1: वैसे बारिश अब रुकी है तो धूप निकल रही है मैडम।
0: अच्छा धूप निकल रही है, तो बताइएगा रिहान जी आज क्या सुनना चाहते हैं आप, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम पहले तो गाना बोला है यादों की चादर ओढ़ी।
0: अच्छा ओके।
1: और सब सुनना चाहते हैं, अब नाम बताता हूँ, पापा हैं, अम्मी हैं, सब सुनना चाहते हैं आरजे देवसर।
0: ओके ठीक है, आपकी पूरी फैमिली के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक, आपके दोस्तों के साथ भी आप एंजॉय कीजिएगा। आपने कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। तो दोस्तों आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो फटाफट से कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ मुस्कुराते भी रहिए और सुनिएगा ये ट्रैक। मैं लौट कर आती हूँ बस अभी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत, अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। यस, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम दरक्षा है।
0: दरक्षा, कहाँ से बात कर रहे हो आप?
1: मुरादाबाद से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी
0: हूँ,
1: मैम आप कैसे
0: हो? हाँ जी, आई एम गुड। बताइएगा दरक्षा, आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
1: सेकेंड बार लगाया मैम।
0: ओके, देखिए आपने सेकेंड टाइम ट्राई किया, आपका कॉल लग गया है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी बहुत हो रही है। ट्राई तो करती हूँ लेकिन आज सेकेंड बार हुआ है।
0: तो जब कॉल लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा खुशी होती है। और कभी कभी ना, हाँ मैम बिल्कुल, आपने मेहनत की है और वो उसमें जब सफलता मिलती है तो सच में बहुत खुशी होती है। सुरक्षा जी, आज आपने कॉल किया है, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हो? ओके, मुझे लगा कि गाना भूल तो नहीं गए हो आप। क्योंकि ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल। एंड गाना बहुत ही प्यारा है, तो ये ट्रैक आप किनके साथ सुनना चाहते हैं? अच्छा, फैमिली के लिए, और फैमिली के साथ सुनना चाहते हो, राइट? ठीक है, सुनवा दें दरक्षा, थैंक यू कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए दरक्षा जी की पसंद पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ब्यूटीफुल ट्रैक है एंड आवाज नेहा कक्कड़ और साथ में टोनी कक्कड़ की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में, ब्यूटीफुल सॉन्ग, मिलकर एंजॉय करते हैं सब लोग। और हाँ, आप भी मुझे कॉल लगाइए, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। देखिए दोस्तों, आपका भी कॉल लग सकता है, ठीक है? तो उसके लिए आप ट्राई करते रहिए, कभी कॉल लग सकता है, ठीक है? तो उसके लिए आप ट्राई करते रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हे हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक, लिरिक्स थे टोनी कक्कर जी के और म्यूजिक डायरेक्टर भी टोनी कक्कर थे एंड ट्रैक भी दोनों बहन भाई ने क्या कमाल का खूबसूरत गाया है ना एवरीवन। चलिए भी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। यस गुड आफ्टरनून। हेलो
6: नमस्ते,
2: मेरा नाम लबीना है। लबीना जी बताइए कैसे हैं आप?
6: मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
2: मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं लबीना?
6: मैं ग्राम
2: धनुरा
6: कांगड़ा के पास से बात कर रही
2: हूँ। ओके बताइएगा कैसे हैं आपके परिवार में सब और आप?
6: मैम हम सब ठीक हैं, और आप बताओ?
2: हाँ जी आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ, आप बताओ क्या सुनोगे आज?
6: मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, मैंने
2: यार ना मिला। ओके और ये ट्रैक किन के साथ सुनना चाहते हैं?
6: मैम मेरी दोस्त है मन्ना से, और अलीना
2: आलिया ओके,
6: और फातिमा है,
2: देवा
6: है, हफ्ता, मंतर,
2: क्या,
6: और मैम और आप और
2: मुझे
6: सुनने वाले हैं और वो।
2: ओके अरे वाह, आपके तो इतनी सारी दोस्त हैं। हाँ
6: यस मैम।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ सुनिएगा ये अमेजिंग ट्रैक, थैंक यू कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम लवीना। चलिए लवीना की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं शानदार सा ट्रैक, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा एवरीवन। आपका भी कोई गाना सुनने का मन है अपना फेवरेट, तो जल्दी से कॉल लगाइएगा आप मुझे, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक, गुरनाम मुलर की बहुत ही शानदार सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। और लिरिक्स कंपोजर थी जानी, म्यूजिक था अभी पराग जी का। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं राइट नाउ। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी सर, आप मुझे सुन पा रहे
1: हैं? हाँ सुन पा रहे हैं
0: जी। बताइएगा अपना नाम।
1: मोहम्मद हसन।
0: मोहम्मद हसन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गोमनपुर से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं?
1: बढ़िया।
0: अच्छा ही रहना चाहिए। बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हमारी फरमाइश है ये कि वादा करके सजन नहीं आया, हम सुनना चाहते हैं मोहम्मद उवैस है, मैं हूँ और इरम है, हमारी बड़ी बड़ी अम्मी है,
0: ओके
1: इनके साथ में सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है, आपके परिवार के साथ सुनवाते हैं गाना आपको। धन्यवाद आपने कॉल किया हमें। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896।

0: दोस्तों, हम तो अपने वादे के अनुसार आ गए लौटकर आपकी अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं और क्या उनकी फरमाइश है, वो हम उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। मैम जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। क्या नाम है आपका?
1: मैम शिवा लोहट, एमपी विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात करता हूँ। मैम
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया, और आपकी मधुर मधुर आवाज सुन के और भी अच्छा लग रहा है।
0: थैंक यू। बताइएगा कैसा मौसम है एमपी का?
1: एमपी में अभी तो हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम।
0: अच्छा, अभी भी बारिश हो रही है?
1: जी जी
0: जी। बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे शिवाज?
1: मैम एक मूवी है मिस्टर बेचारा, उसमें एक गाना है कोई कोई आंखों में सजने लगे सपने तुम्हारे सनम।
0: ओके ठीक है, सुनवाते हैं शिवाई गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम शिवा। तो चलिए शिवा के पसंद पर सुनते हैं ये ट्रैक एंड हम लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइए, शायद आपका भी कॉल लग जाए, है ना? ट्राई करते रहना चाहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्राई। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। समय मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 3:49। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: दी, मैं आपका बीकानपुर जिला मुरादाबाद से रुकैया फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी होती, आप बताओ आप कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा आप कैसे हैं, आपकी फैमिली में सब लोग?
1: मेरी फैमिली में तो सभी बहुत अच्छे हैं दी, आपको सुन रहे हैं बैठे।
0: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी कि आप सब हमें सुन रहे हैं। और आपने कॉल लगाया है, कैसे लग रहा है आपको आज?
1: बहुत खुशी हो रही है
0: दी। क्योंकि आज आपने खुद से नंबर लगाया है ना एवरी डे, तो आपके सिस्टर लगा कर देते हैं कॉल आपको।
1: ये खुशी कुछ ज्यादा ही हट के होती है दी।
0: हाँ, जब हम खुद से ट्राई करते हैं
1: और लग भी जाता है दी, पता है आज ना मैंने कॉल ट्राई की तो एक ही बारी में कॉल मेरी लग गई।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपकी लक ने भी साथ दिया, आपकी मेहनत ने भी। आप बताओ आज क्या सुनोगे?
1: आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, रिम झिम रिम झिम।
0: ओके,
1: ये सॉन्ग स्पेशली मेरी भांजी को डेडिकेट है क्योंकि उन्हीं की पसंद का ये सॉन्ग है।
0: क्या नाम है उनका?
1: उनका नाम है शाजिया।
0: शाजिया, ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: दी, मेरी दोस्त भी है कुछ सुनने वाली।
0: हाँ बताइएगा।
1: जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रक्षा फातिमा, और मेरी सिस्टर अफरोज फातिमा, फातिमा और नजमा आती, राबी आती और आप सब।
0: ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको, सभी के साथ एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू दी, बाय।
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। चलिए एवरीवन सुनते हैं खूबसूरत ट्रैक।

दोस्तों मन भी हमारा नहीं लगता है आपके बिना, तभी हम भी चले आते हैं एवरी डे 3 से 5 आपसे मुलाकात करने, बातचीत करने, और फरमाइशों के जरिए आपसे बातचीत भी हो जाती है, आपकी पसंद के गाने सुनने का मौका खुशी को भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फटाफट से कॉल करो मुझे। नंबर हमारा रहेगा 9837896 8 9 6 98 3 98 96। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है, ये क्या अभी ट्रैक अभी आपने सुना खान साहब की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में पंजाबी ट्रैक, और कुछ गाने ना बड़े ही शानदार होते हैं, है ना। चलो अभी बात करते हैं कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश। हेलो। ओहो मैम का तो कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गया है, बात करने के लिए इतना ज़्यादा यू नो एक्साइटेड थी, पता नहीं कैसे उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा खुशी भी ना यू नो अपनी खुद की भी नज़र लग जाती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ठीक है कॉल लगा रहे हैं आप, लेकिन फ़ोन को ना थोड़ा सा साइड में रखो, और उसके बाद जैसे हम हेलो करें तभी आप कॉल मतलब फ़ोन के पास आओ, क्योंकि ऐसा भी होता है ना खुशी के मारे हम ना फ़ोन को उसको टच करते रहते हैं तो कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ आपसे कि आप कॉल लगा रहे हैं ना तो खुश होइए, लेकिन फ़ोन मत काटिए खुशी में, ये गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी यार, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो जल्दी से कॉल लगाइएगा आप मुझे, नंबर है 9837896 8 9 6।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादा 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, और मेरे साथ जुड़ी हैं एक बड़ी प्यारी सी लिसनर, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: आप इतना डरी क्यों हैं?
1: नहीं तो।
0: हाँ, अभी लग रहा है कि हाँ आप कंफर्ट होकर आप बात कर रहे हो। बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: अरविंद
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: अमरोहा से
0: बात कर रही हूँ। बताइएगा मैम, क्या करते हैं आप?
1: सिलाई का काम करते हैं।
0: ओके, नए नए डिजाइन के कपड़े बनाती हैं आप?
1: जी।
0: बहुत अच्छी बात है मैम। बताइएगा, आज आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ओहो, बड़ा शर्मा रही हैं आप तो, क्या बात है। हाँ,
1: नहीं तो, शर्मा तो नहीं रही,
0: और मुस्कुरा भी रही हैं।
1: खुश है हम।
0: खुश है, ओके। बताइएगा क्या फरमाइश है आज मैम, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: ये दिल आशिकाना मूवी का तारीफ तेरी अल्लाह अल्लाह ये वाला सॉन्ग सुनना।
0: ठीक है, ये वाला गाना आपको सुनवा देते हैं और खुश हो जाइए आप। ओके, मोस्ट वेलकम मैम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ट्रैक एंड मैं लौट कर आती हूँ। तब तक आप भी जल्दी से कॉल लगाइएगा, मुझे पता है आप ट्राई कर रहे हैं। आपका कॉल लग जाएगा, बस एक बार और ट्राई करूँ।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी आपने ये ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी दिल आशिकाना से। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, जय श्री राम।
0: जय श्री राम। आपको भी बताएगा, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया, मैं बबलू सैनी ग्राम तुलेनपुर पैतल नगरी से बोल रहा हूँ
0: जी। बताएगा, आज आए हुए हैं आप महाराष्ट्र से?
1: जी जी, अभी गए नहीं, रक्षाबंधन पे आए थे।
0: अच्छा, राखी पर आए थे। ओके
1: जी,
0: कैसा लग रहा है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ?
1: काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाओ मत।
0: जब एक बार घर चले जाते हैं ना तो फिर काम पर जाने का मन नहीं करता, बट जाना पड़ता है, मजबूरियां हैं, जिम्मेदारियां हैं।
1: जी जी
0: जी। बताएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप सब?
1: आज अपने दोस्त के लिए गाना सुनना चाहेंगे, दुर्गेश सैनी के लिए। कोई भी दोस्त के ऊपर गाना प्ले कर देना।
0: अच्छा ठीक है, ये एक प्यारा सा गाना हम आपको सुनवाते हैं। आपने कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए फर्स्ट सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक एंड मैं लौट कर आती हूँ। तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक किशोर कुमार जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी आराना से। और दोस्ती का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है। सच्ची दोस्त भी हर किसी को नहीं मिलते हैं, जिनको मिलते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार
0: जी। नमस्कार आपको भी। क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सुरंग जिला विदिश मध्य प्रदेश।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ सर। बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: फिल्म का नाम है औजार, कुमार सानू का आवाज में, आपको शादी आप चला देना।
0: ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: जी धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक कुमार सानू जी की आवाज़ में। और आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं ना, तो हमें जल्दी से कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत।

दोस्तों अभी आपने सुनाया प्यारा सा ट्रैक उदित नारायण जी साथ में कुमार सानू जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। चंदना दीक्षित जी की भी बहुत ही खूबसूरत सी आवाज और म्यूजिक डायरेक्टर थे अनु मलिक जी। और आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं ना एवरीवन, तो हमें जल्दी से कॉल लगा सकते हैं आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जब तक आप हमें कॉल लगाते हैं तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई पंजाबी ट्रैक, बहुत ही ब्यूटीफुल, अखिल जी की आवाज में। और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, हेलो।

0: क्या नाम है आपका?
1: कपिल मैम।
0: कपिल
1: जी,
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं कपिल आप?
1: मुरादाबाद से मैम।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम फरमाइश ही हमारा दोस्त बताएगा, लो बात करिए। मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार, बताइएगा सर क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश हमारी है फूल फूल में भेजो, खत में लिखो।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवा देते हैं गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। चलिए एवरीवन सुनते हैं ये ट्रैक और लौट कर हम वापस आने वाले हैं। जब तक आप ही कॉल लगाना, नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप टेंशन ना लो नंबर की। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और सुनिएगा एक खूबसूरत ट्रैक कुमार सानू साथ में लता जी की आवाज़, बहुत प्यारा गाना है।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक कुमार सानू और साथ में लता मंगेशकर जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा ट्रैक। एंड आप भी ऐसे ही कोई खूबसूरत गाना सुनना चाहते हैं ना अपने पसंद का, तो हमें जल्दी से कॉल लगा सकते हैं आप। हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9837896896। और ये गाना सुना अभी आपने फ्रॉम द मूवी सलमा भी दिल आ गया। और अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से निखत फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा निखत फातिमा जी, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? वहाँ पर सभी लोग कैसे
0: हैं? यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा आपके परिवार में सब ठीक है?
1: हाँ जी, यहाँ पर भी सभी ठीक है।
0: जी बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हो आप?
1: जी मैं कच्चे धागे मूवी की कव्वाली सुनूंगी, इस चाने करम का क्या कहना।
0: ओके, और ये हाँ
1: स्पेशली है मेरे चाचा चाची और दादी जी को डेडिकेट रहेगा, कल उम्र पे जा रहे हैं ना वो।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, तो सुनवाते हैं गीत आपको।
1: हाँ जी, और मेरे साथ में मेरी भांजी सारा फातिमा, वाइफ फातिमा और मेरी सिस्टर माहिर फातिमा।
0: ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा ट्रैक।
1: ओके थैंक यू जी,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं शानदार सा ट्रैक, और आप ही मुझे कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोबाइल नंबर मैं आपको अकीन बताती हूँ, 98 3 6 96 896।

0: मैं जीना चाहता हूँ बाबा, क्योंकि मैं इसे बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। अम्मी हमेशा कहती है, तू जहां जहां चलेगा खुदा साया बनकर तेरे साथ होगा।
1: बड़ी जीत है, क्योंकि इतना सब कुछ सहने के बाद भी

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का तो हमें जल्दी से कॉल लगाइएगा। अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: गाना सुनना है।
0: गाना तो सुनवाएंगे लेकिन नाम तो बताइए अपना।
1: डोरेमोन।
0: डोरेमोन
1: जी सर।
0: अच्छा बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गाना सुनना चाह रहे हैं।
0: गाना हम आपको सुनवाएंगे लेकिन बताइए तो सही, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप? सब
1: शोले फिल्म का।
0: शोले मूवी का कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हसीना रूठ जाए। हसीना जब रूठ जाए।
0: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये ट्रैक और लौट कर हम आते हैं। तब तक आप भी हमें कॉल कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। ये है आपके अपने शहर का आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी, और मेरे साथ जुड़े हैं एक लिसनर, उनसे बात कर लेते।

0: जी बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
1: नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी।
0: हाँ जी
1: ख्वाब तुम्हारी रखी थी बोले यूं रूठो ना हसीना मेरी जान निकल जाएगी, यूं रूठो ना हसीना मेरी जान निकल जाएगी। गायक मोहम्मद रफी और ये शशि कपूर जी का फिल्म गाना पुराना थी बहुत अच्छी थी।
0: ओके सुनवाते हैं गाना आपको। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सर।
1: जी मैडम तो क्या मैं होल्ड में रहूं कि डायरेक्ट गाना सुना रहे
0: हैं? आप लाइव हैं सर, ऑन ईयर हैं आप।
1: लाइव में रहूंगा ना?
0: हाँ जी ऑन ईयर है, अब आप सुनिएगा ये गाना ठीक है।
1: जी मैडम तो मैं होल्ड में रहता हूँ।
0: होल्ड पर नहीं रहना है, आप लाइव हैं, अब आपकी बातचीत हो रही है सर ऑन ईयर। हाँ अब आप ऑन ईयर गाना सुनिएगा ठीक है। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए भी फन सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक लौट कर आती हूँ मैं अभी।

तो दोस्तों अभी आपने ये सुना बहुत ही प्यारा सा ट्रैक मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी जो 1966 में आई थी। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश जी सर अपना नाम बताइएगा।

0: मैं ठीक हूँ सर, अपना नाम बताइएगा, आप कैसे हैं?
1: जी मोहम्मद रिजवान बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सर, और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी सिलसिला।
0: जी बताइएगा आप, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: वो आजूगा फिल्म का गाना बताया था रीना जी को।
0: रीना जी को नहीं, आपने खुशी जी को ही बताया था।
1: आज रीना जी छुट्टी पे हैं क्या?
0: सर मंडे टू फ्राइडे मेरा ही शो आता है, सैटरडे में रीना जी होस्ट करती हैं।
1: अच्छा
0: हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना, इन्होंने रिक्वेस्ट की है, मैं माटी का गुंडा तू सोने की गुड़िया, बहुत प्यारा गाना है, सुनते हैं।

0: वैसे जिद पे तो हमारी श्रोता जो हमारे लिस्टर हैं वो भी यू नो अड़ जाते हैं कि आज तो हम कॉल लगा कर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और आपका कॉल लग भी जाता है क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ आप कॉल लगाते हैं। तो चलिए अपनी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते आदाब, कुछ
0: आपको भी नमस्ते आदाब। मैं ठीक हूँ सर, आप बताइएगा आप कैसे हैं और क्या नाम है आपका।
1: मैं भी फर्स्ट क्लास और अच्छा हूँ, आपका प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, म्यूजिकल प्रोग्राम है मुरादाबाद का
0: जी,
1: तमाम लिसनर का फेवरेट प्रोग्राम।
0: आप अपना नाम तो बता दीजिएगा।
1: मेरा नाम परिचित है सभी लिसनर, शायद कभी कभी ये जुड़ता हूँ और आप तो परिचित होंगे, मोहम्मद अय्यूब प्रयागराज कुंभनगरी से बात कर
0: जी। बताइएगा सर कैसा मौसम है प्रयागराज का, अभी बारिश है या बंद है।
1: प्रयागराज में बारिश बहुत अच्छी चल रही थी एक डेढ़ महीने से, अच्छी खासी इतनी तबाही तो नहीं आई हमारे इधर। अभी हाल फिलहाल में बाढ़ आई थी, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी संगम घाट पर जो है लेटे हुए हनुमान जी, बड़े हनुमान जी हैं, उनका जो है लोग दर्शन बहुत दूर दूर से करने आते हैं
0: जी।
1: तो गंगा मैया उनको तीन बार नहवा चुकी हैं, अभी भी पानी वहाँ पर स्थिर है, बहुत दिव्य मौसम है, अच्छा मौसम है, लोग आ भी रहे हैं,
0: हम भी जाएंगे वहाँ पर।
1: आप लोग को आना चाहिए मेले में, आ रहा है 2 महीने बाद मेला लग रहा है, तब आइए आप लोग।
0: जी जी जी बिल्कुल आएंगे सर। बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज।
1: सलमान खान और जरीन फिल्म से वीर,
0: हाँ जी,
1: उसमें गाना है रात रहे अली खा की आवाज में है, सुरीली अखियों वाली सुना है तेरी अखियों, तो गाना है ना वही गाना, साजिद वाजिद का म्यूजिक है।
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं ट्रैक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर।
1: 2 लाइन कह दें अगर आपको इजाजत हो तो।
0: जी इरशाद।
1: प्यार तो जिंदगी का एक अफसाना है, इसका अपना ही एक तराना है, सबको मालूम है कि मिलेंगे सिर्फ आंसू, पर न जाने क्यों दुनिया में हर कोई इसका दीवाना है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं आपकी सर।
1: खुशी जी गाना सुनवाइए, अच्छी गाना है।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: खासकर आपको भी और तमाम लिसनर भाई साहब को।
0: ठीक है सर, एंजॉय कीजिएगा आप भी और तमाम श्रोता भी इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना और मुझे दीजिएगा इस ट्रैक के साथ जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय बाय।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM।

0: देना हमारे हाथ में नहीं है, बड़ी बड़ी एजेंसीज ये काम करती हैं। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय अगर मैं किसी को कहूं तो रवि गुप्ता उन चुनिंदा कॉमेडी के आर्टिस्टों में से एक है जो टॉप 5 में आते हैं इंडिया में।
1: हाँ जी।
0: और नंबर 1 है उस कैटेगरी में जो सबसे क्लीन कॉमेडी करते हैं। मैंने आज तक उनकी जितनी वीडियोस देखी मैंने उन्हें कभी भी किसी तरीके के अब्यूजिव लैंग्वेज में नहीं देखा। मुझे ये चीज उनकी इतनी भाई कि हमने कहा कि अगर हम किसी को लेकर आएंगे मुरादाबाद तो रवि गुप्ता जी को ही लेकर के आएंगे।
1: ओके, मतलब ये आइडिया आपने पहले से ही सोच रखा था कि रवि गुप्ता जी को ही मुरादाबाद में लेकर आना है।

0: जी मैम, जी जी जी
1: ओके। कल मुरादाबाद में सर पंचायत भवन में होने वाले ये शो को, यानी कि इसका अनुभव क्या रहने वाला है कल के लिए? अगर मैं बात करूं तो अभी से ही तैयारियां हो गई होगी और साथ ही साथ, हाँ जी
0: हाँ जी बताएं बताएं,
1: और साथ ही साथ टिकट्स है वो भी बुक हो गए होंगे बहुत से, और अभी बाकी होंगे जो आप बुक करने वाले हैं, तो आप उनके बारे में बताइए थोड़ा सा।
0: मैम टिकट्स तो इस समय हॉट सेलिंग पे चल रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी कुछ कैटेगरीज खत्म होने वाली है। हमारी दो कैटेगरीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, दोनों शोज की एक एक कैटेगरी, और एक कैटेगरी खत्म होने की बिल्कुल उस पोजीशन पे है कि वो खत्म होने वाली है। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मुरादाबाद की जनता का, और उनका एक्सपीरियंस मेरा अपना मानना है कि बहुत बढ़िया रहने वाला है। एक बढ़िया मजेदार फैमिली शो होने वाला है ये कल का इवेंट हमारा।
1: तो सर कल के शो के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, टाइमिंग क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, और किस टाइम तक दर्शक वहां पर पहुंच सकेंगे?
0: मैम एक टाइम 4 बजे का है, ये लगभग लगभग 2 से 2.25 घंटे का शो रहेगा, तो आप ये मान के चले कि 4 से 6 बजे का एक शो रहेगा, दूसरा 8 बजे से 10 बजे का एक शो रहेगा। ये हमारे टाइमिंग रहेंगे, वेन्यू हमारा पंचायत भवन है।
1: सर इस शो के अलावा कोई और सेगमेंट है जो सरप्राइज हो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे?
0: मैम कुछ सरप्राइजेस हैं, कुछ पॉसिबली सरप्राइज क्वेश्चंस, गेम्स, कुछ भी हो सकता है, ये हमारे कल रहेंगे। और क्योंकि ये सरप्राइजेस हैं इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं।
1: ओके, रिवील नहीं कर सकते, राइट?
0: हाँ जी हाँ जी, तो ये है। बाकी हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर्स हैं किया, AU फाइनेंस बैंक और रायसेंस, और हमारे को पार्टनर हैं शिव गंगा मार्बल्स।
1: ओके,
0: तो इन सब का भी कल आपको अच्छा नए नए इनके प्रोडक्ट्स और इन सब को देखने का एक अच्छा मौका मिलेगा वहां पर।
1: सर एक मैसेज आया मेरे पास जस्ट अभी, तो उनका कहना है कि टिकट्स हम कहाँ से बुक कर सकते हैं, क्या किस पर कोई डिस्काउंट वगैरह जैसे हो मिल जाए, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि 4 बजे से, वो तो सर देखिए 200 है तो वो डिपेंड करता है कि कौन कितने बजे का शो अटेंड करना चाहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैम हाँ जी आप बताएं
1: टिकट्स के बारे में आप बता दीजिए जरा श्रोताओं को।
0: मैम हमारे पास इस समय जो बची हुई है वो 4 कैटेगरीज बची हैं, और गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड एंड फैन। इसमें गोल्ड हमारी ऑलमोस्ट फ्री फिनिश होने वाली है, आखिरी के कुछ ही टिकट्स बचे हैं। प्लेटिनम डायमंड भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा टिकट्स हमारे पास नहीं बचे हैं। तो जिस किसी को भी टिकट्स लेने हैं प्लीज जल्दी बुक करें, बाद में हम अपने आप को सॉरी फील करेंगे कि आप हमारे तक आए और हम आपको नहीं प्रोवाइड करा पाए। और टिकट्स आप बुक माई शो से भी परचेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे दो नंबर हैं 9897260292, इस पे भी बुक कर सकते हैं, और 8006167171, इन दोनों से भी बुक कर सकते हैं।
1: ओके सर, और सर जिन्होंने टिकट अभी बुक नहीं की है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ताकि वो और भी ज्यादा मतलब जल्दी से टिकट्स बुक करें?
0: दोस्तों साथियों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी बुक कर लो, ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत छोड़ो। बहुत ही बड़ा, बहुत ही बढ़िया इवेंट होने जा रहा है मुरादाबाद में, और जो नहीं आएगा वो सच में बाद में मलाल करेगा कि यार क्यों मैं नहीं गया, अपने परिवार के साथ एक अच्छी खुशहाल शाम क्यों नहीं बताई मैंने लोगों के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने ये तो। और सर अभी भी डिस्काउंट के बारे में सब पूछ रहे हैं। एक और मैसेज आ गया है, ये मैसेज यानी कि मुरादाबाद से ही है, इनका नाम शिवानी है।
0: अच्छा शिवानी जी, आप 9897260292 पे संपर्क करिए, रेडियो FM की तरफ से स्पेशल 10% डिस्काउंट।
1: अच्छा जी, हमारी तरफ से 10%। चलिए, मतलब जो भी आपसे अभी कनेक्ट करेगा और जो मुरादाबाद FM रेडियो का नाम लेता है तो उनको 10% की छूट मिलेगी।
0: जी मैम, जी मैम।
1: ओके, तो सर आप लास्ट कुछ कहना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: हम बस, मैं और मेरी टीम उदित और शिवांश यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए इवेंट को एंजॉय करिए, मजा लीजिए, बहुत अच्छी फूडिंग, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा कॉमेडी का ये शो हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा, और साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी रीना जी और उनकी पूरी टीम भी रहेगी रेडियो एफएम की, तो वो भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बनेगा, एक अच्छा खुशनुमा माहौल बनेगा जिससे सब लोग एंजॉय करें।
1: थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा नाम ले लिया अभी।
0: अरे मैम, आपने हमें शो पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
1: सर आप ये बताइए, पहले कनेक्ट होके हमारे रेडियो के साथ आपको कैसा लगता है?
0: मैम कनेक्ट होके तो बाद में बताऊंगा, पहले आपसे मिलके आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है।
1: थैंक यू सो मच सर, और मुझे भी आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और बाकी कल मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, शो एंजॉय करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सर, एक और मैसेज आ गया है। देखिए जो फूडी लोग होते हैं ना भाई, इस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं कि सर जो वहाँ पे वेन्यू मतलब खाने के लिए कुछ रहने वाला है, वो फ्री में है या पेड है?
0: मैम फूड सारा पेड होगा, लेकिन बहुत ही नॉमिनल डिस्काउंटेड प्राइस पे रहेगा। हम इवेंट में बुला रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे मुरादाबाद की खाओ गली, चटोरी गली बहुत फेमस है, लोग अगर कंपेयर करना चाहें तो उस चटोरी गली के प्राइस के आपको खाना मिलने वाला है, और बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छा टेस्ट के साथ आपको मिलने वाला है। आइए और फूड का भी मजा लीजिए।
1: सर विक्की सागर जी का मैसेज आता है कि बिना पास के एंट्री मिल सकती है या फिर नहीं मिलेगी?
0: नहीं मैम, बिना पास के एंट्री नहीं मिलेगी, और पास जैसा कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टिकट ही है।
1: जी तो चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू
1: सर, बाय।
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
1: तो चलिए श्रोताओं, आपने ढेर सारी बातें हमारी सुनी, और कल की अगर मैं बात करूँ तो कल यानी कि रवि गुप्ता जी कॉमेडी शो जो होने वाला है पंचायत भवन में, तो अगर अभी तक आपने टिकट्स बुक नहीं करे हैं तो बुक माई शो से जाइए, आप टिकट्स बुक करिए। आपको अगर आप रेडियो के नाम लेते हैं कि भैया हम रेडियो हमने सुना है और हम रेडियो सुनकर ही आपके पास हमने मैसेज किया है, तो आप हमें आपको 10% की डिस्काउंट मिलने वाला है, आप आराम से बुक कर सकते हैं और कल का जो शो है एंजॉय कर सकते हैं। कल का जो शो होने वाला है यानी कि एक तो 4 बजे है और दूसरा 8 बजे है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा शो अटेंड करने वाले हैं, लेकिन दोनों शो इन्हीं का होने वाला है, रवि गुप्ता जी का ही होने वाला है। तो अगर आप कॉमेडी के शौकीन हैं तो मैं कहती हूँ जी लेट मत कीजिए, क्योंकि आज आज का समय है हमारे पास, इसलिए जल्दी बुक करिए, और बुक करेंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। और साथ ही साथ जो नंबर है जो सर ने बताया है, मैं वंस अगेन एक बार और रिपीट करती हूँ आप सभी के बीच, जो जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं। नंबर है 9897260292, ये नंबर है, आप बुक कर सकते हैं। वंस अगेन एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, नंबर 9897260292 पर आपने बुक करना है। अगर आप बुक माई शो से नहीं बुक कर पा रहे हैं तो आप यहाँ कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको टिकट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ प्लस आप रेडियो का नाम लेते हो, आपको पता है कि 10% का आपको डिस्काउंट डेफिनेटली मिलने वाला है। तो मैं कहती हूँ जी इंतज़ार किस चीज़ का करना है, क्योंकि भैया रवि गुप्ता जी आ रहे हैं, और आपके लाइफ में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, भैया जो डिप्रेस हो चुके हैं ना, जिनकी ज़िंदगी में हंसी ख़त्म हो चुकी है, तो वो ज़रूर इस शो को अटेंड करें, बहुत मज़ा आने वाला है। यानी कि शो खत्म हो जाएगा लेकिन आपके पेट का दर्द खत्म नहीं होएगा, क्योंकि हंसते हंसते पागल हो जाएंगे आप। तो चलिए फिलहाल हम एक गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होने वाली हूँ आप सभी के साथ, और करेंगे यहाँ पर क्या, अरे ढेर सारी बातें करेंगे, और साथ ही साथ आप मैसेज करिए, अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको इधर से भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि उनके तक हम मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे और आप टिकट्स है वो ले सकते हैं, और कल का जो शो है एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, तो आप जाइए, फैमिली के साथ जा सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं उनका शो। फिलहाल हम गाना के साथ साथ पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम है, पहले वो एंजॉय करेंगे।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: और आज की तारीख यानी कि 7 सितंबर और इवनिंग मस्ती शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। साथ ही साथ देखिए श्रोताओं, यानी कि अगर बात करूं गैस बुकिंग की, क्योंकि पहले देखा गया था बीच में महंगाई की वजह से बुकिंग की जो डेट है वो बढ़ा दी गई थी, कितने लिमिट से इतने तक ही आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अब आपके पास एक और खुशखबरी है। अब वो खुशखबरी क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 1 अक्टूबर से क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने 1 अक्टूबर से पहले ये चीज़ें नहीं कराई हैं तो करानी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप सोना खरीदना चाह रहे हैं तो भैया करा लीजिए, 40,000 रुपये हो चुका है सस्ता सोना। चांदी में भी यानी कि गिरावटें आ गई है, 1.83 लाख तक टूटा है चांदी भी। तो आप जाइए और भैया सोना चांदी जो भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, बाद में पता चले कि सस्ता जो हुआ था वो डबल महंगा हो गया तो ये रिग्रेट रहेगा आपको। इसीलिए रिग्रेट ना रहे तो आप जाइए और आराम से सोना चांदी जो भी कुंडल वगैरह जो भी आप बनवाना चाहते हैं बिल्कुल बनवा सकते हैं। साथ ही साथ देश भर में 11 तारीख तक क्या बताया जा रहा है क्या नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे। और राशन कार्ड के बारे में 1 अक्टूबर से क्या चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपने ये चीजें नहीं चेंज करवाई तो आपका राशन कार्ड बंद हो सकता है। चल

गर्मिया। बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। और समय की बात करूँ तो 5:39 हो चुकी हैं, और साथ ही साथ सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो बीच में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि क्योंकि गैस की कमी की वजह से महंगाई बढ़ी थी, और उस टाइम ये कह दिया गया था कि अब अगर आप कोई भी सिलेंडर बुक करता है तो उसको यानी कि मैक्सिमम उसके बीच का जो ड्यूरेशन होना चाहिए, जो टाइम होना चाहिए, यानी कि 45 दिन के बाद ही अगर दूसरा सिलेंडर आप बुक करते हैं तो 45 दिन का आपने इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि अब आपको 45 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो उस ड्यूरेशन को ना कम कर दिया गया है, और साथ ही साथ हो चुका है 45 दिन, अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 25 दिन के बाद ही आप सिलेंडर बुक कर पाएंगे। जी, पहले 45 दिन इंतज़ार करना पड़ता था, अब सिर्फ 25 दिन में ही, 25 दिन के बाद आप अपना सिलेंडर नया बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे यानी कि जो राशन कार्ड भैया बोला जा रहा है कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं कराई है तो आपकी जो राशन कार्ड है वो बंद हो सकती है 1 अक्टूबर से, इसीलिए पहले ही बताना बहुत ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी फिलहाल राइट नाउ आप घर पर सुन रहे हैं या फिर ऑन द वे हैं, ट्रैफिक में हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना है हमें, बस मैसेज करना है आपने, नंबर है 9837896896 पर, आपकी अपनी दिल की बातें हैं, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैसेज करें, बल्कि अपना वॉइस मैसेज भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि भैया आपकी प्यारी वॉइस ना है क्या ही बताए, बड़ा ही अच्छा है। फिलहाल हमारे पास कुछ मैसेज आते हैं, उनको शामिल करेंगे। अगर मैं मैसेजेस की बात करूं तो दीपक जी हमारे साथ मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग जी। और अभी आपने रवि गुप्ता जी के शो के बारे में बात करी है जो स्टैंड अप कॉमेडी हैं, तो मैम हम भी वहाँ आपको मिलने वाले हैं और मैंने भी टिकट्स बुक कर लिए हैं, क्या बात है जी, बिल्कुल अगर मैं वहाँ पर आई तो डेफिनेटली आपसे ज़रूर मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड इवनिंग रीना जी, कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं, और ये गाना सुनना चाहते हैं, कितनी लंबी है कहानी मेरे यार दी, यानी कि उड़ारिया मूवी ये गाना सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली ये गाना हम आपको सुनवाएंगे। हरिओम महेश्वरी मुरादाबाद लाइन पार से ये कनेक्ट होते हैं, तो आप मैसेज करते रहिए, अपना प्यारे प्यारे संदेश हमारे साथ भेजते रहिए। फिलहाल आप सभी के लिए एक और शानदार गाना जो कि हरिओम जी की रिक्वेस्ट पर है, इस गाने को हम प्ले करेंगे और उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होंगी और करेंगे राशन कार्ड वाली जो बातें हैं, आखिरकार क्या है जिससे अगर आप अपडेट कराते हैं तो आपका राशन कार्ड है वो बंद नहीं होएगा, अदरवाइज़ अगर आपने अभी तक कुछ नहीं कराया तो भैया कराना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल गाना

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, चांद सफारी। अय हय, मतलब कुछ गाने ना, सच बताओ, बड़ा ही शानदार वाला होता है, बहुत ही सुकून वाला गाना होता है, जिसे सुनकर ना दिल गार्डन गार्डन ही हो जाता है। और साथ ही साथ समय की बात करूँ तो समय हो चुका है 5:54 और आज की तारीख 7 सितंबर। और अब हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड के ऊपर। जी बिल्कुल, यानी कि भैया देखिए, 1 अक्टूबर या 1 तारीख आते ही हर चीज़ का जो नियम है वो चेंज होने लग जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

हाँ जी, अगर एक तारीख की बात करूं तो ये कहा जा रहा है राशन कार्ड के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। अब ये है कि किनको इसका ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, यानी कि जिन लाभार्थियों ने पिछले 6 महीने से राशन नहीं उठाया है उनका राशन कार्ड है वो साइलेंट माना जाएगा, यानी कि उसको बंद कर दिया जाएगा। जब मतलब जब आपने 6 महीने नहीं उठाया तो आपका जो राशन कार्ड है वो सील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके पास टाइम भी मिलता है 21 सितंबर से महज तारीख, यानी कि साइलेंट आधार कार्डकों के लिए राशन कार्ड उठाने की आखिरी तारीख 21 सितंबर को रखी गई है। तो आप 21 सितंबर को अपना राशन ले सकते हैं, या फिर इस बीच मिलती है तो आप जरूर अपना राशन उठाएं। और 1 अक्टूबर से राशन बंद, साइलेंट राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्कर्ष किया जाएगा, इसके बाद राशन मिलना बंद हो जाएगा। अगर आपका जो राशन कार्ड है अगर आपने 6 महीने से नहीं उठाया है तो अगर आप बीच में राशन मिलता है तो जाइए और राशन जरूर लेकर आइए। हालांकि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंच सके। जिनको नीड ही नहीं है, जिसको इसको ज़रूरत ही नहीं है, उनके जो राशन कार्ड है वो सील कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका राशन कार्ड बंद भी हो जाता है तो उसके बाद आप चाहते कि भैया ये बंद हो गया हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी गलती की वजह से, तो अगर आप चाहते कि भैया इसको दोबारा चेंज हम चालू करवा सकें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, राशन कार्ड दोबारा चालू करवाने के लिए EKYC करवाना ज़रूरी होगा। और इसके लिए आपको समय भी मिलेगा, 3 महीने का समय मिलेगा। और समय की जो तारीख होगी 1 अक्टूबर से लेकर 1 जनवरी 2027 तक आपको समय दिया जाएगा। तो मैं कहती हूँ जी, बंद होने क्यों देना है। अगर आपने किसी गलती की वजह से, या फिर कोई काम में बिजी हो, या फिर आप कहीं घूमने चले गए हो और 6 महीने से आपने राशन नहीं उठाया है, तो अभी आपके पास टाइम है। 21 सितंबर को फिर से राशन दिया जाएगा, राशन बांटा जाएगा, तो आप वहाँ से अपना राशन उठाइए और अपना राशन कार्ड है वो बंद होने से बचा लीजिए, ताकि आपको कोई भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मोस्टली हर कोई अपना राशन कार्ड उठा ही लेता है, 1-2 बार छूट जाता है, लेकिन 6 महीने तो कोई छोड़ नहीं सकता है ना। बाकी जिन्होंने छोड़ा ये बात उनके लिए है। तो आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर कनेक्ट होंगे मैं आप सभी के साथ। फिलहाल के लिए गाना। और भैया देखिए, मैंने आपको बोल ही दिया है, कल रवि गुप्ता जी जो स्टैंड अप कॉमेडी है वो कल, यानी कि अपने मुरादाबाद पंचायत भवन में आने वाले हैं, अपना जो कॉमेडी शो है वो करने वाले हैं, इवेंट होने वाला है। टाइमिंग रहेगी 4 बजे को, 1 रात के 8 बजे। तो आप चाहते हैं एंजॉय करना इवेंट, उनके शो में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। बुक माई शो पर जाइए और अपना टिकट्स बुक करिए। अगर आप हमारा रेडियो का नाम लेते हैं तो आपको मिलती है 10% की छूट। तो आप इसका आनंद उठाइए और एंजॉय करिए शो। अगर आप सोच रहे कि भैया हम वहाँ से नहीं बुक करेंगे, हम नंबर से ही हो तो कोई मतलब कोई नंबर हो तो हम वहाँ से बुक कर सकते हैं, तो नंबर भी बहुत आसान है, आपको नोट करना पड़ेगा। मैं आराम से बोलूँगी, 9897262922 ये नंबर है, आप बुक कर सकते हैं और कल का शो है जो एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो भैया आपको रिग्रेट होगी कि भैया हमने क्यों नहीं इनका शो अटेंड किया, तो इसलिए ज़रूर करिए। और ये गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं। कभी

0: ਸੋਹਣਿਆ।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं। और समय की बात करूं तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, 6:09 हो चुके हैं और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है। और अब हम बात करने वाले हैं यानी कि वेदर अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है 11 सितंबर तक पूरे देश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो इसमें क्या करना है भैया, देखिए जगह जगह बारिश आ सकती है और कहीं कहीं ऐसे इलाके भी हैं जहां बारिश बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इस टाइम फसलें भी भैया आदि गेहूं धान तो बहुत जगह कटने भी लगे हैं और बहुत जगह फलियां भी आ गई है, तो किसानों के लिए भी बहुत मतलब दुखद की बात है कि फसल होने के बाद अगर बारिश होती तो फसल सारा खराब हो जाता है, यानी कि पूरी मेहनत पानी में मिल जाती है। तो इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है और साथ ही साथ 11 सितंबर तक बारिश बताया जा रहा है तो उसका भी ध्यान रखना है। और मिलेंगे, प्यारे प्यारे मैसेज भी आ गए हैं। एक और म्यूजिकल ब्रेक के बाद मिलती हूँ आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें और कड़क अपडेट भी लेकर आने वाली हूँ और कड़क अपडेट के साथ साथ कड़क म्यूजिक भी।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मलूक सोहणिया,

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

जी गर्ल्ड वाली गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो देखिए 6:00 यानी कि 22 मिनट हो चुके हैं और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्टेड श्रोता हो। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है हनुमान अंश मूवी के बाद देखिए उसका दूसरा पार्ट तो आने ही वाला है, साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि खाटू श्याम जी के ऊपर भी अब मूवी बनाई जाएंगी। तो देखिए ये हम हिंदुस्तानी हम सनातनी हैं और मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी मूवी बननी चाहिए ताकि देखिए ये ऐसी जो मूवी होती है ना आप फैमिली मेंबर के साथ इंजॉय कर सकते हो। सोचिए जब आप पूरी फैमिली के साथ मूवी देखने जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, दोस्तों के साथ एक अलग ही खुशी होती है, लेकिन जब फैमिली जाती है ना तो उसका जो रौनक उसका जो खुशी होती है ना मतलब वो नेक्स्ट लेवल वाली होती है। तो फैमिली के साथ आप ऐसी मूवी देख सकते हैं। फिलहाल आप बता सकते हैं कि अगर अभी तक आपने हनुमान अंश मूवी नहीं देखी है तो भैया एक बार जरूर देख कर आइए, क्योंकि ये मूवी और अकेले मत जाइए, अपने फैमिली वालों के साथ जाइए मूवी देखने के लिए, तभी आपको अच्छा लगेगा। अपने बड़े बुजुर्ग हर किसी को मूवी दिखाइए, हर कोई इस सनातनी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इस जितने भी देखिए हर जगह प्रचार करनी चाहिए। और हनुमान जी की जो शक्ति है भैया उसकी तो बात ही क्या है, एक हनुमान जी ऐसे अजर अमर है जो धरती पर भी रहते हैं लेकिन दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि हमारे मन में ना किसी किसी के प्रति भी अलग भावनाएं होती हैं, हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, भेदभाव करते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उसके लिए ना हमें मन हमारा चंचल होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, तभी आपको भगवान दिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि 11 सितंबर को स्कूल कॉलेज बंद रहने वाले हैं, साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर है वो भी बंद रहने वाले हैं। तारीख नोट कर लीजिए 11 सितंबर को बंद रहने वाली है, यानी कि स्कूल कॉलेज और सरकारी दफ्तर। तो बल्ले बल्ले आज से ही है ना, आज तो छुट्टियां ही थी लेकिन अब 11 सितंबर को भी रहने वाला है। आखिरकार इसके पीछे की रीज़न क्या है बिल्कुल बताएंगे, जैसे अपडेट हमारे पास आता है आपके आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल कुछ मैसेज हैं उनको भी शामिल करते हैं।

हाँ जी, मैसेज की बात करूँ तो ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। मैम चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी, आज का मौसम बहुत ही औसम हो रहा है। ओके जी, प्रिटी मौसम है तो इंजॉय करिए। और ये लिखती हैं, एकादशी का पावन दिन खुशियों की सौगात लाए, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हर पल साथ निभाए। रीना मैम के जीवन में खुशी शांति यूं ही छाई रहे, हर दुआ उनकी पूरी हो, हर चेहरे पर मुस्कान आए रहे। और शुभ एकादशी रीना मैम, आपको भी अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरि नारायण विष्णु जी की जो महिमा है, जो कृपा है, आप सभी के ऊपर यूं ही बनी रहे। और साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ दिलीप जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से। गुड इवनिंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड इवनिंग सर। और साथ ही साथ आपने जो राशन कार्ड वाली बात कही है ना, बहुत अच्छी लगी है। और मैं भी कोशिश करूंगा, जो आसपास के हमारे रहने वाले हैं जिन्होंने अभी 6 महीने तक राशन नहीं उठाया, वो जितना हो सके उठाए ताकि उनके राशन कार्ड बंद ना हो। बिल्कुल जी सर, सही कहा आपने। अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो दी, कैसी हूं आप? बहुत अच्छे हैं जी। प्रीति हमारे साथ मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं। नेहा कक्कर की आवाज में गाना सुनना चाहती हूं। तो हमने आपकी फरमाइश पूरी करने वाले हैं जी। नेहा कक्कर की आवाज में आपको हम एक गाना सुनाएंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार वाला गाना है। और शाम का वक्त है और ये गल्ला ना होए, दो गल्ला ना होए तो बात ही अलग है। तो चलिए पहले दो गल्ला करते हैं, उसके बाद लेकर आते हैं आप सभी के लिए कड़क सवाल।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

तो बात कह लीजिए और दो बात सुन लीजिए और साथ ही साथ अपना मैसेज भी भेज दीजिए। हमारा नंबर है 9837896896 पर। और समय की बात करूँ तो 6:36 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं इवनिंग मस्ती शो में श्रोताओं। और समय हमारे पास 6:36 और आज आप सभी के लिए मैं कड़क सवाल लेकर आ गई हूँ, जो कि भाई सच बताऊँ तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना है, बस इतना ही इनफ है और उसके बाद आप आंसर है वो आसानी से बता सकते हैं। तो क्या कहा आपने, पूछ लिया जाए। चलिए हम पूछते हैं आपसे आज का कड़क सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पहनते भी हैं और खाते भी हैं? बस थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। और आपने कहाँ मैसेज करना है, मैं नंबर बताती हूँ 9837896896 पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम पहनते भी है और खाते भी है। और खाने की बात करूँ तो जब जुखाम खांसी हो जाता है ना, जब सबसे ज़्यादा ये खाया जाता है, चाय में डालकर और शहद के साथ मिक्स कर भी खाया जाता है। तो आपने बताना है अब कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम पहनते भी है और खाते भी हैं। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बाकी आप सोचिए। एक और गाना आप सभी के बीच बहुत ही कड़क वाला।

0: जाना है
1: पर पापा।
0: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
6: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
5: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापान

कि जो बर्फ है उसका आगमन हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर बहुत ही जल्द ठंड भी पड़ने वाली है। साथ ही साथ भाई हम भी इधर यही चाहेंगे कि अब देखिए दो चार एक वन वीक से लगातार बारिश थी यहाँ भी, तो मौसम बिल्कुल एकदम मस्त वाला था। रात को भी पंखे में भी ठंड लगती थी, लेकिन अब जैसी बारिश थम जाएगी 2 दिन 3 दिन, इतनी कड़ाके वाली धूप निकलेगी ना, तो देखिए फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ बस अभी से ही हल्की हल्की ठंडी ठंडी ठंड शुरू हो जाए। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं आप भी मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9823789 6। और आज का कड़क सवाल देखिए मैंने बहुत ही आसान वाला पूछा है, बहुत ही सिंपल वाला पूछा है, आपने थोड़ा सा आइडिया लगाना है और इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। यानी कि आज का कड़क सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पहनते भी है। बस इतना सा काम करना है आपने, यही सोचना है, बाकी और कुछ नहीं जी। बाकी राइट आंसर आपको पता है, आप जल्दी जल्दी मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर ये होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे देखिए मैसेज भी आ गए, कड़क वाले मैसेज भी आ गए, लेकिन अभी आपकी बारी है, आप थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए और हमें मैसेज भेजिए। आखिरकार एक बार और मैं रिपीट करती हूँ कि आखिरकार आज का जो कड़क सवाल पूछा है मैंने आप सभी से वो ये है, कड़क क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खाते भी हैं और पहनते भी हैं। चलिए पहले आज मैं आप सभी को पिन कोड कैलेंडर घुमा के लाती हूँ, आज से तेरी गलियाँ मेरी हो गई, मेरी गली आपकी हो गई, ये गाना सुनते हैं, उसके बाद आप सभी के मैसेज की बारी है। एक बार और आपके पास चांस है मैसेज करने के लिए कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम खाते हैं और पहनते हैं।

चलिए जी, फिलहाल घर मेरा और घर आपका बात एक ही है और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और सुन रहे हैं आप अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते। और आज का कड़क सवाल मैंने आप सभी से पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर हमारे पास किन का आता है। ये हमारे पास यानी कि हमारे साथ कनेक्ट होती है संतोष जी और इनका राइट आंसर आता है लौंग, जिसको पहनते भी है और खाते भी है। क्या बात है जी, इन्होंने सबसे पहले राइट आंसर पहुंचाया है, तो आप बनती है आज इवनिंग मस्ती शो के विनर। सेकंड बात करूं तो ललिता जी का राइट आंसर आया। नवनेश कुमार जी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, वेरी गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग सर, और इन्होंने भी राइट आंसर पहुंचाया है। अगले मैसेज की बात करूं तो इनका भी राइट आंसर आया है, लॉन्ग है। और एक ये ऐसी चीज है जिसको हम पहनते भी हैं और खाते भी हैं, और ये गाने की रिक्वेस्ट भी कर रही हैं मुझको, तुमको बारिश पसंद है और मुझको बारिश में तुम, तो आपने राइट आंसर पहुंचाया, तो ये गाना तो बनता है आपके लिए सुनवाने के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको ये गाना सुनवाऊंगी। रीना जी आपके सवाल का जवाब है लॉन्ग, जो नाक में पहनते भी है और इसको खाते भी है। जय श्री राम। रीना जी क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी जी, ग्राम कल्याणपुर पीतल नगरी से, और रीना जी आपके सवाल का जवाब होता है लॉन्ग। बिल्कुल जी, आपने सही कहा, राइट आंसर लॉन्ग ही है। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड इवनिंग, ये सिसवा दौरा से नईमुल अकरम जी कनेक्ट होते हैं, क्या हाल है रीना जी? बहुत अच्छे जी, राइट आंसर के साथ, और ये गाना सुनना चाहते। देखिए सर, अब मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट है, आपको अगर गाना सुनना होता है तो 6 बजे पहले मैसेज करा करिए, तब मैं आप सभी को गाने सुनवा सकती हूँ। अब मैं कहाँ से सुनवाऊंगी, देखिए 7 बजने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होगा। अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली जी, गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं आप। आज का राइट आंसर होता है लॉन्ग, मसाले में पाई जाती हैं, बिल्कुल जी, खाते भी हैं, और साथ ही साथ एक लॉन्ग वह होती है जिसको हम नाक में पहनते भी है। बिल्कुल सही कहा आपने जी, खाते भी है और पहनते भी हैं। और देखिए जी, आपको जो गाना सुनना होता है तो प्लीज पहली मैसेज करा करिए, इस टाइम मैं सुनवा नहीं पाऊंगी आपको, सॉरी। संजू जी का मैसेज आता है, हाय दी कैसी हैं आप? और जिस जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ऐसी कौन सी चीज जिसे हम खा भी सकते हैं पहन भी सकते हैं, वो है लॉन्ग। बिल्कुल जी, सही आंसर दिया आपने, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम एंड सेम जगह, करेंगे ढेर सारी बातें, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। अभी टेम्परेचर की बात करूँ तो 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है ये, और बाय, मिलते हैं हम कल।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Mixing in the house.

0: कैसे हाल चाल है। मेरा नाम आरजे आनंद है। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है अपने मुरादाबाद के स्टूडियो में। कैसे हैं आप? हाउ आर यू
1: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: जी सर, इट्स माय प्लेजर सर। प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: मैं डॉक्टर एसपी सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
0: ऑलराइट।
1: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का। और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
1: ये अमेजिंग है बिल्कुल, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
0: ऑलराइट। अच्छा, पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
1: हाँ, रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूँ।
0: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
1: नहीं, डेफिनेटली।
0: चलिए सर, चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई बड़े नॉटी होते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
1: सर बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो अभी दांत आए थे, 2 साल में 3 साल में खराब हो गए। तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है, वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं। तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती हैं, बॉटल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया। क्योंकि जब जब बच्चा रोता है मम्मी क्या करती है, बॉटल लगा देती है, और बॉटल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है और बॉटल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में कैविटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती
0: है। ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है सेशन में और आपको आ भी रहा होगा, तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में? पूछूं
1: ब्रशिंग का तरीका सभी के लिए बराबर है, छोटे बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे तो आप कॉटन से भी साफ करा सकते हैं। मतलब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी है कि अगर आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते, कॉटन या कपड़े से आप जो भी दूध चिपका है दांतों में उसको साफ कर दे दोनों टाइम।
0: कॉटन से मतलब नॉर्मली कॉटन लेके या कुछ यूज करना है?
1: नहीं, कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते।
0: ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा,
1: इजी हो जाता है जो बहुत छोटे बच्चे।
0: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस आई होप आपको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि 2 टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
1: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
0: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को, मुझे लगता है
1: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
0: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके दांतों की कैसे मतलब देखरेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
1: देखिए बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कम्प्लीट हो जाते हैं।
0: ओके,
1: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं।
0: ओके,
1: तो हमें ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते।
0: ओके,
1: पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है।
0: ओके,
1: जो हम लोग अवॉइड,
0: क्या बात है। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, आप ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब?
1: देखिए आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
0: करेक्ट
1: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है,
0: अब नहीं चलता है,
1: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं हम उनका ठीक से देखभाल करें। अगर कोई दांत इलाज समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। और अगर बाय चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए।
0: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है।
1: एग्जैक्टली।
0: ऑलराइट। अच्छा सर जी प्लीज टेल अस आप कुछ कह रहे हैं।
1: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं ठीक है तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं। और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं ज्यादा परमानेंट होते हैं और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में।
0: ओके अच्छा ओके। सो डॉक्टर साहब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दांतों का सबसे आम और कॉमन जिसे हम कह सकते हैं ना कौन कौन से वो रोग है और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
1: सर दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज।
0: ओके।
1: और आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है।
0: ओके।
1: और मतलब इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है इस वजह से उन्हें डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए।
0: ओके।
1: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है। डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता, मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है, बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है। और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है।
0: ओके डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारियां आपसे मिल रही है आज। इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बार और हमें पता नहीं होता, और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का, स्पेशली आज के जेंसी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
1: सर ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए।
0: ओके।
1: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है, टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है, ठीक है। आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे। खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते, बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है, उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा,
0: ठीक
1: है, बट आप खाइए, बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है, कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए। अगर आप
0: जी सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहीं पे, मतलब ब्रश करना डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के 7 दिन रात को भी करके सोना है?
1: डेफिनेटली।
0: ऑलराइट। जैसे कई लोगों का मिथ होता है भाई आज कर लिया सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया कल नहीं करूंगा तो क्या ही चला जाएगा,
1: ऐसा नहीं चलेगा।
0: ऑलराइट।
1: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से, अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है।
0: ऑलराइट। अच्छा जी चलिए सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को 5-5 महीने 6-6 महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
1: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज करते हैं, कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो 1 महीने में खराब हो जाता है।
0: ओके।
1: वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं, बट 6 महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं।
0: ऑलराइट चलिए, तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया। अच्छा मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं, और तो ये क्या सही बात है?
1: इट्स वेरी ट्रू। देखिए जो हमारे दांत का इनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है, बट अगर आप उस पे प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पे प्रेशर लगाएंगे तो दांत घिस जाते हैं। और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा ऐसे, जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआं होता था, कुएं पे जब रस्सी से पानी खींचते तो जैसे ग्रुप बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रुप बन जाते हैं।
0: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
1: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से।
0: ऑलराइट, मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
1: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में।
0: समझ,
1: उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता वो।
0: बिल्कुल
1: ठीक है, बास मेथड बोलते हैं, BASS बास मेथड।
0: ओके,
1: मतलब जिन लोगों को देखना है वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
0: अच्छा सर, कई बार जैसे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के नुस्खे, आप लौंग चबा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
1: सर, दांत में दो तरह से दर्द हो सकता है।
0: ओके,
1: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया और वो फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसा रह गया, तो जब वो खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है। ठीक है, तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता। ठीक है, आपको ठंडा लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। बट लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है उतना गंभीर दर्द होता है।
0: तो सर, इससे बचने का,
1: एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो,
0: हाइजीन,
1: ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
0: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
1: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई माता लोग या हमारी जो पुरानी माता जी हैं वो बोलती है कि हाँ भाई डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है।
0: Okay.
1: वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है।
0: Exactly.
1: और आप अगले 2 महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत होगी।
0: तो
1: मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए चुपचाप ब्रश उठाओ ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं?
0: बिल्कुल,
1: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे।
0: बिल्कुल, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए। बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है आपके मन में जो भी मिथ है, आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए?
1: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
0: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे।
1: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है। आप पेन के खा के दांत का इलाज नहीं कर सकते।
0: करेक्ट,
1: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
0: ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है।
1: जी
0: ओके, सो दोस्तों देखिए, तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूं, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसा रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
1: सर, मुंह से दुर्गंध के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो लोकल रीजन, मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी उसे बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
0: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है
1: नहीं? बदबू के 2 कारण है, एक तो दांत है,
0: ठीक है,
1: अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
0: ओके,
1: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेस आती है पेट से, वो बदबू करती।
0: ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
1: सर, ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
0: ओके,
1: वंस ए वाइल्ड ठीक है, हाँ भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक
0: है. मतलब ये ऐसे नहीं, कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में जाना है, वन से वाइप जैसे आपने बताया. ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्लीच करा के आ रहे तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं. सर एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती हैं तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
1: सर देखिए ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए. वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे, ये बेसिकली पायरिया ही है. पायरिया ऐसी बीमारी,
0: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
1: या एग्जैक्टली, खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा. जब पायरिया, जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी.

0: वो धीरे धीरे धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा और जब हड्डी पूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है। अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट पीता है, तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा
1: होती है।
0: ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए। ठीक है, उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
1: जी।
0: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले।
1: अच्छा।
0: और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखती लगा अरे तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा है। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था, लोगों में ये मिथक है दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटका क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल दाढ़ फंसी हुई है। मैंने कहा तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी दाढ़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल दाढ़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कह रहे नहीं डॉक्टर साहब दाढ़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको दाढ़ उखड़वा, उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
1: ओह माय गॉड।
0: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
1: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं से।
0: हाँ, गलत है वो।
1: ओके।
0: तो अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: ओह माय गॉड। कई बार होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों को लाइफस्टाइल कहने कहीं बहुत चेंज हो गया है, एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
0: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है।
1: ओके।
0: जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है, तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है, उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इतना नुकसान है, बाकी जो आपके सिस्टम को, आपके डाइजेशन को नुकसान है वो एक अलग चीज है।
1: ओके। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है वो येलो परत, क्या वो लाइफ में कभी हटेगी भी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कि कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो, कितनी ब्लीचिंग करा लो,
0: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
1: ओके।
0: वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है।
1: ओके।
0: तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
1: ओके।
0: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
1: ओके।
0: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है, मतलब जो अफ्रीकन है, उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है। और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे, क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे हैं, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं, तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
1: अच्छा, मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
0: सर, नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
1: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया है, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती,
1: इनफैक्ट फंस और जाएगी,
0: छोटी
1: छोटी वो फंस जाती है। तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
0: एग्जैक्टली ब्रश से साफ मिला के।
1: तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं जागो, अब ब्रश करने की बारी। आप जो है एक्सक्यूजेस मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये एक छोटा सा है काम सर। डॉक्टर साहब आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
0: नहीं डेफिनेटली, मतलब इट इज ए वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर। और आपका मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ, तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, इट्स नॉट सो सिंपल।
1: एग्जैक्टली
0: ठीक है,
1: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक।
0: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना, वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं, तो अपग्रेड होती चली जाती हैं। आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट। सो वेल आगे बढ़ेंगे सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे, और वो कई बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में, तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
0: सर अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें, क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है। बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है, तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं। और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना। बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं, और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है, और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं। इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है, और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बशर्ते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए,
1: एक्सपीरियंस होल्डर।
0: एग्जैक्टली, वो सारा स्किल का खेल है। अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा। इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक आदमी को अगर दांत नहीं है तो वो खाना चबा के नहीं खाता, खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा, उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा, और वो पूरी उम्र पेंटाप्रोजोल, ठीक है, रेविप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता
1: रहेगा। करेक्ट,
0: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा।
1: बिल्कुल सर,
0: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है। जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है, उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस कब और इन सब चीजों से गुजरना।
1: ओके, सो श्रोताओं छोटी छोटी बातें हैं, एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है, जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी कि ब्रशिंग उनका टाइम बेसिकली, तो कई बारी ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल लाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो।
0: देखिए सर नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
1: स्पेशली जैसे दांत, कुछ लोग कहते हैं मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो कैल्शियम, ये दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह की कुछ
0: नहीं, दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी हैं, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है, बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए।
1: ओके बिल्कुल सही बात है,
0: ठीक है, अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे प्रॉपर होगा। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है तो दूध के दांत निकल जाएंगे। अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए।
1: सही बात है,
0: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया, इनको जरूरत है,
1: जरूरत है। करेक्ट,
0: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है। बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो किन मानी वो नहीं खाएगा।
1: करेक्ट
0: ठीक है, आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा, ठीक है। और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं। और यकीन मानिए, अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी।
1: अच्छा, पर सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर, जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से एक सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा,
0: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: ओके।
0: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी है, और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
1: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला रेडियो FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सर, कुछ और कहना चाहते हैं आपसे? मुझे बात करके बहुत मजा आया, मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं भी आपको फ्री कर दूं, लेकिन ज्यादा लंबा आप कर भी नहीं सकते हैं।
0: नहीं नहीं, सेम यार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुरादाबाद आके, तो इट वाज ए नाइस एक्सपीरियंस, आई विल रिमेंबर इट।
1: थैंक यू सर, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें ना बात के लिए भी छोड़नी चाहिए, कुछ आज ही पूछ लेंगे तो फिर मजा
0: नहीं आएगा।
1: तो जल्दी सर से फिर वापस मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, अच्छे गानों के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद। थैंक यू सर, FM मुरादाबाद और RJ आनंद आपका दिल से शुक्रिया करता है सर।
0: थैंक यू,
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
6: लगे हाथ नहीं कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
7: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
10: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
11: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने नगर निगम से यह भी पता लगाने को कहा है कि इमारत का निर्माण और संचालन वैध अनुमति के साथ किया गया था या नहीं। न्यायालय ने नगर निगम को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी पेइंग गेस्ट, पीजी आवास और छात्रावासों का एक सप्ताह के अंदर व्यापक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी

0: सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दक्षिण जोन के दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायता अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा इमारत के कथित मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पूरी दिल्ली में उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया गया है जिनमें बिना मंजूरी के पांचवी मंजिल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि आसपास के पीजी और इमारतों को भी बारीकी से जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी इमारतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई नीति लाई जाएगी जिसके अंतर्गत पीजी, नर्सिंग होम, स्कूल और अन्य संस्थानों की इमारतों का समय समय पर संरचनात्मक ऑडिट और इमारत सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किया जाएगा। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सत्य निकेतन घटना के प्रकरण में दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों का निलंबन दिल्ली सरकार की जवाबदेही और निर्णायक कार्यशैली का प्रमाण है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि घटना के लिए केवल निचले स्तर के कर्मचारियों को नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली सचिवालय में आयोजित दिल्ली के सांसदों और विधायकों की बैठक में कल की घटना पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। उपराज्यपाल सचिवालय में आज सत्य निकेतन क्षेत्र की दुर्घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद शामिल रहे। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सूद ने बताया कि बैठक के दौरान पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती तथा आपात स्थिति में प्रतिक्रिया समय को और कम करने के उपायों पर विचार किया गया। श्री सूद ने बताया कि सभी विभागों के साथ जरूरत के अनुसार अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात की छूट देने और मौजूदा हॉस्टलों के पुनर्विकास के लिए अधिक फर्श क्षेत्र अनुपात की मंजूरी देने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जस्टिस गुहा समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए जा रही रिपोर्ट के अनुसार पीजी और कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए उपायों पर भी विचार किया गया।
1: सभी विभागों की एक साझा बैठक जिसमें पुलिस, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ की जगह जगह प्लेसमेंट, हमारा रिस्पांस टाइम और कम कैसे हो और जो बड़ी तादाद में एक रेजिडेंशियल फैसिलिटीज का गैप है उसको पूरा करने के लिए एफएआर में जरूरत पड़ने पर एडिशनल छूट देना, एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स को रीडेवलप करने के लिए नए एफएआर में नई बढ़ोतरी के साथ उपलब्ध कराना।
0: श्री सूद ने सत्य निकेतन की दुर्घटना के बाद पिछली सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से चली आ रही उपेक्षा और कुप्रशासन के कारण दिल्ली में बुनियादी ढांचे और व्यवस्थाओं की स्थिति खराब हुई है। श्री सूद ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास छात्रों के लिए संचालित पीजी आवासों को विनियमित करने के लिए कोई प्रभावी नियम कायदे नहीं बनाए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने सत्य निकेतन दुखद प्रकरण में विद्यार्थियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस संबंध में आज कुलपति द्वारा महाविद्यालयों के प्राचार्यों की एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान दुर्घटना में मृत विद्यार्थियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कुलपति ने कहा कि विद्यार्थियों की जान का नुकसान दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय हर संभव मदद के लिए उनके साथ खड़ा है। श्री सिंह ने सभी प्राचार्यों से अपने अपने महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करने का अनुरोध किया जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदू कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 6 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान हिंदू कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, श्री गुरू नानक

0: सुखदेव खालसा कॉलेज, मिरांडा हाउस और रामजस कॉलेज के विद्यार्थियों ने दिल्ली विधानसभा का भ्रमण किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की। एक रिपोर्ट।
1: पूर्वी रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद महादेव डोंबरे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, सुचारू यातायात और सीमा चौकसी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार बैठक में गाजियाबाद और नोएडा पुलिस के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी बढ़ाने, अपराधियों और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया सूचनाएं साझा करने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच करने पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान हवाई निगरानी और दिल्ली गाजियाबाद व नोएडा पुलिस के बीच बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन पर भी रणनीति बनाई गई। बैठक में वीआईपी रूट मैनेजमेंट, गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन तैयारियों पर भी समीक्षा की गई। दिल्ली पुलिस ने संबंधित सहायता पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दिल्ली नगर निगम MCD और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से आज नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली के सुभाष नगर स्थित MCD पश्चिमी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल तथा टिकाऊ प्रभावों को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम का मुख्य विषय निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल प्रदूषण कम करने तथा बायोमास जलाने के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता फैलाने पर केंद्रित रहा। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली सचिवालय में मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 और डेंगू को लेकर जन प्रतिनिधियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पार्षद, जन प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जन प्रतिनिधियों को H1N1 और डेंगू के लक्षणों, रोकथाम, समय रहते पहचान और उपचार के बारे में व्यावहारिक जानकारी देना था। कार्यशाला के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी पहुंचाने और रोकथाम के उपायों के लिए नागरिकों को एकजुट करने में जन प्रतिनिधियों की भूमिका पर भी विशेष बल दिया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी की रोकथाम को केवल अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसके लिए समुदाय स्तर पर भी सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। उन्होंने पार्षदों से स्वास्थ्य विभाग और फील्ड टीमों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी राजधानी के हर वार्ड, मोहल्ले और हर घर तक प्रभावी तरीके से पहुंच सके। उन्होंने सभी जन प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सावधानियां और संदेशों को अधिक प्रचारित करें तथा H1N1 से जुड़ी गलत धारणा को दूर करने का प्रयास करें। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑपरेशन सजग के अंतर्गत 72 घंटे का गहन परिवर्तन अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाना, सेंधमारी और चोरी पर रोक लगाना, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध रूप से रह रहे प्रवासी से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण तथा अवैध हथियार रखने वालों के विरूद्व कार्रवाई करना था। इस दौरान पुलिस ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया। राजधानी में आज तेज धूप के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ बहुत हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में हुई दुखद घटना की उच्चतम कार्यकारी स्तर पर जांच के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार ने सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया। सरकार ने उन इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया जिनमें बिना मंजूरी के 5वीं मंजिल बनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक की और दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के सहयोग से स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
5: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
5: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना,
5: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
5: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया है। जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और मेरे साथ है आरजे खुशी। इस शो में हम कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के साथ और करने वाले शाम को भैया ढेर सारी बातें। शाम ये देखिए, शाम होते ही ना दिन भर की भागदौड़, थकान लगती है, लेकिन मुरादाबाद की गलियों में अभी रौनक बाकी है। बाजारों में भीड़, दुकानों में रोशनी, दोस्तों की गपशप, और कहीं से आती है गर्मा गर्म समोसे की खुशबू, कहीं चाट का चटकारा तो कहीं कबाब की महक। तो क्यों ना आज की शाम घर बैठे बैठे मुरादाबाद की गलियों की सैर की जाए। तो बस अब होती है असली कहानी, असली मुरादाबाद शाम की शुरुआत। क्योंकि बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की सुई आपने अगर घुमाया तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिस कर जाएंगे। और देखिए, गाड़ी चलाते चलाते या फिर आप घर बैठकर सुन रहे हैं ना, तो आपको हम आज बाहर जाने से और बाहर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। क्यों खुशी, सही कह रही हूँ ना मैं?
7: बिल्कुल सही बोल रहे हो आप।
8: हेलो, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आप हमें सुबह भी सुनते हैं, दोपहर भी सुनते हैं, अब हम शाम में भी आपके साथ आ गए हैं। आई होप आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा। आपकी शाम को बनाने आए थोड़ा और यू नो हैपनिंग, खूबसूरत ब्यूटीफुल शाम। क्योंकि देखिए दोस्तों, सोचिए बाजार में चलते चलते सामने गोलगप्पे वाला दिखाई दी जाए और एक तरफ कुरकुरी पूरी, ओहो, और दूसरी तरफ आलू मसाला, ऊपर से खट्टी मीठी चटनी, और फिर वो ठंडा ठंडा मसालेदार पानी, भैया एक प्लेट और लगाना और पहला गोलगप्पा मुंह में जाते ही बस दिन भर का तनाव गायब हो जाता है। क्यों रीना?
6: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि एक गोलगप्पा मुंह में जाते ही दिन भर की तनाव गायब, छू मंतर हो जाती है।
8: एक्चुअली हम खुद ही ऐसा करते हैं, जब हम ऑफिस से फ्री होकर दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमें कहीं भी पानी पूरी का स्टॉल नजर आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं आपको बताएं एवरीवन? हाँ, बताएंगे, थोड़ा सब्र तो करो। ओहो, आप क्या चाहते हैं हम आपको भी बता दें? ना, थोड़ा इंतजार करवाएंगे, इंतजार करो, पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। क्यों खुशी, क्यों रीना?
6: अरे, तुमने तो मेरा नाम खुशी रख दिया, कोई बात नहीं। फिलहाल आपसे पूछना चाहेंगे श्रोताओं कि आपको गोलगप्पे खट्टे पसंद है या फिर
8: मीठे तीखे?
6: तो तुम बताओ, तुम्हें कौन सा पसंद है?
8: मुझे पानी पूरी ना ज्यादा तीखा वाला पसंद नहीं है, मुझे खट्टा मीठा दोनों पसंद है। क्योंकि क्या होता है ना, खट्टा मीठे में ना टेस्ट अच्छा आता है, और ज्यादा तीखा अगर मैं खा लेती हूँ तो फिर मुझसे तो नहीं खाया जाएगा,
6: कान से हवा निकलने लग जाती है।
8: रीना स्पेशली तीखा खा लेती है, बट मैं तीखा नहीं खा पाती हूँ।
6: लेकिन गोलगप्पे मुझे भी मीठे पानी वाला ही पसंद है।
8: मुझे सूजी वाले पसंद है।
6: सूजी वाले तो मेरा पसंद है।
8: वैसे गाइस, आप भी मुझे बताइएगा, हम लोगों को बताइए कि आपको कौन से पानी पूरी पसंद है, आटी वाले या सूजी वाले,
6: और पानी भी बताना आप।
8: हाँ, और जब तक हम करते हैं आपसे और भी बातें, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं ना एक प्यारा सा गाना। चलो सुनते हैं एक धमाकेदार ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आपका भी पानी पूरी खाने का मन है ना, इसमें दोष हमारा नहीं है। आपका मन विचलित है तो हम क्या कर सकते हैं।

0: देखिए शाम होते होते ना मन करता है भैया कुछ चटपटा अटपटा खा ले, तो मुझे लगता है इस मन को ना दुखी नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो चलिए श्रोताओं, अब जैसे जैसे शाम होती है ना, बस गली मोहल्ले से मार्केट से ना खुशबू आने लग जाती है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं गोलगप्पों के बाद समोसों की खुशबू। आए हाय, मुझे पता है कि आपके बहुत पसंद है गोलगप्पे और साथ ही साथ समोसे। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप। कोई बात नहीं, अब जरा हमारे साथ बने रहिए आरजे रीना के साथ और खुशी के साथ, जहां करेंगे ढेर सारी बातें। अब जरा अपनी कल्पना को बाजार की अगली गली में ले जाइए और वहां से आती है एक ऐसी खुशबू जिसे सूंघ कर कोई भी रुक नहीं पाएगा। गर्मा गर्म समोसे की कड़ाही की तेल में छन छन समोसे का सुनहरा रंग और साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी। अब बताइए समोसा अकेला अच्छा लगता है या साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा दुगनी हो जाती है। मेरी तरफ से चाय के बिना समोसा थोड़ा अधूरा रहता है। अब समोसा हो और चाय ना हो, फीकी पड़ जाती है ना।
1: चाय के बिना समोसा अच्छा नहीं लगता है और समोसे के बिना चाय नहीं अच्छी लगती है, दोनों साथ में होते हैं तो कॉम्बो अच्छा लगता है। अब चाट का चटपटा स्वाद लेते हैं। मुरादाबाद की शाम हो और चाट का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है रीना। सोचिए प्लेट में कुरकुरी पापड़ी, ऊपर उबला हुआ आलू, दही, हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी और आखिर में मसाले की हल्की सी बारिश। पहला निवाला मुंह में जाते ही ना खट्टा मीठा तीखा और कुरकुरा चारों स्वाद एक साथ, और फिर वो आवाज, भैया थोड़ी चटनी और डाल दीजिए ना।
0: हाँ ये तो अक्सर हम करते ही।
1: अब रीना के मुंह में पानी आने लगा है खाने की बातें सुन।
0: मेरे मुंह में नहीं, मतलब जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मुंह में भी पानी आने लगा है। वो तो यही कह रहे भैया गाड़ी न्यूटन ले लेते हैं और
1: पहले कुछ खा ही लेते हैं।
0: हाँ तो चलिए अब हम बात करेंगे कबाब की खुशबू। मुझे आपको पसंद है ना, मुझे हाँ, तो बहुत पसंद,
1: मुझे भी पसंद है यार, कबाब को भी पसंद है और हाँ। हमारे जो बहुत सारे श्रोता है ना उनको भी पसंद है ना।
0: एक काम करिए एक प्लेट भिजवा दीजिए आप।
1: मैंने तुमको खिलवाया था ना, याद है तुम्हें वो वाला कबाब कितना टेस्टी था।
0: हाँ, मुझे लगता है कि आज तो फास्ट है, कल चलेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कबाब की बात करेंगे। अब अगर आप मुरादाबाद के किसी खाने वाली गली से गुजर रहे हैं और अचानक मसालों और सिकते कबाब की खुशबू आपकी नाक तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए आपका पेट आपको रोकने वाला है। सीख पर लगा कबाब, आग की हल्की आंच, ऊपर से प्याज और हरी चटनी और गर्मा गर्म खुशबू, आए हाय। मुरादाबाद के मुलायम खाने और कबाब बिरयानी की अपनी खास पहचान है। अब सवाल ये है कि आप सिर्फ खुशबू लेकर निकल जाएंगे या प्लेट भर के खा लेंगे या फिर घर वालों के लिए भी ले जाएंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिलहाल देखिए अपने लिए आप खा रही हैं और घर वालों के लिए ले जा रहे हैं ना, तो एक प्लेट इधर भी भिजवा दीजिएगा स्टूडियो में।
1: पर आज तो हम नहीं खा पाएंगे, अगर हमारे लिसनर जो है सुन रहे हैं अगर भिजवा भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला।
0: मतलब आज ना भिजवाइए, आप कल भिजवा दीजिएगा, ये तो चलेगा ना।
1: ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा फिर तो। हाँ अब हम बात करते हैं, पता है रीना किसकी। हम बात करते हैं बिरयानी का इम्तिहान। अब जरा कल्पना कीजिए ढक्कन उठता है और अंदर से आती है मसालों में पके चावल की गर्मा गर्म खुशबू, ऊपर से हरे धनिए की हल्की महक और साथ में नरमा नरम पीस। जी हाँ बात हो रही है बिरयानी की। मुरादाबाद की बिरयानी अपनी खास मसालेदार स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। और बिरयानी की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है, आप कहते हैं बस थोड़ी सी खाऊंगा या थोड़ी सी खाऊंगी और प्लेट खत्म होने के बाद याद आता है कि थोड़ी तो बचनी चाहिए थी।
0: लेकिन मेरा मानिए तो एक प्लेट और ले लीजिए। और साथ ही साथ आपने बताना है मुरादाबाद में बिरयानी सबसे ज्यादा फेमस कहाँ की है।
1: हाँ।
0: आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं क्योंकि अगली बार अगर हम खाने के लिए जाए तो उसी शॉप पर जाने वाले हैं।
1: हाँ हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि बिरयानी मुरादाबाद की कहाँ की पॉपुलर है, क्योंकि हमने अभी तक बिरयानी का टेस्ट किया है लेकिन अपने घर पर बनाकर, किसी स्टॉल का नहीं खाया है। तो हम चाहते हैं कि किसी शॉप की मुरादाबाद वालों से हम जानना चाहते हैं कि मुरादाबाद की सबसे बेस्ट बिरयानी कहाँ पर मिलती है। आप हमें जल्दी से मैसेज कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो दोस्तों हम अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, आपकी शाम को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत। कुछ खाने पीने की बातें तो हो ही रही हैं लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीजें और हैं, वो क्या है अभी बताते हैं आकर।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और आज की शाम को हम बनाने वाले हैं आपके खूबसूरत बना ही रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि ओहो खुशी जी और रीना जी आज कौन सा टॉपिक लेकर आई हैं। भैया हम तो रोके से नहीं रुक पा रहे हैं, आज पेट भरा है फिर भी दिल कर रहा है कि कुछ तो स्पाइसी हो जाए, कुछ तो चटपटा हो जाए। तो खाइए, रोका किसने है। बट हाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा मत खाइएगा, ठीक है। और दोस्तों पता है आपको भीड़ और खाने का कनेक्शन, दोस्तों मुरादाबाद में शाम को भीड़ देखी है आपने? हे भगवान, इतनी भीड़ होती है ना रीना, हम खुद दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम सोचते हैं कि आधे घंटे में रिटर्न वापस आ जाएंगे, लेकिन कब दो घंटे गुजर जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता। जबकि हम पैदल होते हैं, अगर स्कूटी से जाएंगे तो पता नहीं रात को 10-11 बजे घर आएंगे शायद।
1: भीड़ भी ज्यादा होती है ना शाम के टाइम,
0: इवनिंग में बहुत ट्रैफिक होता है मुरादाबाद में। और कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई जूता देख रहा है, कोई बच्चों का हाथ पकड़ के घूम रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस खाने निकले हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या रीना, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगी हो वहाँ जाकर देखो, 90% संभावना है कि कुछ वहाँ कुछ स्वादिष्ट जरूर मिल रहा होगा। मुरादाबाद की शाम में बाजार की रौनक और खाने की खुशबू मिलकर ऐसा माहौल बना देती है कि घर जाने का मन ही नहीं करता, और एक प्लेट चाट खाए बिना तो बिल्कुल भी घर हम जाते नहीं है।
1: मतलब ये है कि जो भी घर से निकल जाए वो कुछ ना कुछ खा कर ही आएगा।
0: खाली पेट तो भैया कोई नहीं आएगा।
1: अब तुम हम दोनों को ही देख लो, हम जाते हैं बाहर सामान खरीदने के लिए और कहते हैं कि नहीं यार जंक फूड नहीं खाएंगे।
0: और वहाँ जाते क्या होता है हमें पता नहीं,
1: मुंह में पानी आने लग जाता है।
0: हाँ, हम खुद पर इतना कंट्रोल करते हैं कि नहीं, हम घर से कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे, जाकर शॉपिंग करेंगे, जो काम है वो खरीद कर लेकर आएंगे सामान।
1: और कॉन्ट्री करके हम खा लेते हैं, कहते हैं एक प्लेट तो एक प्लेट में।
0: हाँ, पर हम लोग ऐसा करके खाते हैं लेकिन बहुत मजा आता है।
1: और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दूसरा प्लेट भी ऑर्डर कर देते हैं।
0: लेकिन ये पता है टाइम आपको रीना बहुत मेमोरेबल है हमारे लिए, क्योंकि जब हम और बड़े हो जाएंगे ना तो हम इन चीजों को बहुत मिस करेंगे।
1: देखो ये तो है, बड़े होने के बाद चीजें जो है हम टाइम स्पेंड करते हैं वो हमें याद तो आता है,
0: याद आता है। इसीलिए मैं अपने श्रोताओं से बोलती हूँ कि दोस्तों अपने टाइम को ना यूटिलाइज किया करो, जो वक्त आपके पास है उसे एंजॉय करो, हर पल खुल के जियो, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट पल क्या होगा,
1: क्योंकि जो पल गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता।
0: या आई एग्री विद यू यार। और हम खुद ऐसा करते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने से थोड़ी ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा,
1: प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ता है और आपके दिमाग पे भी प्रेशर पड़ता है, सर दर्द होने लग जाता है। इसीलिए भैया जलेबी का जादू जरूर खाइए।
0: ओह माय गॉड, जलेबी गर्मा गर्म और है, है।
1: मलाई वाली जलेबी मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। हाँ, सच बताऊं तो मैंने मथुरा में खाई थी फर्स्ट टाइम मलाई वाली जलेबी।
0: अच्छा तो कैसा था उसकी, बताइए।
1: आज तक मुझे ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला।
0: ओके, एक बार मुझे याद आया जलेबी से, रीना ने मुझे एक बार जलेबी खिलाई थी, जबकि इसको मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन इसने इसका मन किया उस दिन, तो उसने कहा कि जलेबी खाते हैं। मैं इसका चेहरा देख रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी मेरी घर आती है मैं इसको कुछ स्वीट खिलाती हूँ तो ये मना करते कि नहीं मुझे मीठा पसंद नहीं है, और वहां जाकर ये लड़की इतना जलेबी टुकुर टुकुर देखी जा रही है और उसको खाई जा रही है।
1: पता है जब मुझे ना मलाई वाली जलेबी मिल जाए और साथ ही साथ उसमें इलायची वगैरह जो डाल,
0: इलायची का टेस्ट तो अलग ही होता है,
1: मजा आ जाता है मुझे। साथ रबड़ी वाली भी जलेबी मिल जाए ना यार तो बस छोड़ो मत, आने दो।
0: पनीर वाली जलेबी खाई है आपने?
1: नहीं यार, पनीर वाली नहीं खाई है, तुम्हें खिला देना।
0: अच्छा ठीक है, तो मैं पनीर वाली जलेबी आपको जरूर खिलाऊंगा। हाँ ठीक है,
1: तो चलिए हम बात करते हैं जलेबी की। बात करें भैया आज मुझे भूल जाओ, सच बता रही हूँ, गर्मा गर्म जलेबी जरूर खाओ।
0: पेमेंट तुम कर देना, खा मैं लूंगी रीना, ठीक है, इतना काम करना।
1: हाँ स्कैनर दिखा के आ जाएंगे। अच्छा, कढ़ाई में गोल गोल घूमती हुई जलेबी, बाहर से कुरकुरी, अंदर से चाशनी से भरी हुई और ऊपर से गर्मा गर्म खुशबू। अरे यार आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक।
1: बहुत से श्रोता कह रहे होंगे अरे बस रुक जाओ मैडम, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस हमें खा कर आने दो।
0: हाँ लेकिन हाँ मैं आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए और अगर कुछ खाने का मन है तो खा लीजिएगा,
1: लेकिन गाड़ी साइड में पार्क करिएगा।
0: हाँ वो जरूरी है,
1: क्योंकि इसके वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाती है। और एक जलेबी लेने गए थे, दुकानदार ने पूछा कितनी, तू मुंह से निकला भैया पहले आधा किलो कर दो, उसके बाद 2-3 किलो हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जलेबी दूध के साथ अच्छी लगती है, या अकेली,
0: ये हम अपने लिसनर से पूछेंगे ये क्वेश्चन, आप उनसे उनको ट्रांसफर कीजिएगा।
1: हाँ तो आप बताइए कि आपको रबड़ी के साथ, मलाई के साथ, या दूध वाली, या आइसक्रीम वाली जलेबी है ना, कौन सी जलेबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? फिलहाल मुझे तो कुरकुरी जलेबी हो और मलाई हो उसके ऊपर, रबड़ी वाली आय हाय मजा आ जाता है यार।
0: सिंपल जलेबी भी अच्छी लगती है चाशनी में डूबी हुई ना, कुरकुरी
1: होने से।
0: हाँ हाँ वो अच्छी,
1: और तभी अच्छी लगती है गर्मा गर्म, उसके बाद
0: ठंडी होने के बाद नहीं टेस्ट आता है।
1: लेकिन वो बचपन में पता क्या करती थी, जब भी मेरे पापा जलेबी लाते थे ना, मैं उसको अगले दिन खाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम जब मैं छोटी थी तो मुझे जो जलेबी है वो करारी अच्छी नहीं लगती थी।
0: अच्छा, वो सॉफ्ट होने के बाद, सॉफ्ट होने के
1: अगले दिन खाती थी,
0: नेक्स्ट डे आप खाते थे। ओके,
1: लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं, अब मेरा मन चेंज हो गया है।
0: बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आप भी मुरादाबाद के किसी बाजार में खड़े हो तो आपको सिर्फ खुशबू ही नहीं, आवाज भी सुनाई देगी। भैया एक प्लेट गोलगप्पे लगाना, थोड़ा तीखा, थोड़ा पानी तीखा बनाना, चटनी ज्यादा डालना, और दूसरी तरफ कढ़ाई से आती छन छन, हाँ यही छोटी छोटी आवाजें बाजार को बाजार बनाती हैं। और सच बताऊं, इन आवाजों को सुनकर आपके पेट ने भी अभी तक एक आवाज तो जरूर निकाल दी होगी
1: कि भैया बस कुछ खा ही लेते हैं, यारे मेरी बात मानिए, खा लीजिए, मन को इतना नहीं तरसाना चाहिए, बस जो मन करे खा लो।
0: लेकिन अच्छी शॉप से खाएं, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर साफ सफाई अच्छी है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पर खाना चाहिए, क्यों नहीं ना।
1: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कहा। फिलहाल घर का खाना या बाहर का खाना, ये आप बता सकते हैं मुझसे मैसेज करके। लेकिन कभी कभी मन भी करता है यार बाहर का खा लेते हैं।
0: हाँ, देखो बाहर का खाना खाना मुझे लगता है कि रीना इतना गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई चीज को आप जब लिमिटेड खाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, अनलिमिटेड कोई भी चीज ठीक नहीं होती। हाँ, है
1: शाम को घर पहुँचते ही माँ या पत्नी पूछती है खाना लगा दूं, और तभी दिमाग घूमता है गोलगप्पे, चाट, समोसा, टिक्की, कबाब, बिरयानी। अब दिल कहता है बाहर चल रहे हैं यार, पेट कहता है घर का खाना खाओ, और मन तो बोलता है दोनों कर ले भाई दोनों जरूरी है। और साथ ही साथ आप जरूर बताइएगा आज शाम आपकी पहली पसंद क्या है, घर का गर्मा गर्म खाना या बाजार का चटपटा स्वाद। देखिए हम दोनों तो कभी कभी बाहर का खाना इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बस घर आके खाने की हिम्मत नहीं होती,
0: नहीं खाते हैं। हाँ। मैं भी अगर हम हल्का बाहर लाइट फूड लेते हैं फिर उसके बाद में खाना नहीं खाती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ।
1: हाँ, लेकिन एक बात तुमने सोचा होगा कि हम जितना बाहर का जंक फूड खाते हैं ना, घर आने के 12-1 बजे के बाद फिर चूहे कूदने लग जाते पेट में।
0: मैं जब एक बार सो जाती हूँ तो फिर उठती नहीं हूँ, मेरी तो ये रहता है
1: अगर मेरे को नींद नहीं आती ना, सच बताओ मेरे को दोबारा भूख लगी आती है।
0: हाँ नहीं, अगर आप लेट नाइट सोकर जैसे एक बार अचानक से उठते हैं तो फिर भूख लगती है। अब बारिश और चटपटा खाना, मान लीजिए शाम का मौसम थोड़ा ठंडा हो, हवाएं चल रही हो, और कहीं से पकौड़े तलने की खुशबू आ जाए, बस फिर क्या, आंखें दुकान खोजती हैं, पैर अपने आप उसी तरफ चल पड़ते हैं, और मुंह बोलता है भैया एक प्लेट पकौड़े लगाना गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े हो या फिर आलू के, ऊपर से चाट मसाला और साथ में चाय। कभी कभी खुशी बहुत महंगी नहीं होती, बस एक गर्मा गर्म पकौड़े की प्लेट जितनी होती है, क्यों दोस्तों। आपका भी अगर मन कर रहा है ना, समय देखिए मौसम मानसून का वेदर है, एंड आपका मन है कुछ खाने का थोड़ा सा, तो खा सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आप गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, चाय पीजिए, लेकिन पेमेंट हम नहीं करेंगे, इस बात को गांठ आप बांध लीजिए, पेमेंट तो आपको ही करना होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा मत खाइएगा,
1: लेकिन खाना पेट भर के।
0: हाँ पेट भर के खाओ, लेकिन ज्यादा मत खाओ।
1: लेकिन इसी के साथ हम लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि देखिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, और आप सभी से यही कहेंगे कि देखिए घर जाते जाते ना मार्केट से सब्जियां भी जरूर लेकर चले जाइएगा। अच्छा, लेकिन सिर्फ खाने खाने में आप बिजी हो गए और सब्जियां नहीं लेकर गए, तो घर जाते जाते फिर से आपको ताने सुनने को मिल जाएंगे कि अच्छा अभी तो तुम पेट भर के आ गए हो, सुबह देखती हूँ तुम्हें क्या खाते हो।
0: अरे रीना ऐसा होता है कई बारी, मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ है, मामा ने कुछ सब्जी के लिए पापा जी को बोला, और पापा जी रिटर्न में शाम को घर आए वापस, तो उस मतलब बहुत सारी चीजें लेकर आए, लेकिन जो मम्मी ने कहा था सब्जियां वो नहीं लेकर आए। फिर मम्मी ने पापा जी को थोड़े ताने सुनाए, पापा ने बोला अच्छा मैडम मैं वापस आता हूँ, अभी सब्जी लेकर फिर वापस आता हूँ।
1: हाँ देखिए लेकर जाइएगा, पता चले कि उतनी दूर आपको फिर से आना पड़े और फिर से आपको ट्रैफिक में फंस सकते हैं, क्योंकि प्रकाश नगर चौराहे की तरफ से आएंगे आप भैया, तो यहाँ पर आपको जमकर भीड़ मिलने वाली है। शाम के टाइम में तो बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि हर कोई बाहर की जो रौनक है वो देखने के लिए निकलते हैं, शेयर करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं,
0: शाम को ऑफिस से भी घर आते हैं।
1: हाँ, बहुत से देखे लेट आते हैं, वो घूम के आते हैं दोस्तों के साथ। देखो यार, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत
0: जरूरी है,
1: साथ ही साथ फैमिली वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। और तुमने कभी ये, मतलब मेरे साथ क्या होता है एक्चुअली, जब मैं घर रहती हूँ तो जब मैं घर जाती हूँ, मैं चाहे मैं यहाँ रहूँ तो मैं बाहर से कुछ खाऊं ना खाऊं, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ ना तो पापा से एक उम्मीद रहती है मेरी कि जब मेरे पापा आएंगे बाहर से
0: तो मेरे लिए ये लेकर आएंगे। हाँ। वो हम ना कहें तो भी लेकर आते हैं।
1: हाँ।
0: पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, अगर हम कुछ भी ना कहें ना तो भी वो बिना कहे कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं।
1: मेरे पापा सबसे ज्यादा मोमोज लेके आएंगे, क्योंकि जो मेरी भतीजी है ना,
0: हाँ,
1: वो ताने बहुत देती है।
0: अच्छा दादाजी, आप मेरे लिए मोमोज नहीं लेकर आए?
1: भाई वो जो भी घर में आए ना शाम के टाइम, चाहे मेरा भाई आए, चाहे मेरे पापा आए, चाहे कोई रिश्तेदार भी आएगा ना, उसको भी कह देती है मेरे लिए मोमोज लेकर आए हो या नहीं लेकर आए हो, मतलब वो नहीं शर्माती, उसको गोलगप्पे चाहिए।
0: भाई वो गोलगप्पे घर में, वो घर में छोटी है लेकिन वो बनती सबसे बड़ी है, सबको सब उसको बहुत प्यार करते हैं, और उसकी बात कोई नहीं टाल सकता है। एक बार को तुम्हारी बात टाल देंगे रीना, लेकिन उसकी बात नहीं टालेंगे।
1: नहीं नहीं नहीं, चलिए हम बातें बहुत करते हैं, पहले गाना सुन लेते हैं, गाना भी सुनना बहुत जरूरी है।
0: हाँ यार, अभी तो हमने बोला म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, लेकिन हमारी बातें फिर शुरू हो गई।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे तो यही कहना चाहूंगी कि रेडियो का जो वॉल्यूम है ना भैया, वो बढ़ाकर अगर आप गाने सुनेंगे तभी आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी लॉन्ग सफर भी कब आपको थोड़ी पड़ने लग जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। बस आप भी यही सोचेंगे, यार अभी तो निकला था, इतनी जल्दी पहुंच भी गया, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए वॉल्यूम जरूर बढ़ाइए, तभी आपको मजा आएगा। और अब हम बात करने वाले हैं मुरादाबाद का स्वाद। मुरादाबाद सिर्फ पीतल की चमक के लिए नहीं, बल्कि अपने जायके के लिए भी याद किया जाता है और याद रखा भी जाता है, क्योंकि यहाँ पीतल के सामानों के साथ साथ बिरयानी और मुगलाई स्वाद, कबाब चाट, समोसे, जलेबी और चाय शाम में जैसे हर तरफ खाने की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। और देखिए, आप जरूर मैसेज करके हमें बताइएगा कि शाम होते होते आपको किस चीज की ज्यादा क्रेविंग होने लगती है, भैया क्या खाना है। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो डेली खाते हैं, भाई कुछ भी हो जाए थोड़ा खाओ, लेकिन खाएंगे जरूर, मानेंगे नहीं। और साथ ही साथ ऊपर से मूंग दाल मिल जाए, आय हाय, वो तो सुबह से लेकर शाम तक उसके ठेले खत्म ही नहीं होते हैं। और साथ ही साथ मूंग दाल का चीला,
1: वो बहुत यम्मी
0: है ना, मूंग दाल। और पिज्जा भी आजकल मूंग दाल का मिलने लगे है भैया, पिज्जा।
1: अच्छा, पिज्जा तो मैंने नहीं खाया मूंग दाल का,
0: लेकिन खाया तो मैंने भी नहीं है, पर बहुतों से सुनती हूं।
1: मूंग दाल हमने खाई है यहाँ मुरादाबाद की,
0: बहुत टेस्टी लगती है।
1: हाँ, मुरादाबादी दाल बहुत यम्मी।
0: और देखिए आप हमें
1: उसमें नींबू और मक्खन एंड
0: उसमें होती है ना कश्मीरी मिर्च डाल के जो देते हैं,
1: हाँ रोस्ट की भी जो मिर्च होती है वो उसका टेस्ट अलग ही होता है।
0: देखिए अगर आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं,
1: अरे पगली क्या करेगी, मैं क्यों स्टूडियो से बाहर भेजने के लिए क्यों मजबूर कर रही है। हाँ
0: मैं कहती हूँ जाओ और एक प्लेट मेरे लिए भी ले,
1: आप पहले खुद खा रहा फिर हमारे लिए लेकर आना।
0: हाँ, ये तो होता है, देखिए अगर खा भी रहे तो साथ में लेकर आना भी बहुत जरूरी होता है।
1: और फैमिली के लिए भी लेकर जाना, कभी आप सोचें कि अरे मैं अपना पेट भर लेता हूँ, घर वालों को थोड़ी ना पता चल रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली के लेकर जाओ, वो भी खुश हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, ये तो है, देखिए सबके साथ मिलकर खाते तो अलग ही मजा आता है,
1: अलग ही।
0: लेकिन दोस्तों के साथ जब मिलकर खाते ना भैया, पैसों का नहीं पता है कहाँ चले गए पैसे।
1: मत पूछो भैया, जब पेमेंट करने की बारी आती है ना, तब पता चलता है कि अच्छा इतना बिल आया है, और खाते वक्त नहीं भैया ये भी ऑर्डर कर दो, अच्छा भैया
0: ऑर्डर कर दो,
1: ये भी मंगवा लीजिएगा। और जब पेमेंट करने की बारी आती है तब ओहो यार मेरे तो पास इतने पैसे है ही नहीं।
0: और सबसे खूबसूरत बात, यहाँ खाने का मजा सिर्फ प्लेट में नहीं होता, साथ बैठे दोस्तों की हंसी में, परिवार की बातचीत में और बाजार की चहल पहल में भी होती है। क्योंकि देखिए खाना खाते समय हम ना बाहर की रौनकें भी देखते हैं, अच्छा भैया इसने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी है, अच्छा कल को मैं भी ऑर्डर कर लेती।
1: अक्सर हम लड़कियों में तो ये चीजें होती हैं।
0: नहीं यार, लड़कों में भी होती है,
1: लड़कों में भी होती है।
0: हाँ, लेकिन लड़के दिल के बड़े होते, वो नहीं देखते यार, जो पहन लिया पहन लिया। हम लड़कियां 70 बार सोचते हैं।
1: मैं भी बहुत ज्यादा डिसाइड करती हूँ बाहर जाने के लिए कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं।
0: नहीं, लड़कों को मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो बाहर जाना चल यार देखी जाएगी,
1: वो जैसे भी है वैसे ही, अरे चल यार चल, मैं
0: स्मार्ट लगते हैं
1: वो ऐसे ही फेस वॉश कर लेते हैं ना सिंपल सा, और बस हाथों बालों में हाथ घुमाते हैं तो वो उसी में हैंडसम लगने लगते हैं। और
0: एक बात है, जब वो बाहर जाएंगे ना तो बालों में पता नहीं हाथ क्यों मारते हैं। ये आज तक लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया,
1: नहीं समझ में आया। और नेक्स्ट एक मुझे समझ नहीं आता रीना अभी भी, कि जो बाइक चलाते हैं लड़के, पता नहीं क्यों वो पीछे मुड़कर देखते हैं।
0: अरे वो पीछे मुड़कर इसीलिए देखते हैं,
1: नहीं समझ,
0: सुंदर लग रही है।
1: मुझे नहीं समझ आता।
0: चलिए फिलहाल हमारा यहाँ से जाने के टाइम है, लेकिन जाते जाते खुशी कुछ कहना चाहती है।
1: तो जनाब आज की शाम हमने घूम ली मुरादाबाद की।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां, तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। काश यार ऐसी पावर आ जाती है रावण जैसी, शाहरुख खान वाली, मतलब ऐसी पावर कि मंडे में भी ना ऑफिस जाते हुए इंसान थके ना, पूरा दिन फटाफट फटाफट काम करे और जल्दी घर के लिए निकले। तो हाँ, थोड़ा थक जाते हैं, इतना सारा वीकेंड एंजॉय किया है और कुछ लोगों की तो आज, कुछ बच्चों की तो छुट्टी भी हो गई कि भाई साहब रेनी डे हो जाएगा, बादल इतने सुबह सुबह कहते ना एकदम गहरे बादल देखने को मिले कि स्कूल वालों ने पहले ही मैसेज कर दिया कि भाई साहब आज घर पे ही रहो। तो फिर क्या था, सब बच्चों ने कहा अरे पापा मम्मी थोड़ी देर और सोने दो, अब तो मैसेज आ ही गया है आपके पास। तो चलिए कोई नहीं, अभी बात करते हैं अपने पहले लिसनर से, 9837896896। आपको भी कॉल करनी है इसलिए ये नंबर मैंने बोला है। तो बात करते हैं अपने पहले लिसनर से, पूछते हैं क्या किया आज उन्होंने। हेलो, दिल से दिल तक संग, कैसे हैं आप?
1: हेलो भैया, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या कर रही हो आप?
1: कुछ नहीं, बैठी बात कर पता।
0: बैठी हुई हो?
1: यस।
0: तो अब होमवर्क और आपका क्लास वर्क सब पूरे हो गए आपके स्कूल का?
1: यस।
0: तो आज क्या गाना सुनना है आपको, कौन सी फरमाइश है आपकी? तो ये पूरी एक लाइन गा के सुनाऊं आज? पूरी लाइन याद नहीं है? अच्छा ये बताओ, कोई पोयम आपको याद है ऐसी कि जो आपकी बहुत फेवरेट पोयम हो और आपको बहुत अच्छी लगती हो? हाँ हाँ, हिंदी में ही सुना दो आप। क्या कौन सी वाली पोयम आपकी सबसे फेवरेट है, आज सुना दो ना हिंदी में ही। आज याद नहीं है?
1: आज
0: है। मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रही हो? आठ लाइन की है तो सुना दो, अगर आठ लाइन की भी है तो। हाँ अरे तो सुनाओ, दो लाइन की तो पोयम सुना दो, कम से कम दो लाइन तो सुना दो पोयम की।
1: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसे था, तब मैं यही समझती थी बस इसका सही आंसर था। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सही आंसर था।
0: क्या बात है, कितनी प्यारी आवाज और कितनी अच्छी पोयम सुनाई है आपने। तो चलो अब आप अपना पसंदीदा गाना भी एंजॉय करो, तेरी कायनात मेरे खाली हाथ। गुड नाइट। तो श्रोताओं, जब शुरुआत ही ऐसी होती है ना, छोटी सी प्यारी सी एक बिटिया कॉल करके कहती है मुझे मेरी पसंद का गाना सुनना है और आज मैंने खूब मस्ती करी है, तो क्यों नहीं उनकी पसंद का गाना भी सुनाया जाएगा और आपकी दिल की बात भी सुनी जाएगी। आप कॉल करें 9837896896 पे और करते हैं कुछ दिल की बातें, देखते हैं क्या क्या किया है आपने मंडे में, कौन सी शैतानी जो है अभी तक छुपा रहे उस्ताद। आराम से और हॉर्न ज़्यादा मत बजाओ, ये जो स्टेशन के पास वाला जाम है ना, ये ऐसे ही चलना है, थोड़ा सिसक के थोड़ा इधर खिसक खिसक के। तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए, एक हल्की सी स्माइल लेते हुए चलते हैं सफर पे और सुनते हैं ये बढ़िया सा गाना।

0: जब बातें होती हैं दिल की, मुस्कुराहट होती है बिल्कुल फ्री, तो टेंशन जो है ना उसको बोल दिया जाता, भाई साहब आज छुट्टी ले लो क्योंकि आज खूब सारा है काम। तो अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाते रहिए, अगर चाय पी रहे हैं तो एक घूंट हमारी तरफ से भी पी लीजिए साहब, और अगर ऑफिस का काम कर रहे हैं तो भाई पहले जो है ना खूब मस्ती कर लो, हमें कॉल कर लो, कोई ऐसी बात हो जो आज बॉस की बुरी लगी है तो हमें ही बता दो, 9837896896। चेहरे पर मुस्कान रहे, दिल में अरमान रहे, जिंदगी चाहे कितने भी उलझी हो हमेशा मस्ती का सामान रहे। तो सामान तो गाड़ी में घूम ही रहा है, और सामान के साथ साथ जो है ना मस्त कहते हैं कि थोड़ा सी नज़रें इधर चल रही है, भाई साहब कौन सी जगह पे गाड़ी रोकूं, कहाँ पे आज अपनी पसंद का खाना खाऊं। बात करते हैं अपने दूसरे कॉलर से और पूछते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: हेलो, दिल से दिल तक सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। क्या चल रहा है इस समय, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो?
1: सर इस टाइम तो बैठे हैं, आपका शो सुन रहे थे, आपका शो सर मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं रोजाना सुनता हूँ।
0: आप रोजाना सुनते हैं
1: जी
0: तो
1: सर,
0: धन्यवाद।
1: फरमाइश मुझसे छूट जाता है मगर आपका शो नहीं छूटता सर।
0: तो इस समय इरशाद जी क्या कहते हैं, आज क्या किया आपने पूरे दिन मंडे में?
1: सर आज तो मैं दिन भर सोया हूँ, लगभग 5 बजे उठा हूँ, उसके बाद में पशुओं के लिए थोड़ा चारा लेकर आया, फिर मैं खाना वाना खाया, उसके बाद में आपका केंद्र लगा दिया।
0: तो 2 दिन से इतनी बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से पशुओं को नहला तो नहीं रहे होंगे, तो खुद ही नहा रही होंगी इस समय।
1: हाँ सर, पशु को बाहर बांध देते हैं, दिन भर नहा रहे हैं, पशु तो इंसान भी नहा रहे हैं सेम, तो सभी
0: नहीं, सही है सही है सही है,
1: अब थोड़ा बहुत मौसम तपा हुआ है इधर रामपुर में सर, तारे निकल रहे हैं।
0: बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, तारे निकलने चाहिए, तारे भी निकले, और तारे निकलने के साथ साथ तारे दिखने भी चाहिए आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बारिश नहीं है तो गर्मी है।
0: हाँ, बारिश नहीं है तो गर्मी है। तो अभी बताइए आप कौन सी ऐसी आपकी दिल की फरमाइश है जो सुनना चाहेंगे और कहते हैं कि गुनगुनाना भी चाहेंगे?
1: सुनूंगा, मूवी का नाम है क्रांति।
0: क्रांति, तो आज आप क्रांति लेके आएंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, वो गाने के बोले।
0: अरे इतना मत मुस्कुराइए, क्रांति तो कहीं से भी आ सकती है, इधर उधर अगर मैं बगल बगल में क्रांति, अगर कभी मन ना करे लड़ाई करने का तो क्रांति आती है साहब अगल बगल में, चलो आज कहीं क्रांति ले आते हैं।
1: सर मैं लड़ाई नहीं करता हूँ, अरे मेरी आदत काफी अच्छी है ना, मैं भाईचारे के रहता हूँ सभी से।
0: हाँ साहब, आपने सुबह सुबह बताया आप चारा भी लेके आए थे, तो भाईचारा तो आपका चलता ही रहता है
1: सर। ऐसा ना मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता सर।
0: नहीं आना भी नहीं चाहिए गुस्सा, गुस्से को छोड़ के सब कुछ आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए
1: सर। मतलब बंदा बड़ा या छोटा ना सभी को मतलब तमीज से बोलता हूँ, सभी से अच्छा रखता हूँ सर।
0: नहीं नहीं बहुत बढ़िया, तो कौन सी क्रांति लाना चाहते हैं आप ये बताइए।
1: सर बॉबी देओल वाली जो गाने के बोलने हैं, मेरा दिल तो वापस मोड़ दे।
0: मेरा दिल तो वापस मोड़ दे, ये सोना था भाई साहब, गली में इस गली में मोड़ दे और उस गली में मोड़ दे, या इधर को मोड़ दे उधर को मोड़ दे, ये मेरा दिल वापस मोड़ दे तो हमने पहली बार सुना है।
1: सर काफी अच्छा सुन गया, आज सुन लेना और क्या सर।
0: नहीं नहीं जरूर सुनेंगे, ये दिल मांगे मोर भी सुना था, मगर ये दिल मेरा वापस मोड़ दे, ये आज अच्छा सामने बताया है। तो कहिए किसे डेडिकेट करना चाहेंगे इरशाद जी ये गाना?
1: सर आपको और मेरे दोस्त शामिल, आप दोनों को
0: धन्यवाद धन्यवाद, और जरूर ही आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। धन्यवाद,
1: थैंक यू, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे कामिल जी, कामिल जी के दोस्त इशरत जी, और कह रहे थे कि ये दिल मेरा वापस मोड़ दे, मैंने कहा भाई साहब हम मोड़ेंगे पोड़ेंगे नहीं, आपको सीधे देंगे आपका दिल। तो 9837896896 पे आप भी अपना दिल मोड़िए, अरे मतलब दिल मोड़िए नहीं, मतलब कॉल करिए और बता दीजिए कि कौन से दिल का गाना आपको सुनना है। तो तब तक एंजॉय करते हैं इस गाने को।

बिल्कुल सही कहा है साहब, नहीं कहना, कुछ मत कहना और बिल्कुल भी मत कहना। अगर एक दिन आपको सिर्फ एक चीज से छुट्टी मिल जाए, चीज से छुट्टी लेंगे, काम से लेंगे, बॉस से लेंगे, घर के काम से लेंगे, या फिर अपने ही मोबाइल के नोटिफिकेशन से लेंगे कि भाई साहब इससे तो आज छुट्टी मुझे मिल ही जाए,

क्योंकि मोबाइल यही कहता है कि भाई मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, मगर हर फिर 5 मिनट में नोटिफिकेशन भेजकर पूछता है भाई याद किया कि नहीं किया। और इसी से याद आया कि एक नोटिफिकेशन हमारे पास भी आया है दोस्तों का। तीनों दोस्त, चारों दोस्त कह रहे हैं पुष्कर मानव से कि भाई हैप्पी बर्थडे। अमन और अनमोल भी साथ में हैं, दोनों कह रहे हैं कि भाई आज तो मेरे भाई का बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है। तो पार्टी चल रही है साहब, उनकी पार्टी चलेगी, आप भी एंजॉय करेगा। अगर आपको भी कोई बर्थडे विश करना हो या एनी विश करना हो तो सिर्फ नाम बताइए और अपना डेडिकेशन बताइए 9837896896 पे। तो लीजिए एक बर्थडे सॉन्ग, आप सभी की तरफ से मानव को डेडिकेटेड है जो इस समय चला रहे हैं गाड़ी और कह रहे हैं भाई साहब जल्दी से जल्दी पहुँचो क्योंकि करनी है पार्टी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां हो रही हैं बातें खूब सारी दिल की और प्यार भरी बातें कि भाई आज क्या हो रहा है, क्या क्या मस्ती करी है। सारे लिसनर्स कहते हैं ना, दो दिन बाद टकराए हैं तो कहते हैं कि भाई साहब आज तो बात कर लीजिए, हमारी भी दिल की कुछ तो सुन लीजिए। तो करते हैं अपने नए लिसनर से बात और पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो आज। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप, क्या नाम है?
1: हेलो जी सर, आदाब।
0: आदाब जी, आदाब, क्या करते हैं आप?
1: मैं फिलहाल नर्सरी का काम करता हूँ सर। मैं आपसे पहले कुछ कहना चाहता हूँ सर।
0: जरूर जरूर जरूर।
1: आपको और आपके अभी आप आपको और आपके सभी सुनने वाले श्रोताओं को अनीस रहमान का प्यार भरा आदाब।
0: आदाब हमारी तरफ से भी और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपको भी प्यार भरा आदाब साहब।
1: जी जी आदाब आदाब।
0: तो क्या हो रहा है इस मौसम में, इस समय आज आप अनीस साहब क्या कर रहे हैं इस समय?
1: जी सर, इस टाइम तो सर फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। फिलहाल काफी टाइम से इस टाइम खाली हूँ और खेती बाड़ी के काम में लगा हुआ हूँ। फिलहाल सर अपना काम जो है नर्सरी का काम है सर, पेड़ पौधों का।
0: पेड़ पौधों का सर, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। सारे पेड़ों को आपने मतलब इस समय बहुत जरूरत है इस समय।
1: जी जी
0: और आपकी नर्सरी किस साइड है, ये
1: जी सर,
0: किस
1: मैं
0: तरफ है?
1: ग्राम धनुपुरा जिला रामपुर से बात कर रहा हूँ सर।
0: जिला
1: आपसे
0: रामपुर से, क्या बात है साहब।
1: जी
0: तो जरूर कभी रामपुर की तरफ आना हुआ तो आपकी नर्सरी जरूर विजिट करेंगे।
1: जी सर, आप आइए सर, मैं और कॉल कर लीजिए सर।
0: ऐसी ऐसी कौन
1: आपसे
0: सी
1: बहुत
0: चीज है,
1: स्वागत है।
0: ऐसी कौन सी फूल या ऐसा कुछ है जो नर्सरी में आपके पास ही अवेलेबल है, आसपास थोड़ा सा रेयर है?
1: जी सर, फिलहाल जैसे तो जैसे रात की रानी है और गेंदा है सर, और बाकी फल फ्रूट के पौधे हैं, आम वगैरह है, लीची वगैरह सर, सभी प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं।
0: बहुत बढ़िया नहीं जी, बहुत बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और किसे डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी सर, पहले उससे पहले कुछ कहना चाहता हूँ सर। मैं सर
0: अरे
1: आपका नाम जान सकता हूँ सर?
0: मेरा नाम है अखिल।
1: जी जी सर, मैं दिल रोया पर आंखों को रोने ना दिया,
0: क्या बात है,
1: सारी रात जागे खुद को सोने ना दिया।
0: बहुत
1: कितना प्यार करते हैं हम अखिल भाई को, पर इस बात का एहसास ना होने दिया।
0: क्या बात कही है साहब, क्या बात कही है। तुमसे बात करने की वजह ढूंढता हूँ, हर रोज तुम्हें थोड़ा और सुनता हूँ। तुम हम भी बोल दो अगर प्यार से, तो उसे भी पूरी कहानी समझता हूँ।
1: जी जी माशाल्लाह, बहुत खूब कहा सर
0: तो
1: आपने।
0: अनीस भाई
1: आपका
0: बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी बात कही। और कहते हैं ना कि कभी कभी इतने दिनों बाद कभी ऐसे लिसनर्स हमारे साथ कॉलर्स टकरा जाते हैं जो सच में अपने दिल की बातें बिल्कुल एकदम साझा करते हैं।
1: जी जी
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और किसे डेडिकेट करना चाहेंगे ये भी बताएं।
1: सर मैं गाना सुनना चाहता हूँ सर, दूसरी मूवी का और सुनवा देना। और सर फिलहाल मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने बेटे को, हमदान को, ग्राम खालसीपुर जिला रामपुर से सुन रहा है मेरा बेटा।
0: जरूर जरूर, हमदान के पास तक ये गाना जरूर पहुंचेगा और वो भी इसे।
1: सर मैं कुछ जी, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज्यादा है आपसे, ना सोचना कि भूल जाएंगे आप, जिंदगी भर चाहेंगे, यही वादा है आपसे।
0: क्या बात कही, क्या बात है साहब, बहुत ही अच्छी बात है। और जिंदगी भर जब तक हैं अपने साथ तो जरूर कॉल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: ठीक है सर, ओके, गुड नाइट।
0: नमस्कार जी, गुड नाइट। तो अनीस जी ने कितनी प्यारी शायरी बोली है और कहा है कि भाई साहब जिंदगी भर का नाता है और ये निभाते रहेंगे। तो जरूर साहब, अनीस साहब अगर आप हैं आगे तो हम एक कदम और आगे चलने की कोशिश करेंगे। तब तक आपका ये गाना जो दोस्ती तेरे दम से है, ज़रूर इसको एंजॉय करते हैं और आपके दोस्त को और आपके बेटे को हमदम को ज़रूर ये गाना पहुंचेगा और वो भी इसे पूरा एंजॉय करेंगे। तो आपकी भी कोई दिल की बात हो तो 9837896896 पे ज़रूर शेयर करें। और एक बात जो हमारे दिल से निकली है, हाँ जी, हमारे ही मुरादाबाद के स्टार हैं, उनकी वोटिंग लाइन, मतलब कहते हैं ना इस समय टीवी स्टार जो हमारे छाए हुए हैं और इस समय पूरी तरीके से, थोड़ा सा थोड़ा अगर लग रहा होगा आपको कि नाम आप गैस कर चुके हैं, तो हाँ सही गैस कर रहे हैं, वर्षिप खन्ना उनका नाम है और वो नॉमिनेट हुए हैं एज अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल में। तो हम लोग और पूरे मुरादाबाद की तरफ से साहब सपोर्ट तो बनता ही है, थोड़ा सा सपोर्ट नहीं, पूरा पूरा सपोर्ट बनता है। और अपने भाई को आगे जाके एक वोट करना पूरा पूरा आपका हक है। तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे एफएम पेज पे भी मिल जाएगी, और पोल बोल करके एक एप्लीकेशन है, polbowl.in पे जाके आप उन्हें पोल भी कर सकते हैं। वर्शिप खन्ना उनका नाम है, वर्शिप खन्ना, आप जैसी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा साहब अपना मुरादाबादी हीरो। तो वोटिंग पूरी जोर शोर से करनी है और अपने मुरादाबादी हीरो को सबसे आगे करना है। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये सॉन्ग जो अनीस साहब ने फरमाइश किया, और आपकी भी कोई फरमाइश है तो 9837896896 हॉटलाइन अभी चालू है साहब, जल्दी जल्दी कॉल करें।

0: ये दोस्ती तेरे दम से है। हाँ साहब, दोस्ती की तो बात ही इतनी खूबसूरत होती है। एक दोस्त साथ में हो तो सारी बातें जो है ना वो कहीं भी इधर से उधर पलट सकता है, सारी चीज़ों को वो आपके लिए बदल सकता है। तो ज़रूर दोस्ती का ध्यान रखें, कोई ना कोई छुपा हुआ होता है साहब जो आपके आसपास आपके मन की और दिल की बात सुन लेता है। हमारे पास ऐसी ही दोस्त हैं, हमारे लिसनर्स, जो अपने मन की बात हमेशा हमसे कहते रहते हैं और कहते हैं कि कुछ तो हमारी बातों पे भी ध्यान दिया करो। ऐसे ही हमारे एक खास लिसनर ने हमें मैसेज किया और वो कहते हैं, हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है दिल से दिल तक, आप कैसे हो? जी मैं बढ़िया हूँ और पूरी उम्मीद है आप भी बहुत बढ़िया होंगे। आपकी आवाज़, बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है। ललिता कश्यप मुरादाबाद। इन्होंने इस बार नवीन नगर नहीं लिखा, क्या पता इधर उधर चले गए हों घूमने। बोले अब जब वापस आऊँगी ना नवीन नगर तभी लिख दूंगी इसके आगे नवीन नगर। हमें तो पूरा ही याद हो गया है नवीन नगर भी। हाजिर सर के लिए शाम की शायरी है, क्या माना बता, जरूर आपकी भी शायरी पढ़ते हैं। शाम की ठंडी हवाओं में एक पैगाम आया है, हाजिर सर के लिए दिल से सलाम आया है। आपकी मुस्कान यूं ही बनी रहे हर शाम, आपकी हर शाम को खुशियों के नाम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर शायरी लिखी, धन्यवाद ललिता जी। सर हमें आपका शो सुन रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो ज़रूर खाना खाइए जल्दी से। क्या बनाया आज आपने, वेज कोफ्ता बनाया या लौकी की सब्जी बनी है? आप भी खाना खा लीजिए सर, ज़रूर खाएंगे खाना और कहेंगे ना जो भी खाएंगे बता देंगे, आज शायद वही सब्जी ना बन जाए जो आपने बनाई है। और आपकी विश का जो सॉन्ग है वो भी हम आपको सुनाते हैं और ये फरमाइशी पूरी करते हैं। तो आपकी भी कोई फरमाइश है या कुछ भी कहना हो दिल से तो हमें ज़रूर बोलें 9837896896 पे। तब तक करते हैं गाना एंजॉय और थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी दोस्ती। चलिए तो मिलते हैं छोटे से म्यूजिक ब्रेक के साथ।
1: अन्ना यार

एक बार फिर से स्वागत आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना रेडियो स्टेशन। तो अभी आप एंजॉय कर रहे थे तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता, ये है पुलिस फोर्स मूवी का गाना जिसपे अक्षय कुमार और रवीना टंडन पे फिल्माया गया। और हाँ, इस गाने की एक खास बात यह है सा कि ये पूरा गाना रामोजी फिल्म सिटी में फिल्माया गया है। तो जो भी कोई रामोजी घूम के आया होगा रामोजी फिल्म सिटी, उसे पता होगा बखूबी कि ये शॉट, ये सीन किस जगह पे, कौन सी लोकेशन रामोजी फिल्म सिटी के अंदर कहाँ फिल्माया गया है। चलिए थोड़ी बातें करते हैं सब देश विदेश की भी। और हाँ, वॉल्केनो भी जो है ना आजकल मूड ऑफ करके गुस्से में बैठा है साहब कि कहाँ फटना है कहाँ नहीं फटना है। इंडोनेशिया के एनाक कारकुटु में हाल ही में एक वॉल्केनो एक्टिविटी हुई है जिसके कारण वहाँ की एविएशन इंडस्ट्री पे बड़ा असर पड़ा है। और रिपोर्ट के मुताबिक कई सारी फ्लाइट जो है ना वहाँ पे लेट हुई है और प्रभावित भी हुई है, डाइवर्ट हो गई है साहब इधर से उधर। जो जा रहा था इंडोनेशिया उसे घुमा के भेज दिया है मलेशिया। हाँ जी, तो हुआ है साहब। और वॉल्केनो भी जो है ना पूरी छुट्टी के मूड में, उसने कहा भाई साहब जब तक मैं पूरी अंगड़ाई लेके नहीं उठूंगा तब तक किसी को कहीं नहीं जाने दूंगा। मजाक है मगर प्राकृतिक आपदाओं के समय ना सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा है कि थोड़ा ध्यान रखें, जब भी कहीं आसपास आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई प्राकृतिक हलचल हो रही है तो भाई साहब अपनी सेफ्टी भी रखें और थोड़े दूरी भी बना के रखें। जैपनीज येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 महीनों में मजबूत हुआ है भाई साहब। जैपनीज़ का तो

0: इस समय, किधर से बात कर रहे हैं? मुरादाबाद का मौसम भी बिल्कुल ऐसी हो रहा है, सुबह सुबह बादल थे मगर बरसे नहीं भाई साहब। आज कहते हैं ना, बरसने वाले बादल और होते हैं, गरजने वाले बादल और होते हैं, सेम ऐसी हुआ है मुरादाबाद में। हाँ वैसे लगातार बारिश हो रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस समय कौन सी फरमाइश है? कुछ पहले एक शायरी सुनाना चाहेंगे? नहीं, जैसे हर बार सुनाते हैं आप। हाँ शिकायत बाद में करेंगे, पहले आप शायरी सुना दीजिए। हाँ पहले शायरी उसके बाद शिकायत, क्योंकि आज मंडे का दिन है, हर कोई शिकायत ही शिकायत करता रहता है। ऑफिस में बॉस से शिकायत कर रहा होता है एम्प्लॉई, और अगर कहीं बिजनेस चल रहा है, किसी रेस्टोरेंट में चल रहा है, तो भाई साहब वेटर भी शिकायत कर रहा होता है, साहब अभी तक कोई कस्टमर क्यों नहीं आके दे रहा है। तो आप भी बताइए शिकायत। आप अब तो आप पहले आप कुछ भी कर दीजिए, अगर शायरी अच्छी है ना तो शिकायत बाद में करिएगा, और शायरी अच्छी नहीं है तो शिकायत पहले कर दीजिए।
1: लंबी है मंजिल ख्वाब से किनारा, लंबी है किनारा, ए दोस्त आया है हमारा, भूल गए नंबर नाम हमारा, दूसरा कोई मिल गया आपको प्यारा।
0: अब नाम याद आ गया है आपका, अब आप बताइए शिकायत क्या है आपकी।
1: थोड़ी सी निगाहें तेरी आती रही, तो कोई भी हो सर अकी भाई, उसमें अपनी बेइज्जती भी होती है, ठीक है आप सुनना, ठीक है। और रीना मैम ने थोड़ी बेइज्जती थी कर दी है, मगर आज दे सर जय हमारा डेली रियासी है भाई,
0: ये जो भी आपकी जो भी शिकायतें होती हैं ना, ये ऑफ एयर होती हैं साहब, ऑन एयर नहीं होती, मगर मैंने आपकी शिकायत सुन ली है और उस पर बात होगी, मगर अभी सिर्फ आपसे बात होगी गाने की और दिल की। तो दिल की जो ये वाली बात है ना, थोड़ी सी हमारे साथ गाने वाली होनी चाहिए साहब। और सब सब बाकी सब सही चल रहा है?
1: बाकी सब चल रहा है, फिर धीरे मतलब बहुत सकून है, कैसा मौसम, आज मौसम सही हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो बताइए कौन सा। हाँ जी
1: अखिल भाई, मैंने मुरादाबाद का मौसम बारिश दूर दूर तक बारिश, मगर ज्यादा पानी ज्यादा आ रहा है तो देखे आ रहा है।
0: हाँ ये तो है, इस समय मुरादाबाद का जो मौसम है बिल्कुल एकदम अलग करवट ले रहा है।
1: जी जी जी जी जी ज्यादा पानी कम नहीं,
0: जगह जगह जगह जगह पानी भर जाता है साहब। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने तो फोटो में तालाब देखा था, घर के बाहर कैसे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो होगा धीरे धीरे, जब बारिश उम्मीद से ज्यादा हो जाती है तो आप कहीं भी आपके हाथ में नहीं रहता है कि उसे रोक सकें। या बिल्कुल सही, तो उन्होंने अपना हिसाब बराबर करके चल रहे हैं इंद्रदेव। तो आप उन लोगों को तो बस ध्यान रखना है अपना कि भाई साहब हम
1: जैसे अपने पशुओं को नुकसान दे रहा है, खेत किसान ही ज्यादा उड़ल उड़ल जो किसान है सब बहर गए, और पशुओं को तो ज्यादा नुकसान हो रहा है
0: इस समय थोड़ा सा है, तो इसलिए अपने पे भी ध्यान देना है और इन सब हालातों पे भी ध्यान देना है। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: जी, तेरी यादों की चादर ओढ़ी।
0: हाँ तो आप इस समय चादर ओढ़ के सोने के चक्कर में हैं।
1: जी, टाइम तो मौसम भी ठंडा है, ज्यादा जो ओढ़ने पड़ेगी,
0: मच्छर जो है आपको काटे नहीं है। चलिए साहब मच्छरदानी में सोइए और खूब मस्ती से गाना सुनिए, और आपसे जल्दी ही फिर से मुलाकात हो।
1: कोशिश करेंगे जल्दी।
0: साहब हमारे रिहान जी कह रहे हैं कि भाई साहब इस समय चादर ओढ़ने की बहुत ज़रूरत है, और ये गाना वो मच्छरदानी के अंदर सुनना चाह रहे हैं। तो आप भी अगर मच्छरदानी लगा रखिए तो इस गाने को ज़रूर एंजॉय करें।

सही बात कही है, ये वही चीज है जो आपके पास भी है और मेरे पास भी है, मगर हम एक दूसरे को नहीं दे सकते। हाँ जी साहब, नाम ही है जो हम एक दूसरे को नहीं दे सकते। तो दोस्तों बिल्कुल कहते ना, मस्ती रहा और पता नहीं चला समय से कब कहाँ निकल गया। अब हो गया है शो का जाने का वक्त, और कहते हैं ना कि भाई साहब हो गया है टाइम, अब निकलो यहाँ से और अब हमें करने दो थोड़ा सा आराम। मगर जाने से पहले छोटी सी बात दिल से, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कभी जीत मिलेगी तो कभी हार, कभी लोग साथ चलेंगे तो कभी रास्ते अकेले होंगे। लेकिन रास्ते चाहे मुश्किल हो, कदम रुकने नहीं चाहिए, हालात चाहे जैसे हो, हौसले झुकने नहीं चाहिए। एक छोटी सी शायरी आज आप लोगों के नाम। वक्त अच्छा हो, वक्त अच्छा हो तो सब अपने लगते हैं, वक्त बुरा हो तो अपने ही पहचान में आते हैं। इसलिए ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान के साथ मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। बस बस यही है दिल से दिल तक की बात। तो आज एक घंटा निकला कैसे सच में पता नहीं चला जनाब, बिल्कुल भी नहीं। आज हमने करी खूब मस्ती भी, मजाक भी और बर्थडे विश भी। हाँ साहब, मानव भी जो है इस समय पार्टी कर रहे होंगे, दोस्तों को पकड़ के चलो साहब आज दोस्तों तुम्हारा टाइम है मुझे पार्टी देने का। ये नहीं कि भाई साहब मेरा बर्थडे है तो मुझसे ही सारे पार्टी और सारा खर्चा करवा लो। जाने से पहले एक आखिरी शायरी आप सभी के लिए है। मुस्कुराते रहो तो जिंदगी खूबसूरत लगेगी, मुस्कुराते रहो तो जिंदगी खूबसूरत लगेगी, गुनगुनाते रहो तो हर शाम खूबसूरत लगेगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे तुम्हारे बारे में, तुम खुश रहो तो हर सुबह खूबसूरत लगेगी। मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे थे दिल से दिल अखिल। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का भी ख्याल रखिए, और हाँ टेंशन को ज़्यादा भाव मत दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है। मुस्कुराइए, मस्त रहिए और दिल से दिल तक जुड़े रहिए। मैं अखिल अब आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे नए मस्ती, नई बातें, नई शायरी और नई कहानियों के साथ। तो गुड नाइट, टेक केयर और ढेर सारी मुस्कान आपके नाम।

0: जाते जाते अरिजीत सिंह का ये गाना तेरा यार होने हूँ मैं, तो ये बिल्कुल ही ना आपको वो फीलिंग में ले जाएगा जहाँ आप इमेजिनेशन में खो जाएंगे।
1: तू जो छूटा तो कौन रहेगा,
0: जो भी बगल में बैठा है ना वो सच में आपका बहुत ही प्यारा है, तो उस प्यार के साथ मुस्कुराइए, खेलिए, लड़िए, झगड़िए, मगर हाँ जुदा मत होने दीजिएगा।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
6: हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचता मेरा दिल है, नई राह है, नई मंजिल है।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है।

0: माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
1: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

करार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: sunny day.
1: It is a sunny day.
0: Oh, sunny shades day, yaar.
1: Yaar, sorry.
0: और फिर मिला है तुलसी?
1: कितने है ब्रो, मेरी तुलसी कुमारी को अता पता है ही नहीं यार।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

तेरा इंतजार बड़ी शिद्दत से कर रही है मेरी मोहब्बत की सरगर्मियां। तेरे मेरे फासलों के बीच छुपी हुई है बहुत सी नजदीकियां।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।